सुप्रभात, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फिगरेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हुए हैं। अब सुनिए आज का चिंतन। विषय है दुनिया में याद।
1: दुनिया में पाप बहुत आयात से बढ़ने के कारण परमेश्वर ने पहले संसार को महाजल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दिया, पर उसमें से एक महापुरुष जो नूह कहलाता था वह परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष पाया गया। परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू एक बड़ा जहाज बनाना जिसकी लंबाई 300 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। परमेश्वर ने कहा कि मैं इस पृथ्वी पर महाजल प्रलय करने पर हूँ और पृथ्वी में जो कुछ है वह नष्ट हो जाएगा, पर मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों पत्नी और बहुओं के साथ

0: जहाज में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों में से तू प्रत्येक जाति के नर और मादा को यानी दो दो करके अपने जहाज में ले जाना ताकि वह जीवित रहें। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानकर जहाज बनाया। जहाज तैयार हो गया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह दो दो जीवित प्राणियों को जहाज में ले आया। फिर उसके पूरे घराने के जहाज में चले जाने के बाद लगातार 40 दिन तक घनघोर बरसात हुई और एक महाजल प्रलय हो गया। पूरा संसार नष्ट हो गया। पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो मनुष्य जो प्राणी बचे थे वह फिर एक संसार को बसाए जिस संसार में आप और हम वास कर रहे हैं। क्या इस दुनिया के लोग पाप से रहित हैं? जी नहीं, इनमें भी पाप की बहुतायात से लोग परमेश्वर से दूर होने लगे, मुक्ति प्राप्ति के बिना नष्ट होते रहे। ठीक उसी समय परमेश्वर ने इस जगत को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा, जिन्होंने कुंवारी कन्या से आत्मा के द्वारा जन्म लिया, दुख सुख को अपने कंधों में उठाया। मनुष्य के लिए उन्होंने अपना प्राण तक दे दिया कि पापी मनुष्य उद्धार या मुक्ति को प्राप्त करे। मनुष्य नष्ट होकर नरक में जाने के बजाय स्वर्ग में प्रवेश कर सके। क्या आप और हम प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहेंगे, जो बड़े प्रेम से अपने हाथ पसार कर हर एक को बुलावा दे रहे हैं? हे परिश्रम और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस बुलावे को स्वीकार करके प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करके हम इस पापपूर्ण दुनिया से मुक्ति पा सकते हैं। जब हम मसीह के बताए अनुसार समाज के गरीबों दलितों बीमार लाचारों की सुधि लें, सभी से प्रेम भाव रखें, किसी को चोट ना पहुंचाएं, सभी को भ्रातृत्व प्रेम से बांट लें, हम औरों पर दया करें, जहां तक हो सके दूसरों को क्षमा करें, ग्रहण करें, पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें जैसा मसीह ने हमारे लिए किया कि हमें बचाने के लिए उसने क्रूस पर अपनी जान दे दी, मानवता की रक्षा के लिए।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन दुनिया में याद। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:10 होने को है। अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आपने सुना सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये भक्ति गीत। अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

0: अनूप जलोटा के गाए इसी भक्ति गीत के साथ कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:40 हुए हैं। अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी,
1: एपिसोड 27, 27।

ब्रह्मा ने सब प्रकार से योग्य पाकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। इतना बड़ा अधिकार पाकर दक्ष को सत्ता का मद हो गया और उन्होंने शिव का अपमान करने की धृष्टता कर दी। जब यक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें भगवान शंकर को निमंत्रित ना करके उस अपमान को जैसे दोहरा कर दिया। यही कारण था कि जब सती ने पिता के यज्ञ में उपस्थित होने के लिए जाना चाहा, तो शिव ने बिना निमंत्रण जाना सती के शील स्नेह अथवा मान मर्यादा के अनुरूप नहीं पाया। जब सती ने पिता के यज्ञ में

जाने की जिद ही कर दी तो भगवान शंकर ने अपने प्रमुख गणों के साथ उन्हें विदा कर दिया। उधर पिता ने सती का कुशल क्षेम तक नहीं पूछा। यज्ञ में सभी देवताओं के भाग की सामग्री थी, किंतु कहीं भी शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। पति की ये उपेक्षा देख अपमान से सती के अंग प्रत्यंग जल उठे, उनके क्रोध की सीमा न रही। इस मदांधता तथा नादानी के लिए उन्होंने पिता की भर्त्सना ही नहीं की, बल्कि ग्लानि तथा क्रोध के वशीभूत होकर अपने को उसी यज्ञ की अग्नि में भस्म कर डाला।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम विवरण के तहत अब आपको बता दें आज केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के

सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग, 7:20 पर सुनेंगे कार्यक्रम प्रसंग, सुगम संगीत ये आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर, 8 बजे सुनेंगे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से, 8:30 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से, मॉर्निंग मेलोडी ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर, 9 बजे सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से, 9:10 पर सुनेंगे पॉडकास्ट श्रृंखला प्राकृतिक की बात आकाशवाणी के साथ हमारे दिल्ली केंद्र से, 9:40 से पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से, हेलो हजारीबाग ये हमारा कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10 बजे, 11 बजे से सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से, 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से, 1:20 से पुनः सुनेंगे विविध भारती।

शक्ति के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 3:00 आप पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 4:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 4:02 पर सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। संध्या 5:00 सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। संध्या 5:02 पर सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। 5:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बारी। 6:00 सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। कार्यक्रम मेहनत कश ये आप सुनेंगे संध्या 6:02 पर। फिल्म संगीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 6:30 पर। 7:00 सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:00 जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। 7:15 पर सुनेंगे कार्यक्रम झनकार। 7:30 पर सुनेंगे ऑल टाइम हिट्स। 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नव चेतना। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे फरमाशी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। 8:45 पर समाचार संध्या। 9:00 News@9 और 9:15 पर स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा ये आप सुनेंगे रात्रि 10:00। आज के फनकार ये आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। रात्रि 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। और प्रतिदिन की तरह सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर।

ये थी आज केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: अभी आपने सुना अलका याग्निक की आवाज में ये लोकगीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: अभी आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब सुनिए शारदा सिन्हा की आवाज में ये भोजपुरी लोकगीत।

0: शारदा सिन्हा के गाए इसी भोजपुरी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोक रंग यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हुए हैं। कार्यक्रम प्रसंग के अंतर्गत हम आज आपको सुनवा रहे हैं पूर्व प्रसारित वार्ता झारखंड में वन उन्मूलन एवं संरक्षण। वार्ताकार हैं शिल्पी कुमारी।
1: झारखंड भारत का एक राज्य है। झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, दक्षिण में ओडिशा और पूरब में पश्चिम बंगाल को छूती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में झारखंड एक अग्रणी राज्य माना जाता है। बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का निर्माण किया गया था। इस प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में धनबाद, बोकारो एवं जमशेदपुर सम्मिलित है। झारखंड के कुड़माली भाषा के अनुसार झाड़ का तात्पर्य जंगल झाड़ी से है, इसलिए इसे झाड़ जंगलों का प्रदेश झारखंड कहते हैं। छोटा नागपुर पठार में बसा होने के कारण इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी बोलते हैं। झारखंड का मतलब संताली में जाहिर खोंड सरना स्थल है, इसलिए जाहिर खोंड ही झारखंड है। वनों की कटाई से जहां प्रत्यक्ष लाभ होता है, वहां अप्रत्यक्ष हानि भी होती है। वनों से प्रत्यक्ष लाभ कुछ ही

व्यक्तियों को होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष हानि सारे जीव जगत को होती है। इसलिए वनों का संरक्षण अत्यावश्यक है। प्रकृति ने जहाँ जैसी मिट्टी दी है, जहाँ जैसी आवश्यकता है, वहाँ वैसे ही वन लगा रखे हैं। वन किसी भी देश का अमूल्य धन संपदा एवं पर्यावरण का एक प्रमुख अंग है। वनों से न केवल उपयोगी वस्तुएं जैसे इमारती लकड़ी, रबर, गोंद, जड़ी बूटियां, ईंधन की लकड़ी आदि प्राप्त होती है, अपितु इनसे जलवायु संतुलित रहता है, वन्य जीव संरक्षित रहते हैं और मिट्टी का कटाव भी नहीं होता। वनों के क्षेत्र में कमी आना तथा अनियमित कटाई को ही दूसरे शब्दों में वन विनाश या वनोन्मूलन कहते हैं, जो पर्यावरण को असंतुलन करने अथवा उसके स्तर को गिराने का प्रमुख कारण है। सभ्यता की दौर में अंधा हुआ मानव वनोन्मूलन कर न केवल स्वयं की हानि कर रहा है, अपितु अपने भविष्य को भी अंधकारपूर्ण बना रहा है। कृषि के विकास के साथ ही वनोन्मूलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि वनों को साफ करके ही कृषि भूमि प्राप्त की गई थी। जैसे जैसे एक ओर कृषि का विस्तार होता गया, लकड़ी एवं वनों के पदार्थों के उपयोग में वृद्धि होने लगी। औद्योगिकरण, शहरीकरण का विकास एवं विस्तार हुआ और व्यापारिक स्तर पर वनों की कटाई प्रारंभ हुई, तो 20वीं शताब्दी के अंत तक यह भयावह स्थिति से में पहुंच गई। संपूर्ण विश्व आज वनोन्मूलन की समस्या एवं उसके पर्यावरण पर प्रभाव से दुखी है। पहले जब पृथ्वी के स्थलीय भाग के 70% अर्थात 12 अरब 80 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन थे, जो आज लगभग 16% अर्थात 2 अरब हेक्टेयर में रह गए हैं, तथा इसमें निरंतर कमी आ रही है। लेकिन वर्तमान समय में उष्णकटिबंधीय वनों पर संकट छाया हुआ है, जिससे विश्व के पर्यावरणविद चिंतित हैं। 1980 में उष्णकटिबंधीय वनों के कटने का अनुमान 1.14 हेक्टेयर का था, जो वर्तमान में प्रतिवर्ष लगभग 2.04 करोड़ है। विश्व के अनेक देश जैसे ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम आदि में इसकी दर अत्यधिक है। विश्व के अब तक लगभग 32-35% उष्णकटिबंधीय वनों का विनाश हो चुका है। जंगलों के नष्ट होने के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। झारखंड में घने जंगलों में कमी आने का दुष्परिणाम भूमि के कटाव के रूप में सामने आ रहा है। वन और वनस्पतियों के नष्ट होने से वर्ष 2003-05 के दौरान 16.40% नए भूभाग कटाव के दायरे में पाए गए थे, तो वर्ष 2011-13 में 17.30% यानी 0.90% नए इलाके कटाव क्षेत्र में आ गए। वन प्राणियों के लिए कितने आवश्यक है यह सभी को पता है। कहा भी गया है कि वन ही जीवन है। इतना समझने के बावजूद भी दिन प्रतिदिन वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। आशा करती हूँ कि मेरे इस वक्तव्य से आपको वन संरक्षण के महत्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी। वनों पर मानव की निर्भरता देखो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, फिर भी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो ही रही है। देखो मनुष्य कितना मतलबी हो गया है, उसे केवल मैं और मैं ही नजर आ रहा है। अपनी छोड़कर किसी दूसरे की सुध की उसे चिंता ही नहीं है। मनुष्य तेरी यह अभिलाषा तेरे जीवन को अंधकार में ले जाएगी। अंत समय में तेरे हाथों पछतावे के सिवा और कुछ न लग पाएगी। जंगल मूल रूप से भूमि का एक टुकड़ा है, जिसमें बड़ी संख्या में वृक्ष और पौधों की विभिन्न किस्में शामिल हैं। प्रकृति की ये खूबसूरत रचनाएं जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए घर का काम करती है। वन शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है बड़े पैमाने पर पेड़ों और पौधों का प्रभुत्व होना। इसे अंग्रेजी के एक शब्द के रूप में पेश किया गया था, जो कि जंगली भूमि को संदर्भित करता है, जिसको लोगों ने शिकार के लिए खोजा था। कुछ लोगों का दावा है कि जंगल शब्द मध्यकालीन लैटिन शब्द फॉरेस्ट से लिया गया था। इस सघन क्षेत्र की प्रचुरता के कारण ही राज्य का नाम झारखंड पड़ा। झारखंड नाम से ही स्पष्ट है, जंगलों वाली भूमि।

0: लगे पेड़ पौधों को अगर इसमें सम्मिलित करें तो 33% जंगल है। हालांकि झारखंड के वन क्षेत्र में 2 सालों में 2017-19 में 58 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वन क्षेत्र में वृद्धि दर 0.25% है। वहीं 2015-17 में के दौरान वन आवरण 314 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। लेकिन विडंबना यह भी है कि सघन वन क्षेत्र में लगातार गिरावट आ रही है। झारखंड गठन से अब तक 947 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से 2015 की अवधि में झारखंड वन क्षेत्र 22,531 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 23,478 वर्ग किलोमीटर हो गया है। लेकिन वर्तमान समय में कई सरकारी प्रयासों और लोगों की जागरूकता के कारण ग्रीनरी को बढ़ावा मिला है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के गांधी ग्राम में 72वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का उद्घाटन किया। ISFR 2017 के अनुसार झारखंड में सघन वन क्षेत्र 2,598 वर्ग किलोमीटर है। वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण और संरक्षण प्रयासों के कारण यह मुमकिन हुआ है। वन क्षेत्र में 314 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
1: अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित वार्ता, झारखंड में वन उन्मूलन एवं संरक्षण। वार्ताकार थे शिल्पी कुमारी।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स,

0: पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शुक्ला दास गुप्ता की आवाज में।

0: अभी आपने सुना मौसमी नियोगी की आवाज में ये गीत।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं शुक्ला दास गुप्ता की आवाज में ये गीत।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों

0: का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। यह हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
3: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
4: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक जोन है, हमारे आइलैंड टेरिटरीज है और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जो स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा

0: सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
1: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरु मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए दो शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं। वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
2: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
3: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेसी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नोस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। India and New Zealand signed 5 MOUs in key areas including defense, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1, Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. And now the news in detail. India and New Zealand today signed 5 key memorandums of understanding, MOUs, covering defence, animal husbandry and dairy, tourism, sports and disaster management, marking a new chapter in bilateral ties between the two nations. The deals were inked following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, in Auckland. We have more from our correspondent.
6: The two countries signed a memorandum of arrangement between the Ministry of Defence and the New Zealand Defence Force to enhance maritime cooperation aimed at strengthening security in the Indo-Pacific region. The agreement on animal husbandry and dairy will promote research, innovation and exchange of best practices. The tourism pact is expected to boost visitor exchanges and strengthen cooperation in the travel sector. Both sides also adopted a joint action plan on sport to deepen collaboration in sports development and athlete exchanges. An MOU on disaster management will enhance cooperation in disaster preparedness, emergency response and resilience. The five agreements reflect the growing India-New Zealand partnership and the shared commitment to

0: Eco Links. Kerala birth rate has reached an all-time low, states the Indian Express, dropping into single digit for the first time. Hasina teen planned Bangladesh return in December, willing to face arrest or even death, states the Tribune. And finally, the Statesman cites a major milestone for breed conservation and preservation of two Himalayan Gaddi dogs who are integral to the culture and pastoral heritage of the Western Himalayas, getting official Kennel Club recognition. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and New Zealand signed 5 MOUs in key areas including defense, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1. Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में झारखंड सरकार के 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंस का समापन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य में जल्द दिखेंगे सार्थक परिणाम। धनबाद की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने बहुचर्चित मटकुरिया गोलीकांड में पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक समेत सभी 30 आरोपियों को सुनाई 3-3 साल की सजा। रांची में पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित उद्यमों के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित। ईसीएलजीएच योजना के तहत वितरित किए गए ऋण स्वीकृति पत्र। जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ियों का चयन। सलीमा टेटे संभालेंगी टीम का कमान, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। और झारखंड रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश जारी। मौसम केंद्र ने 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार की हवाओं का जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित झारखंड सरकार के 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंस के समापन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके जल्द ही सार्थक परिणाम सामने आने की उम्मीद जताई है। नई दिल्ली में आयोजित इस समापन समारोह और सांस्कृतिक संध्या में विभिन्न देशों के राजनयिक, केंद्र व राज्य सरकारों के अधिकारी तथा नीति विशेषज्ञ शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राष्ट्रीय परामर्श से राज्य में निवेश और जन कल्याणकारी योजनाओं को नई दिशा मिलेगी। धनबाद में कांग्रेस पार्टी ने राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र मरावी और सह प्रभारी शकील अहमद खान शामिल हुए। बूथ लेवल एजेंटों ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन और सत्यापन में आ रही चुनौतियों को रखा। भूपेंद्र मरावी ने कहा कि पार्टी हर पात्र मतदाता का नाम जोड़ने और उनका अधिकार सुरक्षित रखने पर नजर बनाए हुए है।
3: एआईसीसी द्वारा जो सह प्रभारी है झारखंड प्रदेश कांग्रेस समिति को, वो आज धनबाद लोकसभा तो ऑर्गेनाइजेशन की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सभी प्रखंड अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, क्या क्या इनकी कमेटी है, पूरी है अधूरी है, उस पर पूरा विचार विमर्श हो रहा है। वैसे आयर पे कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, जो आम जनता का सहयोग कर रहे हैं, उस पर समीक्षा कर रहे हैं।
2: धनबाद की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने बहुचर्चित मटकुरिया गोलीकांड मामले में पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक समेत 30 आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि यह मामला वर्ष 2011 में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसक झड़प से जुड़ा है।
4: बीसीसीएफ के क्वार्टर को अतिक्रमण खाली कराने में वहां के

0: स्थानीय समुदाय के लोग प्रशासन के ऊपर गोली और बम से हमला भी किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के हमले में 4 लोग मर गए। इसमें तत्कालीन SP जख्मी हो गए और भी पदाधिकारियों को चोट लगी। कुल 30 आरोपियों को इसमें दोषी पाया गया, जिसमें 302 और 307 में उन लोगों को बरी कर दिया गया।
1: हजारीबाग परिसदन में झारखंड विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई, जिसमें लंबित विधानसभा प्रश्नों और विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। समिति के सभापति और देवघर विधायक सुरेश पासवान ने बैठक की कमान संभाली। सभापति ने जनहित योजनाओं की पारदर्शिता के साथ साथ समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में खूंटी के विधायक रामसूर्य मुंडा समेत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया। वे देवराहा बाबा के पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए और समाज की सुख शांति की कामना की। उन्होंने भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में आयोजित बृहत पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेकर पौधा लगाया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। रांची की डॉक्टर मेघा रानी ने मात्र 120 मिनट में 120 पन्ने लिखकर हिंदी लेखन में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस अनूठी उपलब्धि को आधिकारिक मान्यता दे दी है। इस सफलता के साथ ही वे दुनिया की सबसे तेज हिंदी लिखने वाली महिला बन गई हैं। डॉक्टर मेघा पिछले 7 वर्षों से नारी विमर्श और सामाजिक विषयों पर लगातार लिख रही हैं। रांची में पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित उद्योगों के लिए आयोजित आउटरीच कार्यक्रम में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0 के तहत ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। इसी वर्ष 8 मई से प्रभावी यह योजना MSME और विमानन क्षेत्र को कार्यशील पूंजी सहायक प्रदान करती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद में पुलिस की मासिक अपराध समीक्षा बैठक में SSP प्रभात कुमार ने दावा किया कि जिले में अपराध के मामलों में करीब 30% की कमी आई है। जून माह में 409 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 460 पुराने लंबित मामलों का निष्पादन किया गया। SSP ने बताया कि लगातार प्रयासों से पहली बार लंबित मामलों की संख्या घटकर 1800 से नीचे पहुंच गई है।
2: समीक्षा बैठक की गई है और जिसके फलस्वरूप हमारा जो पेंडेंसी है वो आज के डेट में 1794 1800 से नीचे आ गया है। सिमिलरली हम लोग इस माह अभी जो एक सप्ताह के लिए एक मुहिम चलाने का निर्देश दिया गया है, वो निर्देश है कि जितने भी अपराधियों को उनकी जब्ती करने के बाद फिरारी दिखा करके चार्जशीट किया गया था, वो सभी अपराधियों को धरपकड़ करने के लिए एक विशेष मुहिम चलाने का निर्देश दिया गया है जो एक सप्ताह चलेगा।
1: हजारीबाग में पुलिस ने जब्त किए 1452 किलोग्राम डोडा, 307 किलोग्राम गांजा और 5 लीटर कफ सिरप को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। यह कार्यवाही बरही चौपारण चरही और कटमदाग थाने में लंबे समय से रखे नशीले पदार्थों पर की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर DSP CCR के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। सभी नशीले पदार्थों को लोहरदगा के बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट ले जाकर सरकारी मानकों के अनुसार नष्ट किया गया। गिरिडीह जिला प्रशासन ने सरिया थाना क्षेत्र के जंगलों में अवैध पत्थर खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 123 पीस जिलेटिन, एक JCB मशीन और कई ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। इस संयुक्त छापेमारी अभियान में अनुमंडल पदाधिकारी संतोष गुप्ता और SDPO धनंजय राम शामिल थे। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा।
3: बहुत दिनों से जो सूचना प्राप्त हो रही थी कि इलीगल माइनिंग जो है सरिया क्षेत्र में किया जा रहा है, आज उसी पर जो है टीम बना करके संयुक्त रूप से जो है छापेमारी की गई। उस छापेमारी में जो है सो मशीनें वगैरह जब्त हुए हों, लोगों के लोग हिरासत में लेकर आगे कार्रवाई की जा रही।
1: रांची रेल मंडल से गुजरने वाली कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें आज आंशिक रूप से रद्द और शॉर्ट टर्मिनल रहेंगे। वर्धमान हटिया मेमू आज गोमो तक ही चलेगी, जबकि खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस आद्रा और आसनसोल रांची पैसेंजर मूड़ी

स्टेशन तक ही जाएगी। हटिया और सांकी के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों के सभी फेरे आज पूरी तरह से रद्द रहेंगे। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल रात से जारी रुक रुक कर बारिश के बीच मौसम केंद्र ने आज हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार आज राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने खराब मौसम को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह जारी की है। झारखंड की चार महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन जापान में होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम में हुआ है। सिमडेगा की सलीमा टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी संभालेंगी। टीम में ओलंपियन निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेन को भी स्थान मिला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चारों खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। दुमका का विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव 28 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसकी सुरक्षा के लिए 600 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अनुमंडल पदाधिकारी कौशल किशोर ने बताया कि पूरा मेला क्षेत्र 24 घंटे नियंत्रण कक्ष की निगरानी में रहेगा। मंदिर परिसर, गर्भगृह, कांवरिया कतार और शिवगंगा जैसे प्रमुख स्थानों पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी अखबारों ने मटकुरिया गोलीकांड में 15 साल बाद फैसला आने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पूर्व मंत्री मन्नान समेत 28 को 3-3 साल की कैद, मुचलका नहीं भरने पर मन्नान रांची में गिरफ्तार। प्रभात की सुर्खी है, दो अपराधी होटल पार्क रिट्रीट में ठहरे, रात में 80 लाख की जगुआर से चोरी करने पहुंचे। हिंदुस्तान ने झारखंड हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है, टीजीटी 21 वालों को भी दें वरीयता का लाभ। दैनिक जागरण के शब्द हैं, सरकारी गाड़ी छोड़ अपनी कार पर बैठे वित्त मंत्री, चर्चाओं का बाजार रहा गर्म। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में झारखंड सरकार के दो दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स का समापन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य में जल्द दिखेंगे सार्थक परिणाम। धनबाद की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने बहुचर्चित मटकुरिया गोलीकांड में पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक समेत सभी 30 आरोपियों को सुनाई 3-3 साल की सजा। रांची में पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित उद्यमों के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित। ईसीएलजीएस योजना के तहत वितरित किए गए ऋण स्वीकृति पत्र। जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की चार खिलाड़ियों का चयन। सलीमा टेटे संभालेंगी टीम की कमान, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश जारी, मौसम केंद्र ने 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार की हवाओं से का जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.5 पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची का प्रसारण सुनीता के साथ।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम लोक रंग का, जिसमें आज आप सुनेंगे कुर्माली भाषा में लोकगीत, कलाकार होंगे किस्टो महतो और साथी।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत की आवाज में यह गीत। फिल्म का नाम है एक था धड़कन, एक थी लड़की।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जुर्म से यह गीत अभिजीत और अलका याग्निक।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से, बस थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है सोनू सूद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज विशेष मेहमान है आशीष अग्रवाल जी, जो हम सबको राह दिखाते हैं कि अपनी जीवन शैली को सरल बनाकर ही कितना फायदा हमें हो सकता है और हमारी प्रकृति को भी कितना फायदा हो सकता है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। आशीष जी, सर्वप्रथम जो आपका एक मुहिम है उससे ही शुरुआत करते हैं, सस्टेनेबिलिटी माइंडफुल कंजम्पशन अ वे टू मिनिमलिस्टिक लिविंग। ये जो आपका तथ्य है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप अगर हमें सरल शब्दों में समझा सकें, जो हमारे श्रोता सभी समझ पाएं कि क्या है ये कॉन्सेप्ट और इसके पीछे की मूल सोच क्या है।
3: तो मैं इसके वाई से शुरू करता हूं कि ये पूरा मुहिम शुरू क्यों हुआ। तो आज के डेट में समाज में तीन तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो तनाव बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सोशल लेवल पे देखा जाए तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में सिविक सेंस की थोड़ी कमी है। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज, वातावरण का जो बदलाव हो रहा है वो बहुत ही तेजी से हमारे सामने आ रहा है। तो ब्रिज फॉर चेंज एक मिशन पर है जहां वो यस आई एम माइंडफुल मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें माइंडफुल कंजम्पशन को एज अ प्रोफाउंड टूल हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी। और हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी, हमारे एक्शंस इंप्रूव होंगे, तो आसपास होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप मिटिगेट होना शुरू हो जाएंगे
2: जी।
3: जिसमें हम लोग कहते हैं युवाओं से कि छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, जहां पॉसिबल हो वहां एक्शंस लेने हैं, जितना पॉसिबल हो उतना करना है। तो इसको हम लोग टर्म देते हैं PRR कि क्या हम लोग कभी पॉज लें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रिफ्लेक्ट करें और जिस भी पैरामीटर्स पे, चाहे वो फूड है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशन है, प्रोफेशन है, किसी भी आयाम पे जहां उनको लगता है रेगुलेट कर सकते हैं उस चीज को रेगुलेट करें। और ये एफर्टलेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वही 2 दिन 4 दिन 10 दिन करेंगे, उसके बाद फिर हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं लैक करने लगता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स, टाइनी एक्शंस कैन ब्रिंग जाइगेंटिक रिपल्स, तो वो हमारा ध्येय है। और सरल जीवन जहां आपको सही लगता है और उसमें छोटे छोटे स्टेप्स, तो यही पूरा मूवमेंट का थॉट प्रोसेस है।
2: आशीष जी, आप जो बात कर रहे हैं माइंडफुल कंजम्पशन की, वही धुरी है आपके पूरे जो मुहिम की। उसको और गहराई से समझने के लिए अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि माइंडलेस कंजम्पशन क्या होती है, जिसको काउंटर करने के लिए आप ये जो माइंडफुल कंजम्पशन लेके आए हैं, ताकि हम बेहतर समझ पाए कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
3: जो माइंडलेस कंजम्पशन की बात करें तो जो नीड वर्सेज वांट जो बोलते हैं
2: जी,
3: कि हम लोग सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमारी नीड तो इतनी ही है, लेकिन कई बार हमारी चाहते होती हैं, पीयर प्रेशर होता है, समाज का स्टेटस होता है, उस चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज ऐसी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी इस्तेमाल करते हैं, एक लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करते हैं जिसकी शायद हमें उतनी जरूरत नहीं हो। और उस जर्नी में फिर बहुत सारे अलग अलग माध्यम से हम लोग ओवर कंजम्पशन करते हैं, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस सामने रखते हैं। तो उस चीज को ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस अनरियलिस्टिक जो हमारे एम्बिशन है उसको कैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा सा बेहतर और मोर रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल की तरफ युवाओं का, हमारे जो भी ऑडियंस है उनका ध्यान लाया जाए।
2: तो आपने जो नीड्स और वांट्स की बात करी कि एक तो है हमारी जरूरत और एक है हमारी ख्वाहिश,
3: बिल्कुल,
2: ये नीड और वांट का जो अंतर है, क्या आप हमें और गहराई से इसको समझा सकते हैं?
3: ये बहुत मुश्किल है। नीड का तो हमारा मानना है कि सॉफ्टवेयर ही हमारा वैसा डेवलप है कि हमें पता है कि ये हमारी जरूरत है, कब वो जरूरत वांट हो रही है उतना हमें अंदर से आवाज आ जाती है। लेकिन चूंकि हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रहते हैं, इतने फास्ट इवॉल्विंग सोसाइटी में, कि वांट का कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है और वहीं पे फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम इसलिए शुरू होती है कि सपोज मैं आज आशीष एक्स पर हूं, मुझे वहां 5x तक पहुंचना है, जस्ट बिकॉज मेरे पीयर ग्रुप में कोई वहां पर है, तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे स्किल्स क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट टाइम राइट प्लेस पे मैं हूं कि नहीं। मैं बस भागता रहता हूं कि मुझे 5x तक पहुंचना है, क्योंकि मेरे चाचा का बेटा या XYZ इन माई फैमिली इज एट दैट पॉइंट। तो उसमें दो चीजें होती है। पहला तो होता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन सही समय पे सही जगह पे नहीं था, तो मैं x से 3x तक पहुंचा। तो सोसाइटी इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतनी शॉर्ट साइटेड है कि वो उस चीज के लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगी 3 गुना आगे बढ़ा, बट उस चीज के लिए रेडिक्यूल करेगी कि देखो अभी भी वो इंसान तुमसे कितना आगे है। तो वो जो स्यूडो कमी है ना, जो समाज बताता है कि तुम में कुछ कमी है, तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, तुम इतने स्किल्ड नहीं हो, उस कमी को छुपाने के लिए हम लोग माइंडलेस कंजम्पशन करते हैं, उस भड़ास को दबाने के लिए। किसी का वो भड़ास, फ्रस्ट्रेशन, वो वॉइड खाने पे निकलता है, किसी का फैशन पे निकलता है, किसी का रिलेशन पे निकलता है, किसी का दिन भर इंस्टाग्राम और ये सब पे निकलता है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं एक्स से 5x पहुंच भी गया, राइट टाइम राइट प्लेस, बहुत मेहनत की, सही लोग मिले, तो भी अगर मैं 5x पे पहुंचा तो ये समाज मुझे शांति वाली जिंदगी, एक सिंपल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित नहीं करता है। वो बोलता है अब तुम 6 फिगर सैलरी कमा रहे हो तो तुम्हें इस तरह का मोबाइल, इस तरह का घर, इस तरह के वेकेशन होने चाहिए। तो हमने जो रिसर्च किया उसमें यही पाया कि वेदर वी आर सो कॉल्ड सक्सेसफुल और नॉट, दोनों ही केस में मैं माइंडलेस कंजम्पशन करता हूं बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर। और वही सारे स्ट्रेस की, वही सारे नॉइज की जड़ है। इसीलिए माइंडफुल कंजम्पशन के प्रति हम लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं डेटा की मदद से।
2: जी, तो कैसा डेटा, किस तरह से फायदा, जो आप कह रहे हैं कि माइंडफुल कंजम्पशन होती है, जितनी आपको जरूरत है उसके अनुसार आप कंज्यूम करते हैं, तो इसका जैसा आप कह रहे हैं कि आपको खुद को फायदा होता है, क्लटर कम हो रहा है, आप एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, उसके अलावा पर्यावरण को भी इसका लाभ होता है। जो आप डेटा की बात कर रहे हैं उसको आप हमें थोड़ा समझा सकते हैं?
3: तो कोई भी चीज जब हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होती है किसी भी फॉर्म में, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ एमिशंस, कुछ पॉल्यूशन हुआ, उस पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के मेजरमेंट में नापा जाता है। जैसे हम लोग होते हैं दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम्स में नापते हैं, वैसे पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, कार्बन फुटप्रिंट जो बोलते हैं हम लोग। तो कोई भी काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट है। तो ये एक अच्छी बात भी है और मुश्किल भी है कि हर चीज का इमिशन हो रहा है तो मैं कंट्रोल कैसे करूं, लेकिन हर चीज का इमिशन हो रहा है तो वहां अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग चूंकि सैकड़ों चीजें अपने दिन में कंज्यूम करते हैं, तो जहां जहां हमें पॉसिबिलिटी लगती है हम लोग अगर उसको थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा इनडायरेक्ट पॉल्यूशन बचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम में से सब लोग भारत में तो चाय पीना पसंद करते हैं, तो अगर मैं हर दिन सुबह 1 कप चाय पीता हूँ तो हफ्ते में मैंने 7 कप चाय पिए, तो डेटा बताता है, जैसे उसका सोर्स है आवर वर्ल्ड इन डेटा, तो डेटा बताता है कि 1 लीटर दूध बनाने के लिए 3 किलोग्राम कार्बन इमिशन होता है, और अगर 1 लीटर दूध में 10 कप चाय बनते हैं तो इसका मतलब हर कप का करीब 250 ग्राम हुआ। तो हम लोग जब इंगेज करते हैं अपने ऑडियंस के साथ तो ये नहीं बोलते कि आप चाय पीना बंद कर दो, हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हफ्ते में 1 कप कम कर सकते हैं, तो अगर हफ्ते में 1 कप भी कम किया गया तो साल में 250 ग्राम × 52 करीब 12-13 किलो कार्बन एमिशंस बच जाए। तो ये सिर्फ एक पैरामीटर है, ऐसे हजारों चीज हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं, तो जहां जहां हम लोग कंफर्टेबल हैं वहां अगर थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा एमिशंस बचाया जा सकता है।
2: इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में जो शुरू किया था मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो उसमें भी उन्होंने हरेक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को एक महत्वपूर्ण बताया था, जो पर्यावरण संरक्षण है उस दिशा में। तो वहां पर आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं, किन किन आदतों से हम हमारा जो भी वातावरण है उसको हम ज्यादा शुद्ध करने में या उसके संरक्षण में हम अपना योगदान कर सकते हैं।
3: तो इसको शेयर करने के लिए मैं 5R का यूज करूंगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो 5R में सबसे पहले वही रिड्यूस आता है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कितना भी पेड़ लगाएं, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, एमिशंस कम नहीं होंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा, जो कि मिशन लाइफ का भी देह है कि अपने लाइफस्टाइल को एनवायरमेंट से कैसे अलाइन किया जाए। तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का डेटा बताता है कि हर साल करीब 50 किलो खाना हर भारतीय वेस्ट करता ऑन एन एवरेज। तो फूड वेस्ट एक ऐसी चीज है जो हमें इमीडिएटली रोक देनी चाहिए अगर अभी तक हम लोग के जीवन शैली में वो चीज नहीं आई है। तो वैसे ही एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत होता है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो मीट बेस्ड चीजें हो, जो भी चीज एनिमल से आ रही है, तो उसको हम लोग थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही एयर ट्रेवल का कार्बन इमिशन बहुत होता है, तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में एक आम नागरिक जो करता है तो फूड वेस्ट ना करे और एयर ट्रेवल कम हो। रिड्यूस के बाद अगर रिप्लेस की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कपड़े का थैला यूज करें। तो आमतौर पर हर दिन अगर हम लोग सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं तो 3 प्लास्टिक 4 प्लास्टिक यूज हो जाता है, तो सिर्फ एक बैग यूज करेंगे तो साल भर में अगर 3 × 365 भी करें तो 1000 प्लास्टिक की बैग्स सिर्फ और सिर्फ सब्जी के मायने में कम हो सकती हैं। और वही वो प्लास्टिक भी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सिंगल यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो रिप्लेस के कॉन्टेक्स्ट में प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, आजकल टिश्यू पेपर को यूज करने का बहुत फैशन चला है, तो टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रूमाल वगैरह से, जो हमारे घर में हमारे माता पिता और दादा दादी हमेशा ही करते आए हैं। तो इससे बहुत सिंपल सा एक्ट है लेकिन बहुत सारा पानी, बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कार्बन इमिशन बच सकता है। रिपेयर, आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई है कि रिपेयर कराने का उतना टाइम नहीं है, तो अगर मैं 2 घंटे जाऊंगा रिपेयर कराने फिर वापस लेने आऊंगा, इतने में तो मैं नया सामान मंगा लूंगा। लेकिन रियल कॉस्ट हम लोग नहीं पे करते किसी भी चीज का, अगर इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी जोड़ा जाए, वेस्ट मैनेजमेंट का भी कॉस्ट जोड़ा जाए, तो किसी भी प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो जहां जहां पॉसिबल हो रिपेयर कराएं। इन सब में जब सब हो गया, रिड्यूस हो गया, रिप्लेस हो गया, रिपेयर हो गया, तब जो बचा है उसको रिसाइकलिंग के लिए दें।
2: आशीष जी, युवाओं की अगर हम बात करें, आप युवाओं को प्रेरित करने पर काफी बल देते हैं। अब युवा महत्वाकांक्षी भी होते हैं और वो अपने जो स्वप्न है उनको भी बहुत गहराई से देखते हैं, गंभीरता से देखते हैं और एक आधुनिक जीवन शैली भी वो जीना चाहते हैं। तो ऐसे में आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं कि आप अगर साधारण अपनी जीवन शैली को करेंगे, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो उससे आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी बल्कि आपका जीवन बेहतर होगा। तो ये बताइए कितना चैलेंजिंग है और कैसे आप इसको अचीव करते हैं जो युवा है उनको इस दिशा में ले जाने की ओर?
3: थोड़ा चैलेंजिंग होता है बट इनफ रिपोर्ट्स आर देयर इन मार्केट जहां पे ये पता है कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है जिसको अपर मिडिल क्लास बोलते हैं उसके ऊपर फिर जो इलीट क्लास एफ्लुएंट क्लास होता है। तो आज के डेट में जितनी भी मॉडर्न एज बीमारियां हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ओवरवेट हो, लोनलीनेस हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये सब उसी एफ्लुएंट क्लास में आ रहा है। तो इसलिए बहुत एविडेंट है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन करने से हमारा लाइफ की क्वालिटी ओवरऑल नहीं बढ़ सकती। उसके लिए अपने लिए समय निकालना जरूरी है, अपनों के लिए समय निकालना जरूरी है, सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, रिलेशंस पे ध्यान देना जरूरी है। तो इस पूरे मुहिम में, इस पूरे मिशन में वही थॉट प्रोसेस होता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सादगी के साथ वो समृद्धि लाई जाए तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। और वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो अगर सादगी भरा जीवन रहेगा आपका, माइंडफुल अगर आप रहोगे जीवन में, तो आपका ही ये जो तनाव है, ये जो स्ट्रेस है कम होगा, आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग इंप्रूव होगी, और आपकी अगर वेलबींग इंप्रूव हो रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी जिससे आपका काम और बढ़ेगा। तो ग्रो करने के अगेंस्ट नहीं है कोई भी थॉट प्रोसेस, बट वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस। तो वही थॉट प्रोसेस है। और गांधी जी ने बोला है कि कैपिटल में बुराई नहीं है, उसका यूज किस तरीके से करते हैं वो डिफाइन करता है वेदर इट इज एन एविल और ब्लेसिंग। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि और को साथ में लेके चलने की कोशिश करो।
2: कोई ऐसे डेटा पॉइंट्स भी हैं जिनसे उनको समझाते हैं कि कैसे आप एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर माइंडफुल कंजम्पशन करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मिनिमलाइज करते हैं जरूरत के अनुसार, तो किस तरह का फायदा होता है एनवायरमेंट को, ये थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं एग्जाम्पल्स देके?
3: आज के यूथ बहुत इंस्पायर्ड है, बहुत मोटिवेटेड है, बहुत ब्लेस्ड भी है, और हमने देखा है कि दे वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, बस उन्हें थोड़ा सा नज की जरूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर रैशनैलिटी बेस्ड बातें की जाए, लॉजिकल तरीके से कोई चीज पुट की जाए, तो उनका सपोर्ट काफी मिलता है। तो ये जो माइंडफुल लिविंग है, ये तो हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से करते आए, कोई नई चीज नहीं, हमारे सभ्यता में, हमारे ट्रेडिशंस में है। बस डेटा की मदद से जब हम लोग पुट करते हैं उनके सामने कीप इट, तो उनका इमोशंस एक्शन की जर्नी है बहुत इजी हो जाती है। अगर अभी कपड़े की बात करें तो एक कंपनी का भी रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आया था, उसमें उनका कहना था कि जो वो एक जींस बनाते हैं उसके लाइफ साइकिल में, मतलब डेनिम बनाना, स्टिच करना, शॉप पे ले जाना, फिर हमारे जैसे लोग उसको परचेज किए, यूज किए, धोए, यूज किए, धोए और फाइनली फेंके, तो उस पूरे जीवन काल में एक जींस के करीब 3800 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि आपके प्रेजेंट लाइफस्टाइल जैसा भी हो बहुत बढ़िया है, क्या उसमें छोटा सा बदलाव ला सकते हैं?
2: सो आशीष जी, एक जो प्रोजेक्ट 333 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, शायद आपने उसको खुद अपनाया भी है, तो आप बता सकते हैं अपने अनुभव से कि किस तरह से ये बेनिफिट करता है, न सिर्फ पर्सनली जो भी उसको अपना रहा है, जो भी अडॉप्ट कर रहा है उस व्यक्ति के लिए वो लाभदायक है, हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।
3: जब हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया 2021 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद उसकी शेयरिंग करें। तो उसमें जब रिसर्च किए तो ये एक इनिशिएटिव आया, प्रोजेक्ट 333, जहां पे पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है कि वो 33 पर्सनल आइटम्स के साथ 3 महीने की जिंदगी जिए। वो पर्सनल आइटम्स मतलब जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, जिसके बिना आपका जीवन नहीं हो सकता, आपका किचन वेयर, आपका सोफा, वो नहीं, आपका खुद का 33 आइटम्स।
2: कुछ अगर आप एग्जांपल दे सकते,
3: जैसे मेरे कपड़े हुए, मेरे स्टेशनरी हुई, मेरा सैनिटरी किट हुआ, मेरा ट्रैवल बैग, लैपटॉप वगैरह हुआ, तो जो चीज अगर मैं कहीं जा रहा हूं तो अपने साथ रखूंगा। तो वो चैलेंज हम लोगों ने लिया 2021 में, और आज 5 साल हो गए मैं उसी 33 सामान के साथ जिंदगी जीता हूँ। तो उससे बहुत वही लिबरेशन हुआ, क्योंकि मुझे सोचना नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, बहुत सारी चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत सारा स्पेस होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा रिसोर्स मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज, अगर अगेन 33 इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट पुटिंग सम फिगर इज इम्पॉर्टेंट। तो जिसको जो इम्पॉर्टेंट लगता है, जिसको जो कम्फर्टेबल लगता है, वो एक दायरा बना ले कि मुझे 50 चीजें या 55 चीजें के साथ 3 महीना 6 महीना ट्राई करना है, तो वो एक जो फ्रीडम है उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये सारे तरीके होते हैं अपने क्लटर को कम करने का, जिससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस कर सके। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गई है, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जितना भी कर रहे हैं उसमें क्या थोड़ा कम किया जा सकता है। तो दो तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं, एक तो ग्रोसरीज वगैरह मंगाने में, तो उसमें भी अगर हम लोग बल्क में मंगाते हैं या खुद जाके ले आते हैं तो अननेसेसरी जो पैकेजिंग है वो कम होगी
2: जी।
3: और उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट के दृष्टिकोण से, वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, वो है पैकेज्ड फूड, उसको कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें फिर जब सामान आता है तो वन टाइम प्लास्टिक, वन टाइम कटलरी, और उसमें फिर जो वो खाना लगा हुआ होता है उसको वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होती है उसको रिसाइकिल करने में। तो क्या हम लोग इस तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स जो करते हैं उसको थोड़ा सा कम करें, एलिमिनेट कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट शुरुआत तो करें, तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
2: तो इसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें, एवरेज एक आम नागरिक कैसे ये पहचान करे कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, माइंडफुल कंजम्पशन के दायरे में आती है, और कौन सी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है जो माइंडलेस कंजम्पशन के दायरे में आती है और जिसको हम हटा सकते हैं।
3: तो इसमें दो तीन प्रश्न हमेशा मिलेंगे आपको जब भी हम लोग परचेज करने की सोच रहे हैं या शॉपिंग करने का या किसी भी तरीके का कंजम्पशन करने की सोच रहे हैं, तो क्या हमें इसकी जरूरत है इमीडिएटली, अगर मैं इसको 3 महीने बाद भी लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा। तो जो 3 महीने का गैप है या 2 वीक का गैप है उससे आपको इमीडिएटली पता चल जाए कि ये रियल में नीड है या वांट है। तो एक बार नीड वर्सेस वांट की चीज हो गई तो जैसा बोलते हैं ना कि गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, वैसे ही कंजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पल्स शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो जब हमें महसूस हो रहा है इम्पल्स है तो बोले कि चलो 2 घंटे बाद ही कर लेंगे, तो फिर हम लोग जजमेंट लेने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे कि ये सही में नीड है या वांट है, और फिर नीड है कि वांट है फिर वो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि आज इसको मैं नहीं खरीदता हूं या खरीदती हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, 2 हफ्ते बाद खरीदूंगा, तो फिर 2 हफ्ते कम से कम वो चीज टली, तो 2 हफ्ते तक तो कम से कम वो इमिशंस इनडायरेक्टली बचे।
2: जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था वही वांट में ये भी आ जाता है कि आप अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनके साथ कंपीट करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई चीज है तो आप भी वो ले लेते हैं हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत सारे पहलू हैं वांट के, जिसमें शायद अगर हम थोड़ा सा कहें कि हार्श वर्ड है लेकिन उसको लालच या ग्रीड भी कह सकते हैं, तो उससे हमें बचना है।
3: बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीड का तो कोई एंड ही नहीं होता ना, देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, वो तो हमने सुना ही है, और उसका वो रेस का एक स्पाइरल है वो कभी खत्म नहीं होगा, और उससे स्ट्रेस ही होना है। जो पहले मैंने एक बार शेयर किया एक्स से 3x और 5x की बात, वो वही चीज है। तो हमें देखना है कि हमारी जर्नी क्या है, क्योंकि हम लोग सबकी जर्नी अपनी अपनी है, और हमारे कैनवस पे जिस चीज की जहां जरूरत है उस पे अगर फोकस करेंगे तो बहुत लाइफ सिंप्लीफाइड रहेगी और बहुत ही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे हम लोग,
2: हेल्दी लाइफ भी जी पाएंगे। और शायद ये भी है कि आपका जो फिजिकल स्पेस जब फ्री होता है तो आपका मेंटल स्पेस भी फ्री होता है, आपको कम चीजों का ध्यान रखना है।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो ऐसे में हम अपनी हॉबीज का या अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा टाइम दे सकते हैं,
3: बिल्कुल
2: अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको ज्यादा टाइम दे सकते हैं, आपका क्या अनुभव रहा है?
3: 100% मैम, तो अभी हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज का जो लाइफस्टाइल है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज गुड, लेकिन उसी में डेटा भी बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ही बहुत ज्यादा लोनलीनेस है, वहां के बच्चों

0: सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं ना, तो आम तौर पे धारणा बनी है कि हमें बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बोला जाएगा
1: जी।
0: बोला जाएगा ये मत करो वो मत करो, होता ना साधु बन के हिमालय पे चले जाओ। तो उस कारण से क्या होता है कि लोग इस लाइफस्टाइल को, इस जीवन शैली को ट्राई नहीं करने चाहते, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होता है शुरुआत में। तो ये जो मिथ है उसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि माइंडफुल होने के लिए डे वन पे छोटे छोटे एक्शन लेने की जरूरत है, और वो छोटे छोटे एक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, इतनी सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, फूड, फैशन, ट्रेवल, टेक्नोलॉजी, किसी भी मायने में अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रेगुलेट करती हैं तो आपकी वेलबींग बढ़ेगी। वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा। वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी पर्सनल जर्नी, पर्सनल रिलेशंस इंप्रूव होंगे, तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। तो उस चीज को बताना कई बार होता है कि डे वन पे हम लोग बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि मत कीजिए, और किसी भी चीज में वो हेल्पफुल नहीं है। क्योंकि हमें अगर कुछ 6 महीने बाद कोई चीज अचीव करनी है तो हमें वी हैव टू ब्रेक डाउन दैट टारगेट, उस टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना जरूरी है। तो माइंडफुल लिविंग में भी वैसा ही है, एक छोटे सी चीज से शुरुआत करते हैं और वो चीज भी आपको डिसाइड करनी है। तो देयर इज नो फिक्स गाइडलाइन कि अगर आप एक्स करते हो तो आप माइंडफुल हो, अगर आप वाई करते हो तो माइंडफुल नहीं हो। ये एक्स और वाई हर इंडिविजुअल अपने लिए डिसाइड करे
1: जी,
0: कि वो सैकड़ों चीजें कंज्यूम कर रहा है उसमें कहां वो किस चीज को रेगुलेट कर सकता है, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पीस। क्योंकि लाइफस्टाइल और पीस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो अगेन वो सस्टेनेबल नहीं होगा।
1: हमारे जो श्रोता हैं जो आपकी बात सुनकर इंस्पायर होंगे और वो तुरंत कुछ ऐसा करना, बदलाव लाना चाहें अपने जीवन शैली में जो सिर्फ त्वरित ना हो, लंबे समय तक उसका पर्यावरण को फायदा हो, तो कोई ऐसी कॉमन चीजें बता सकते हैं जो हरेक के लिए लागू है, कोई सरल 2-3 ऐसे उपाय, ऐसी बदलाव अपनी जिंदगी में जो वो ला सकते हैं?
0: जहां जहां अगेन पॉसिबल हो, तो अगर हम लोग कार यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में अगर एक बार कार पूल कर ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। महीने में मैं एक बार ट्रेवल कर रहा हूँ तो साल में 12 ट्रिप ले रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर ट्रेवल। तो 12 एयर ट्रेवल करने से कम करके अगर एक भी कम करके मैंने ट्रेन ले लिया तो एयर ट्रेवल का बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है।
1: यस।
0: वैसे ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज हर इंसान, चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़े लोग हो, दिन भर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से हमारा मिलना होता ही है, चाहे वो काम के कॉन्टेक्स्ट में हो या वो लेजर एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो डेटा बताती है कि एक आम हिंदुस्तानी करीब 3 घंटे रोज सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। काम पे तो जो हम लोग करते हैं वो करते ही है, तो उस 3 घंटे को घटा के 2 घंटे भी किया जाए तो उसका भी बहुत बड़ा इमिशन है। तो अगर 1 घंटे भी कम किया जाए तो साल भर में 365 घंटे हमने स्ट्रीमिंग कम की तो उसका बहुत बड़ा इमिशन बचेगा। सिमिलरली जो वर्किंग लोग हैं, हमारे मेल्स में हम लोग बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, तो वो अनरीड मेल क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो किसी कंपनी के सर्वर में सेव है, तभी तो आपके लिए वो जब आप खोलती है वहां अनरीड दिखाता है। तो हर मेल का 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम इमिशन है, कितना बड़ा मेल है, उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है। तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे इमिशन बच सकते हैं। तो जो भी पहलू है हमारी जिंदगी का, किसी भी चीज को काम करने में चूंकि एमिशन्स हो रहे हैं तो किसी भी चीज को में हम लोग थोड़ा माइंडफुलनेस लाते हैं तो एमिशन बचेंगे, चाहे वो फूड हो, फैशन हो, ट्रेवल हो, टेक्नोलॉजी हो।
1: कुछ और एग्जांपल्स भी आप बताना चाहेंगे?
0: तो जैसे IIT बॉम्बे के एक सर है, सोलंकी सर, तो उनका बहुत सुंदर सा एक इनिशिएटिव है वाह का, रिंकल्स अच्छे हैं। तो उनका कहना है कि हफ्ते में एक दिन अगर हम लोग बिना आयरन किया हुआ कपड़ा पहने तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आयरनिंग का एमिशन्स बहुत है, 150 ग्राम, 200 ग्राम एक कपड़े को आयरन करने में एमिशन होता है। एनर्जी हमने यूज की बिजली को, बिजली उत्पन्न करने में जो इमिशन हुआ,
1: हाँ,
0: तो कार्बन इमिशन वैसे कैलकुलेट हुआ कि हमने डायरेक्ट इसके लिए तो बिजली यूज की
1: जी।
0: लेकिन ये बिजली को पहुंचाने में क्या इमिशन हुआ वो मेजर होता है। तो अगर एक कुर्ते में मैंने 100 ग्राम यूज किया एग्जांपल के लिए, तो 52 हफ्ते में मैं सिर्फ 52 कपड़े कम करूंगा तो 5.5 किलो इमिशन हमने कम किए। तो जहां पे भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो, वो करने की जरूरत है। और वो जरूरत इसलिए कि कई बार हमें लगता है इस छोटे से एक्ट से बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग छोटा छोटा ही बदलाव लाएंगे तो कलेक्टिवली बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और हर देश का चूंकि वर्ल्ड को एक कमिटमेंट है एमिशंस को लेके, तो उस कमिटमेंट में बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है। वो
1: एक तरह से आप कह रहे हैं कि हम सबके पास ये शक्ति है कि हम योगदान दें, जो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करना चाहते हैं, एमिशंस कम करना चाहते हैं। एक और पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह के नवाचार आए हैं जो आपको प्रमुख लगते हैं, जिनसे ये उम्मीद जगती है कि हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं।
0: सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये इंटरव्यू ही है कि इतने बड़े स्केल पे इतने सारे लोगों को आप बुला रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। देश की बात करें मिशन लाइफ के बारे में, ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 गोल 2030 तक के लिए जो है, तो 17 में से 3 गोल, गोल नंबर 3, 12

0: एंड 13 सीधे सीधे जो हम लोग बातें कर रहे हैं उससे अलाइंड है. क्लाइमेट एक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड गोल नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग. तो संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे विश्व ने भी इस चीज को समझा है कि वेलबींग और माइंडफुल लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है. कंपनीज में आजकल ESG के ऊपर बहुत फोकस है कि उनकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, उनके जो ऑपरेशन है वो इन्वायरमेंट से अलाइंड होने चाहिए. ई इन्वायरमेंट, एस सोशल एंड जी इज गवर्नेंस. तो इन तीनों ही मामले में उनको अलाइन होना चाहिए. तो उसपे बहुत सारा काम हो रहा है, हर कंपनी इस पे फोकस कर रही है कि उनके एमिशंस को वो लोग कैसे कम कर सके. सेम चीज अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस में भी आज बहुत सारी रैंकिंग में होता है ना, गवर्नमेंट रैंकिंग देती है कि आपका ए है, ए प्लस है, बी है. तो उस रैंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपके कैंपस में क्या सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं. तो इंसान के लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रहे हैं.
1: आशीष जी, जो भी युवा चाहे कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव छोड़ें एनवायरनमेंट पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, अपनी जीवन शैली को साधारण करके खुद भी ज्यादा खुश हो, डीक्लटरिंग जैसा आप कह रहे हैं कि जब डीक्लटरिंग होती है तो फिजिकल स्पेस क्रिएट हो रही है, मेंटल स्पेस क्रिएट हो रही है, आप और चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जो चीज जरूरी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं. तो इस पूरी जर्नी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के यूथ को कि किस तरह के वो एक दृष्टिकोण अपनाएं, माइंडसेट अपनाएं, या कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव लाएं ताकि वो बहुत ही सक्रिय भागीदार बने इस पूरी यात्रा में, इस पूरे मुहिम में.
0: तो इम्पोर्टेंट बस वो है कि वी हैव टू डू आवर बिट, क्योंकि उस चीज को इनसिग्निफिकेंट हम लोग समझने की गलती नहीं कर सकते. या इस चीज को अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि जब तक हर इंसान अपनी भागीदारी नहीं करेगा तब तक कोई भी पॉलिसी अपना जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो नहीं ला पाएगी, क्योंकि पॉलिसी को धरातल में सक्सेस या अनसक्सेसफुल जनता करती है. इसलिए हमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है. किस मायने में कर सकते हैं, तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जहां भी उस इंसान को, मुझे, मेरा पर्पस अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी एक्स वाई जेड का अलग हो सकता है, अपने अपनी जर्नी को मैं पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, और जहां लगता है कि हाँ ये चीज थोड़ी इम्प्रूव करने की जरूरत है उस चीज को इम्प्रूव करें. जैसे मुझे मालूम है मुझे 2 किलो वजन कम करना है, तो मेरा फोकस वेट पे होगा, मेरा फोकस थोड़ा एक्सरसाइज करने पे होगा. किसी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे, तो उसका फोकस डिजिटल डिटॉक्स पे होगा. किसी को लगता है कि उसको बहुत इम्पल्सिव आदत है वो शॉपिंग करने की. तो अपने हर अलग अलग इंसान का अलग अलग फोकस हो सकता है और उसका जज वो खुद ही होगा. तो यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये ही करने की जरूरत है. जो भी आपको सही लगता है वो कीजिए, लेकिन करना जरूरी है. जब तक वो नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने जो रिसर्च किया था उसमें यही पाया कि इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज, बींग द चेंज वाला कंपोनेंट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है. हम लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन होने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं. तो अभी भारत जिस स्टेज में है, हमें बदलाव होने की भी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है.
1: सो आशीष जी, आप जो इस राह पर चले हैं माइंडफुल कंजम्पशन को बढ़ावा देने की राह पर, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा आपका अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
0: तो मैम, मैंने इरमा के बाद साबरमती गांधी आश्रम अहमदाबाद में पर्यावरण मित्र नाम की एक संस्था स्टैब्लिश की, जो कागज बिनने वाली बहनों के साथ काम करता है. तो इट इज अ कोऑपरेटिव ऑफ रैग पिकिंग सिस्टर्स. तो वो इनिशिएटिव अभी भी चल रहा है, 12 साल हो गए. लेकिन 2014 से 2020 की जर्नी में दो चीज बहुत सामने आई, बार बार आई, कि हमारे जो यूथ है, हमारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अर्बन यूथ प्रिविलेज्ड सेक्शन में जो है, वो बहुत ज्यादा समय कम्युनिटी को नहीं दे पा रहे. वो आते हैं एज एन इंटर्न, अपना 2-4 वीक रहते हैं, चले जाते हैं. तो वो एक सवाल था कि सब कुछ है जिंदगी में फिर भी गिव बैक क्यों नहीं कर पा रहे. और दूसरा सवाल था, 2020 की बात है ये, कि 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन हम लोग अभी तक वो भारत क्यों नहीं बना पाए जिसको कल्पना हम लोग करते हैं, डिजायर्ड इम्पैक्ट क्यों नहीं आ पाया. तो 2021 में 15 महीने की एक यात्रा की मैंने, प्रोजेक्ट मंथन, जहां 2500 घंटे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए 95 ऑर्गेनाइजेशंस विजिट करने में, जहां 8 अलग अलग डोमेन के लोगों से हम लोग मिले, किसान से, हाउसवाइफ से, वर्किंग प्रोफेशनल से, IAS, IPS, MLA, सोशल चेंज मेकर, सबसे ये समझने की कोशिश की कि ये जो इम्पैक्ट है उनके दृष्टिकोण में उनके काम का क्या रहा. तो उस पूरे 15 महीने की जो जर्नी थी उसका निचोड़ यही निकला, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज वी समटाइम्स फॉरगेट टू बी द चेंज. तो माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल कंजम्पशन, सादगी भरा जीवन है उसका एक सार बन के निकला. कि ये जो चीज है वो इस दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हम लोग सब लोग बी द चेंज भी हो पाएंगे और सादगी भरे जीवन से तनाव भी कम होगा। इसीलिए फिर इस पूरे मूवमेंट को हम लोगों ने लॉन्च किया और उस पर फिर ये थोड़ा सा समय लिया कि ये बातें अगर युवाओं तक पहुंचानी है तो उनकी भाषा में पहुंचानी होगी। तो वहां पे फिर डेटा बेस्ड अप्रोच हम लोगों ने लिया कि कैसे डेटा के माध्यम से एक्सपीरियंशियल

0: गेम्स के माध्यम से ये सारी बातों को सामने रखा जाए। तो यहाँ से शुरुआत की और एक नंबर अपने आप को इंस्पायर करने के लिए हम लोगों ने एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये नंबर लिया कि 10 लाख लोगों तक ये बात 2030 तक पहुंचानी है। तो इसीलिए ब्रिज फॉर चेंज उस मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे ये बातें हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, इंटरैक्टिव तरीके से, गेम्स के तरीके से युवाओं तक पहुंचा सके।
1: आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गहन बातचीत के लिए और हमें बताने के लिए कि सादा जीवन शैली सभी के लिए कितनी फायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और हम सब उसमें अपना अपना योगदान करें ये कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: मेरी नजर।
1: दोस्तों, उमा देवी को नौशाद साहब का संगीत बहुत पसंद था। जब नौशाद साहब ने उमा देवी का ऑडिशन यानी स्वर परीक्षा ली तो वे भी उमा देवी के गायन से काफी प्रभावित हुए और जब दर्द में उन्होंने पहला गाना गाया तो पहला ही गीत सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद तो उनके गायन का सिलसिला तेजी से चल पड़ा।

ये गाना जब ये यूपी में पिक्चर लगी, इसका नाम है अनोखी अदा। तो साहब सिनेमा में इतने पैसे फेंकते थे इसके रिदम और गाने पर कि मैं बयान नहीं कर सकती।

0: दोस्तों, चूंकि संगीत की दुनिया बदल रही थी और नई प्रतिभाएं अपना असर दिखा रही थीं, इसलिए उमा देवी के गाने लगातार कम होते चले गए। उन्होंने अपने दोस्त दिलीप कुमार साहब से कहा कि वो अपनी किसी फिल्म में अभिनय का मौका दें। इस तरह 1950 की फिल्म बाबुल में पहली बार नजर आई दिलीप कुमार के साथ।
1: देखो, पहले मैं गाने गाती थी और अच्छी बहुत मशहूर हीरोइनों के गाने दिए मैंने, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं भी हीरोइन बन जाऊं। अब मुश्किल ये हुई कि हीरोइन सिंगल होती और मैं डबल। मैंने दिलीप कुमार जी के संग रोल लिया और वो पिक्चर थी बाबुल। बाबुल में मैं उनकी प्रेमिका थी, लेकिन मुश्किल ये हुई कि 2-3 हाथ मारे तो वो फिर पलट के कभी नहीं।
0: दिलीप कुमार ने ही उनका नया नाम रखा था टुनटुन।

0: समाया।
1: दोस्तों, उमा देवी के गायन का सफर दोपहर की तेज धूप की तरह चमका, लेकिन इससे पहले कि शाम ढले यानी उनके गायन का सफर धीमा हो, उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। वो रास्ता था अभिनय का, और अभिनय का ये सुझाव भी संगीतकार नौशाद की ओर से ही था, और उमा देवी बन गईं टुनटुन।
2: हाय हाय हाय हाय।
1: हास्य अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अनगिनत किरदार निभाए, और फिल्मी पर्दे पर लोगों को दिल खोलकर हंसाना उनका शगल बन गया।
2: हाय हाय हाय हाय।
1: लोगों को उमा देवी के करियर का ये दूसरा रास्ता इतना पसंद आया कि लोग आज भी उन्हें टुनटुन के ही नाम से याद करते हैं। एक रूढ़िवादी पंजाबी परिवार में जन्मी उमा देवी को परिवार की ओर से कोई बढ़ावा या कोई मदद न मिली, इसलिए जीवन के खट्टे मीठे रास्तों को तय करती हुई अपने हुनर को ही उन्होंने अपनी जिंदगी में मील का पत्थर बना लिया।

दोस्तों 50 और 60 के दशक में टुनटुन ही एक महिला कॉमेडियन थी जिनके पर्दे पर आते ही हॉल में ठहाके गूंजने लगते थे। उस दौर में हर दूसरी तीसरी फिल्मों में वे नजर आया करती थीं। ये थी उनके अभिनय की कामयाबी और यही थी उनकी प्रतिभा। गुरुदत्त के साथ टुनटुन ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55

0: शिकायत कर लो।
1: अमिताभ बच्चन के साथ टुनटुन नजर आई फिल्म नमक हलाल में। दोस्तों, आखिरी बार टुनटुन फिल्म कसम धंधे की में नजर आई। आज उमा देवी यानी टुनटुन हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अपनी आवाज अपने फन के जरिए आज भी हम सबके दिलों पर राज कर रही हैं।

0: तो आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायिका उमा देवी यानी टुनटुन पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ।
2: आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं। अब सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
3: Nine, eight, seven,

हेलो, हजारीबाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ अंजलि सिन्हा, तो स्वीकार करें मेरा भी प्रणाम, नमस्कार, जोहार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। तो दोस्तों, सड़क कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। जिंदगी भी सड़क जैसी है, बस धैर्य के साथ चलते रहें, सुखद मोड़ अवश्य आएगा।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। दोस्तों, आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1987 में वैश्विक जनसंख्या 5 अरब के आंकड़े तक पहुंच गई थी। इसकी शुरुआत 1989 से हुई है। 11 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व जनसंख्या दिवस 2026 का मुख्य विषय है युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करना आज और भविष्य के लिए। दोस्तों,

इस दिन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना, प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और जनसंख्या के रुझानों को सतत विकास के साथ जोड़ना है। 2026 की थीम युवाओं की शिक्षा, कौशल और अधिकारों में निवेश करने पर जोर देती है, ताकि वे भविष्य के जनसंख्या प्रवृत्तियों को आकार दे सके। यह दिन सोच समझकर परिवार नियोजन को बढ़ावा देता है और विश्व स्तर पर मातृ एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच निश्चित करता है। साथ ही यह उन व्यवस्थागत लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने का आह्वान भी करता है, जो महिलाओं और लड़कियों को श्रम बाजार और समाज में समान रूप से भाग लेने से रोकती है। विकास करने का सबको अधिकार है। दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस का काफी महत्व है। 2026 में वैश्विक जनसंख्या के लगभग 8.3 अरब तक पहुंचने के साथ यह दिन इस बात पर प्रकाश डालता है कि जनसंख्या में बदलाव कैसे आवास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जलवायु संबंधी जोखिमों को प्रभावित करते हैं। यह वैश्विक मानवाधिकार बसों को स्थानीय वास्तविकताओं से जोड़ता है, जैसे कि भारत की आगामी 2027 की डिजिटल जनगणना की तैयारियां। इस दिन को मनाने से यह पता चलता है कि कैसे युवाओं को सशक्त बनाने से बेहतर परिवार नियोजन और मजबूत अधिक समावेशी समुदायों का निर्माण होता है। दोस्तों, अब इसकी वर्तमान चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। विकासशील देशों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या अक्सर बुनियादी ढांचे पर भारी बोझ डालती है, जिसके परिणाम स्वरूप महंगाई, गरीबी और भीड़भाड़ में वृद्धि होती है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं तक लोग नहीं पहुंच पाते। कम और मध्यम आय वाले देशों में महिलाओं और परिवारों को अभी भी गर्भ निरोधकों तक पहुंचने में काफी परेशानी होती है, जिससे अनचाहे गर्भधारण की दर अधिक हो जाती है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र अक्सर जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों के साथ मेल खाते हैं। तो दोस्तों, इस पर ध्यान देना आवश्यक है।

सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नॉमिनेशन 31 जुलाई 2026 तक खुले हैं। इसके लिए 5 से 18 साल के उम्र के भारतीय नागरिक खुद नॉमिनेशन कर सकते हैं या राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के जरिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा नॉमिनेट किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 6 कैटेगरी में असाधारण उपलब्धियों और बेहतरीन योगदान के लिए दिया जाता है, जैसे बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति, विज्ञान और टेक्नोलॉजी। जो इन सब में उपयुक्त हों वे भारतीय नागरिक 31 जुलाई 2026 तक नामांकन कर सकते हैं।

दोस्तों, अब जानते हैं आज का मौसम का हाल। तो दोपहर तक आसमान साफ रहने का अनुमान है और शाम तक छीटफूट जगहों पर बारिश हो सकती है। तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और कल यानी 12 जुलाई के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और आज सूर्यास्त का समय है 6:44 पर और कल सूर्योदय का समय है 5:11 पर। आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता अधिकतम 72% और न्यूनतम 40%।

दोस्तों, आज 11 जुलाई है, तो जानते हैं आज इतिहास की मुख्य बातें। तो 1987 में आज ही के दिन वैश्विक जनसंख्या ने 5 अरब का आंकड़ा पार किया था, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1989 से इस दिन को जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता फैलाने हेतु विश्व जनसंख्या दिवस घोषित किया। 1902 में आज ही के दिन भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह का जन्म पंजाब में हुआ था। 1796 में आज ही के दिन अमेरिका ने जे संधि के तहत ग्रेट ब्रिटेन से डेट्रॉइट शहर पर अधिकार प्राप्त किया था। 1995 में आज ही के दिन अमेरिका और वियतनाम के बीच दशकों के तनाव के बाद राजनयिक संबंधों की फिर से शुरुआत हुई।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब जानते हैं कि 11 जुलाई को किनका जन्म हुआ था। तो आज ही के दिन 1902 में सरदार बलदेव सिंह का जन्म हुआ था। यह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, जिन्होंने भारतीय सेना को संगठित और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज के दिन भीष्म साहनी का निधन हुआ था, आज ही के दिन 2003 में। ये एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक, उपन्यासकार और नाटककार थे। उन्हें मुख्य रूप से उनके उपन्यास तमस के लिए जाना जाता है। आज ही के दिन 2011 में सेकेंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे का निधन हुआ था। ये परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के एक अत्यंत बहादुर सैनिक थे।

अब नजर डालते हैं स्थानीय गतिविधियों पर। तो आज सिविल सर्जन की समीक्षा बैठक है सीएस कार्यालय में 11:30 से। परिवहन विभाग की बैठक है जिला परिवहन कार्यालय में 1:00 से। निजी स्कूलों की 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए आज होगी लॉटरी। सीएचसी बरकट्ठा में सहिया साथियों की क्लब मीटिंग आयोजित, विभिन्न योजनाओं व स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य जागरूकता और मलेरिया से बचाव को लेकर दिया गया प्रशिक्षण। राज्यपाल से मिला विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद का प्रतिनिधि मंडल, सभी पूर्व छात्रों से पोर्टल पर पंजीकरण का किया आह्वान। दवाओं के सही उपयोग को लेकर ज्ञान ज्योति कॉलेज का जागरूकता अभियान। दोस्तों, विकास कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय सीमा के भीतर योजनाओं को पूर्ण करने का आह्वान किया गया है। गौतम बुद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में विश्व जनसंख्या दिवस पर सेमिनार शुरू। हजारीबाग में जनजातीय गौरव उत्सव की तैयारी में तेजी। हजारीबाग के युवा अधिवक्ता वीरेंद्र ने पेरिस में बढ़ाया भारत का मान, दुनिया के 20 चुनिंदा वकीलों में चयन। एसआईआर अभियान को लेकर मतदान केंद्रों का दौरा।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम हेलो हजारीबाग से अंजलि को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: 10, 9, 8, 7,

0: हेलो हजारीबाग।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

पेंटर बाबू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। रचना थी कतील शिफाई की। आइए अब सुने ये गाना, फिल्म का नाम हीर राँझा। मोहम्मद रफी की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शंकर हुसैन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल थे, खयाम का संगीत था। आइए अब सुने आनंद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार की रचना है, सलील चौधरी का संगीत।

आनंद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज थी। इसी के साथ चित्रपट संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम प्रस्तुत है मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सुनवा रहे हैं बारिश वाले गीत। देश के बहुत सारे हिस्सों में बरसात हो रही है और कुछ जगहों पर बरसात नहीं हो रही है। जहां पर बरसात नहीं हो रही है, इस शुभकामना के साथ ये गाने सुनवा रहे हैं आप तक। बरसात फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

0: नमक हलाल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। अनजान की रचना थी, बप्पी लहरी का संगीत था।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त

0: 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनिए
2: विविध भारती पर। अब आपको सुनवा रहे हैं लगान फिल्म का गाना उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में।

लगान फिल्म का गाना उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, शान और साथियों की आवाजें थी। जावेद अख्तर के बोल, एआर रहमान का संगीत था। फिल्म 1942 अ लव स्टोरी, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाजें हैं। जावेद अख्तर के बोल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
1: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
0: विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। श्री टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक सशक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग हो सकता है, लेकिन उन्हें दृढ़ संकल्प और सेना के साहस के साथ ही जीता जा सकता है। विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के 6 स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का आज जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इसमें उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया है।
2: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को ही सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे इंग्लैंड के साथ खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जाने माने अभिनेता कुमार गौरव का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं और कुछ गाने उन्हीं के नाम। फिल्म लव स्टोरी लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजें हैं, आनंद बख्शी की बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

लव स्टोरी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देवबर्मन का संगीत था। ये फिल्म है नाम, पंकज उधास और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: तेरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार राहुल देव बर्मन।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

जुबैदा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में। शब्दकार थे जावेद अख्तर और संगीतकार एआर रहमान। फिर तेरी कहानी याद आई, ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। अलका याग्निक की आवाज, कतील शिफाई के बोल हैं।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

साजन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। रचना थी समीर की, संगीतकार नदीम श्रवण। 1947 अर्थ फिल्म का गाना सुनिए साधना सरगम की आवाज में।

1947 अर्थिस फिल्म के गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं सुरीला सफर कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। वैसे जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर हैं, जुड़े हैं, उन्हें पता चल गया होगा कि आज की इबारत क्या है, लेकिन जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर मौजूद नहीं हैं, उनके लिए हम आज की इबारत बता देते हैं। वैसे संक्षेप में बता दें कि इस कार्यक्रम का स्वरूप ये है कि हम एक इबारत पोस्ट करते हैं और उस इबारत से जुड़ी हुई बातें आपको साझा करनी है। उनमें जो शब्द शामिल होते हैं, उन शब्दों से गीत आपको चुनने होते हैं और कुछ गीत हम अपने आप सहेज कर रखते हैं, तो देखते हैं कि आपके और हमारे गाने कितने मैच करते हैं। बहरहाल, इबारत जरा हम पढ़कर आपको सुना दें। ये दिल बड़ा अजीब है, कभी खुद से रूठ जाता है, कभी जमाने से, कभी खुशियों की पालकी पर इंतजार के मोती पिरोता है, तो कभी यादों की नदी में डूबकर मुस्कान सजा लेता है, कभी अनकही बातों के बोझ तले खामोश हो जाता है और हर सुबह नई आशाओं के दीप जलाकर मुस्कुरा उठता है, कभी उदास शाम को तन्हाई की चादर ओढ़ चांद का रास्ता देखता है। शायद इसी का नाम दिल है, जो टूटकर भी खामोशियों और तन्हाइयों को गुनगुनाता हुआ प्यार या प्रेम को जिंदगी में घोल लेता है। बहुत सारे श्रोताओं ने आज टिप्पणियों में गाने लिख डाले हैं, जिनमें बहुत सारे गाने हमने चुन रखे हैं, वही जो आप सुनना चाहते हैं। दोस्तों, लेकिन ये बात जरा हमें बताइए कि कौन सी वो बात है जो आपके दिल में आई और आपने उसे बड़ी रुखाई के साथ नजरअंदाज कर दिया। कौन सी वो बात है जब आपने अपने दिल की बात सुनी और मानी। कौन सा ऐसा मौका आया जब दिल और दिमाग में द्वंद हुआ। वैसे दिल बहुत जज्बाती है, तो दिल पर बोझ ज्यादा न डालें। अपने दिल की हिफाजत के लिए रोजाना आप क्या करते हैं, ये भी जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर बताइएगा। और हाँ, आज की इस इबारत में इंतजार भी है, खामोशी है, रास्ता है और बहुत कुछ है, तो शब्दों से जुड़ी हुई बातें भी आप लिख सकते हैं। शब्द ढूंढिए, उसमें कौन से शब्द हैं जिस पर गाने हैं, और गाने हमें सुझाते चलिए। हम सुनवा रहे हैं ये गाना, और इस गाने का जिक्र बहुत सारे श्रोताओं ने किया है। जरा देखिए, आपका गाना भी तो यही नहीं है या कोई और गाना है। कौन है हीरोइन पर्दे पर, ये भी बताइएगा, और गीतकार का नाम भी आपको बूझना है। फिल्म अनुपमा। संगीतकार का नाम पता है क्या आपको? हेमंत कुमार। सुना

कुछ दिल ने कहा। दोस्तों बताइए जरा, आपके दिल ने कब क्या कहा और आपने किन लम्हों में खुद से गुफ्तगू की, ये बताते चलिए। और साथ में किसका इंतजार कब किया और कब किसी के इंतजार में दीप जलाए, कौन से वो गाने हैं। हमने तो आपको हिंट भी दे दिया कि कौन कौन से गाने हैं, देखते हैं कि कौन से श्रोता लिख पाते हैं हमने जो गीत चुना है वो। बहरहाल ये तो श्रोताओं वाला ही गाना था। बहरहाल आगे बढ़े और आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचाते चलें। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी अपने का इंतजार दिल की सबसे खूबसूरत आदत है। हर आहट में उसका एहसास, हर दस्तक में उसके आने की आहट सुनाई देती है। जब किसी अपने के आने का इंतजार रहता है तब घड़ी की सुइयां भी जैसे थोड़ी धीरे चलने लगती हैं। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बहुत खूब है आज की इबारत, जो हमें सिखाती है कि दिल का अजीब होना ही उसकी खूबसूरती है। यदि दिल में उदासी न हो तो खुशियों का मूल्य समझ में ही नहीं आएगा, और यदि वो इंतजार के मोती न पिरोए तो मिलने का आनंद अधूरा रहेगा। दिल दरअसल विपरीत भावनाओं, खुशी गम शोर खामोशी तन्हाई प्यार के बीच संतुलन बनाने की निरंतर कला है। तो अब बात इंतजार की चली है, मतलब दो श्रोताओं ने लिखा इंतजार की बात, तो इंतजार वाला गाना सुनते हैं, फिल्म छलिया। आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, लता मंगेशकर की आवाज।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान प्रभावी तरीके से जारी। 14 जुलाई को बीएलओ और चुनाव पाठशाला की दूसरी समीक्षा बैठक। मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने पर जोर। कोयला मंत्रालय ने खोली कमर्शियल कोल ब्लॉकों की नीलामी के नए चरण की बोलियां। 23 में से 8 ब्लॉकों के लिए 16 कंपनियों ने लगाई 21 बोलियां। नई दिल्ली कंसल्टेंट्स को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर निशाना। कहा, राज्य में खराब कानून व्यवस्था के कारण निवेश की संभावना नहीं के बराबर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में 14 और 15 जुलाई को तेज बारिश का अनुमान। मौसम केंद्र ने जारी किया येलो अलर्ट। और रांची के जिम्नास्ट पृथ्वीदेव भट्टाचार्य ने दिल्ली में जीता स्वर्ण। चोट के बावजूद ऑल इंडिया जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में झारखंड का नाम किया रोशन। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 के तहत 14 जुलाई को बीएलओ, बीएलए2 और चुनाव पाठशाला की दूसरी बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार इस बैठक का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और त्रुटिहीन बनाना है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभियान के तहत सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम इसमें न जुड़ सके। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और पुराने चरणों के दूसरे प्रयास की बोलियां खोल दी है। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए कुल 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। इस प्रक्रिया में उद्योग जगत की मजबूत भागीदारी दर्शाते हुए 16 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूदा खराब कानून व्यवस्था के कारण यहां निवेश आने की संभावना नहीं के बराबर है।
1: कि राज्य में जो कानून व्यवस्था है वो काफी खराब है। आए दिन आप देखते होंगे कि अपहरण हो रहा है, चोरी, डकैती, हत्या, पूरे झारखंड में स्थिति है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार के वातावरण में भय का माहौल हो तो फिर वहां कोई इन्वेस्ट करेगा, इसकी हमें संभावनाएं बहुत कम दिख रहा है।
0: राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सरकारी वाहन लौटाने और मुख्यमंत्री से किसी भी तरह की नाराजगी की अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। रांची में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार या मुख्यमंत्री से उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं है। श्री किशोर ने कहा कि उन्होंने किसी विवाद के कारण नहीं बल्कि केवल व्यवस्था की मौजूदा खामियों पर सवाल उठाए हैं।
2: सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है, मुख्यमंत्री जी से कोई गिला शिकवा नहीं। ये व्यवस्था पर कि राज्य का पुलिस महानिदेशक वित्त मंत्री के पद का जवाब 2.5 महीना तक ना दे, ये सवाल उस पर है। राज्य वित्त विभाग का संयुक्त सचिव अगर कोई पत्र लिख दे मंत्री को, ये सर्विस रूल में कहीं नहीं है अधिकार उनको प्राप्त। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए मैंने ये कदम उठाया।
0: रामगढ़ में डाक विभाग रक्षाबंधन के अवसर पर मात्र 70 रुपए में देश के किसी कोने में हस्तनिर्मित राखी भेजने के लिए विशेष स्पीड पोस्ट अभियान चला रहा है। इस विशेष शुल्क में 55 रुपए स्पीड पोस्ट चार्ज, 10 रुपए का वाटरप्रूफ लिफाफा और 5 रुपए प्रबंधन शुल्क शामिल है। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रविशंकर राय के अनुसार इस पहल का उद्देश्य बच्चों में रचनात्मक को बढ़ावा देना और डाक सेवाओं के प्रति जागरूकता फैलाना है। दुमका जिले के सभी गांवों को इस वर्ष दिसंबर तक ODF प्लस बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए छूटे हुए घरों में शौचालय, सोखपीट और नापेट का निर्माण तेजी से किया जाएगा। गांवों को पूरी तरह कचरा मुक्त बनाने के लिए हर घर से सूखा कचरा संग्रह और उसके वैज्ञानिक निष्पादन की व्यवस्था होगी। सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र में GSSP PGT शिक्षक नियुक्ति पत्र दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की घूस मांगते हुए एक आरक्षी को गिरफ्तार किया गया है। चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिव प्रकाश कुमार ने बताया कि आरोपी सुशील कुमार को ग्रामीणों ने रंगो हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने आरोपी के पास से शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 6 ब्लैंक चेक और एडमिट कार्ड बरामद कर मामला दर्ज कर लिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @DIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @DIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोडरमा के ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब शहरी इलाकों में भी हाथियों के प्रवेश से स्थानीय लोगों में भारी दहशत है। वन विभाग के DFO सौमित्र शुक्ल ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
3: क्विक रिस्पांस टीम और वनरक्षी सभी लोग लगातार हाथियों की मॉनिटरिंग करते हैं, हाथी को ट्रेस करके उसे सेफर इलाके में ले जाने का प्रयास। इसके लिए माइकिंग कराई जा रही, लोगों में अवेयरनेस भी करी जा रही। जहां भी हाथी होता है उसके अगल बगल के सभी गांवों को हम लोग डेली सूचित करते हैं वहां पर कि यहां पर हाथी का प्रेजेंस है और यहां पर अभी बाहर नहीं निकले या रात में या अकेले जंगलों में ना।
0: इधर स्थानीय विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने लगातार हो रही जंगलों की कटाई को इस समस्या का मुख्य कारण बताते हुए वन विभाग से सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की मांग की है। दुमका का विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव 28 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसकी सुरक्षा के लिए 600 से अधिक CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। अनुमंडल पदाधिकारी कौशल किशोर ने बताया कि पूरा मेला क्षेत्र 24 घंटे नियंत्रण कक्ष की निगरानी में रहेगा। मंदिर परिसर, गर्भगृह, कांवरिया कतार और शिवगंगा जैसे प्रमुख स्थानों पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाएंगे। आज पूरे विश्व में जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बढ़ती आबादी की चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1990 से हर साल 11 जुलाई को यह दिवस नियमित रूप से मनाया जाता है। इस वर्ष का मुख्य विषय युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना रखा गया है। विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में धनबाद के सदर अस्पताल में परिवार कल्याण मेले का शुभारंभ हुआ। मेले में नुक्कड़ नाटकों और पोस्टरों के माध्यम से लोगों को परिवार नियोजन अपनाने और बच्चों के बीच उचित अंतर रखने के प्रति जागरूक किया गया। सिविल सर्जन ने बताया कि यह अभियान आगामी 10 अगस्त तक जिले के विभिन्न प्रखंडों में जारी रहेगा।
4: अभी हमारा जो आंकड़ा है 2.1% हमारा चाइल्ड बर्थ रेट, यानी प्रत्येक दंपति को दो बच्चे, यानी हमारा आबादी 1.40 करोड़ है। ये अगर हम आंकड़ा को तय करते हैं तो हमारा स्टैग्नेंट रहेगा, लेकिन हमारा झारखंड का राष्ट्रीय बर्थ रेट है हमारा 1.9। हम अभी स्टैटिक बर्थ रेट पे अभी टिके हुए हैं, ये हमें मेंटेन रखना है।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपये प्रति किलो है। राज्य में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही मौसम विभाग ने 11 से 15 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में व्यापक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि 14 और 15 जुलाई को कई जिलों में तेज और भारी वर्षा होने की संभावना है, जिससे राज्य में मानसून की कमी दूर होने की उम्मीद है।
5: 13 तारीख से रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी और कहीं कहीं पर भारी वर्षा की भी संभावना है 13-14। तब से बेहतर स्थिति रांची डिस्ट्रिक्ट का ही है, -11% है, और सबसे डिफिशियंट रेनफॉल है वो चतरा डिस्ट्रिक्ट का है, जो करीब -78% है।
0: रांची के युवा जिम्नास्ट पृथ्वीदेव भट्टाचार्य ने दिल्ली में आयोजित 3rd ऑल इंडिया मंथन जिम्नास्टिक कप के इंडिविजुअल मेन यूथ वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। चोटिल होने के बावजूद उन्होंने कड़े संघर्ष से यह मुकाम हासिल किया है और अपनी सफलता का श्रेय कोच विकास कुमार गोप व मां श्वेता भट्टाचार्य को दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान प्रभावी तरीके से जारी। 14 जुलाई को BLO और चुनाव पाठशाला की दूसरी समीक्षा बैठक। मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने पर जोर। कोयला मंत्रालय ने खोली कमर्शियल कोल ब्लॉकों की नीलामी के नए चरण की बोलियां। 23 में से 8 ब्लॉकों के लिए 16 कंपनियों ने लगाई 21 बोलियां। नई दिल्ली कंसल्टेशन को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर निशाना। कहा, राज्य में खराब कानून व्यवस्था के कारण निवेश की संभावना नहीं के बराबर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में 14 और 15 जुलाई को तेज बारिश का अनुमान। मौसम केंद्र ने जारी किया येलो अलर्ट। और रांची के जिम्नास्ट पृथ्वीदेव भट्टाचार्य ने दिल्ली में जीता स्वर्ण। चोट के बावजूद ऑल इंडिया जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में झारखंड का नाम किया रोशन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि पर, नववर्ष पर, दीपावली पर और कुछ साल पहले तो शाम होते ही हमारा काम दिया जलाकर रखने का होता था, बिजली हर वक्त नहीं रहती थी। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि दीप जलाने की परंपरा, तो जब खुशी का मौका आता है तब भी हम दीप जलाते हैं। बिल्कुल, खुशी में हम दिए जलाते हैं और खुशी का दीप जलाने की बात दिल से भी होती है कि दिल आपका, जब आप खुश होते हैं तो अपने आप दिल में खुशी का दिया जलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज की तरह होता है, इसे सुचारू रूप से चलने के लिए ब्लड प्रेशर को संतुलित रखना पड़ता है। एक श्रोता ने लिखा है कि 2014 को हृदय की शल्य चिकित्सा हुई थी, तब डॉक्टर साहब ने एक बहुत सही सलाह दी थी, आज के बाद किसी भी स्थिति में सुख में बहुत ज्यादा खुश न हो, बस प्रसन्नता को खुशबू की तरह महसूस करते रहो और दुख का समय आए तो बहुत ज्यादा दुख में न घिरते हुए अपने आप को संभाल कर रखो। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जिंदगी के चौराहे पर अक्सर हम खुद को खड़ा पाते हैं, जहां एक तरफ दिमाग की ठंडी दलीलें होती हैं और दूसरी तरफ दिल की बेबाक पुकार। दिमाग नफा नुकसान देखता है, गणित लगाता है, लेकिन दिल सिर्फ सुकून ढूंढता है। और सच तो ये है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत फैसले, चाहे वो किसी से बे इंतहा मोहब्बत हो या किसी अजनबी की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, हमेशा दिल से ही लिए जाते हैं फैसले। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। और जरा आप ये भी बताइए कि कब आप खामोश हो जाते हैं, दोस्तों के बीच कौन सी वो घड़ी है जब आपको लगता है कि हाँ तो चुप रह जाना ही बेहतर है, या घर परिवार में कौन सा ऐसा लम्हा आता है जब आपको लगता है कि चलो जाने दो, खामोश रहो, छोड़ो हटाओ, ये बात आती है। और जब आप तन्हा होते हैं तो आप अपना दिल कैसे बहलाते हैं, कोई गीत सुनते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, या फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं यूं ही बेसबब, तो अपनी बात आप बताते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है, फिल्म आकाशदीप, तो सुन लीजिए यही गाना, दिल का दिया जलाकर। जरा गीतकार और संगीतकार का नाम बूझिए। यहाँ तन्हाई भी है, दिल भी है, क्या नोटिस किया आपने?

आकाशदीप फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीतकार चित्रगुप्त, और ये हमारा सवाल भी था, श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रस्तुत गद्य इबारत की इबादत से निकले शब्दों में, मतलब इबारत से निकले शब्दों में दिल बड़ा अजीब, कभी खुद से रूठ जाता है, जमाने से, सुबह शाम, उदास, तन्हाई जैसे अनेक संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाले शब्द हैं, तो इन शब्दों की भरमार है, तो मेरे हिसाब से गीत कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, और गीत के बोल इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल की दास्तान की क्या कहें, आशा निराशा के समुद्र में हिचकोले खाता है, कभी किसी बीती बातों को दुखद याद करके मायूस हो जाता है, आंखें झरझर बहने लगती हैं, फिर अपने आप को दिलासा देकर शांत होकर अगली भोर की आशाओं की किरण के साथ प्रफुल्लित होकर एक नई ऊर्जा से भर जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब कोई मित्र परिवार का सदस्य अपने दिल का हाल या दुख बांट रहा हो तो उन्हें ज्ञान, सलाह या उपदेश की जरूरत नहीं होती, उस वक्त आपका एक शांत श्रोता बनकर उनकी बात को सुनना ही आपके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है, मतलब ऐसे मौके पर आप शांत रह जाते हैं। तो अब क्या बात है, थोड़ी मुस्कुराने की बात की जाए, तो अपने मुस्कुराने की बात आप बताइए कि कब आप मुस्कुरा पड़ते हैं। कभी कभी यूं ही बैठे बैठे लोग मुस्कुरा उठते हैं अपने आप, कुछ लोग मोबाइल में कुछ टेक्स्ट देकर, कुछ मैसेज देखकर मुस्कुरा उठते हैं, आजकल तो रील देखकर मुस्कुराने का जमाना बड़ा गजब का है। जरा अपने अनुभव भी साझा कीजिए, आप कब और कैसे मुस्कुराते हैं, बच्चों की नटखट शरारतों पर मुस्कुराना होता है, तो बताइए। फिल्म का नाम आपको बूझना है, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।

भाई, किसी की मुस्कुराहट से आपका दिल बहल जाए तो मुस्कुराना ठीक है। बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी के लिए मुस्कुराना, और कभी कभी यूं ही खुद से गुफ्तगु करते हुए भी हम मुस्कुरा पड़ते हैं। बहरहाल, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हम कब कैसे मुस्कुराते हैं। ज़रा ये बताइए कि एक गाना है रूठने मनाने का, इसमें तो रूठना शब्द भी है, आप शायद भूल गए। उसके लिए बहुत कम श्रोताओं ने गाने लिखे हैं रूठने वाले। एक ऐसा गाना हम आज खोज कर ले आए हैं जिन्हें आप कभी कभार सुनते होंगे या ना के बराबर सुने हो वो, लेकिन विविध भारती के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में वो गाना बजाया जाता है, प्रसारित किया जाता है। तो कोई ऐसा गाना रूठने वाला याद आ रहा है आपको तो जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जरूर बताइए, और हम उसे देख रहे हैं और आपकी टिप्पणी वहां पर सुरक्षित रहती है और सेव रहती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने तो अकेले लोगों के दुखती रग पर हाथ रख दिया, पत्नी के गए एक साल से ऊपर हो गए, कैसे दिन गुजरते हैं, कैसे दिल को समझाकर रखा है हम ही जानते हैं, और बेड पर एक रेडियो है, रात 11 बजे तक विविध भारती सुनते रहते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल तो है, क्या कहना इसका, कभी बिना वजह मुस्कुरा देता है, कभी छोटी सी बात पर उदास हो जाता है, ये रिश्तों में अपनापन ढूंढता है, यादों में सुकून तलाशता है और उम्मीदों के सहारे हर दिन एक नई शुरुआत कर लेता है, टूट कर भी धड़कना नहीं छोड़ता, हार कर भी प्यार करना नहीं भूलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मानव शरीर का मुख्य अंग हृदय यानी दिल होता है, जिंदा रहने के लिए दिल यानी हृदय का धड़कना जरूरी है, उसी तरह आकाशवाणी रूपी शरीर का दिल देश की सुरीली धड़कन विविध भारती है, जिसे हर इंसान यानी श्रोताओं के मनोरंजन के लिए दिन रात धड़कना जरूरी होता है, तभी तो हमारे आपके रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, दोपहर 1 बजे सुरीला सफर में जुड़ने याद उनको भी आती तो होगी, हमने तो हमारे दिल की गिरह खोल दी है चुप न बैठकर, हमारे दिल ने कुछ कहा, कुछ भी नहीं, कुछ भी लिख दिया। भाई, आपका लिखा और आपका कहा विविध भारती के फेसबुक पेज तक पहुंच गया और अब श्रोताओं तक भी पहुंच गया, करोड़ों श्रोता जान गए आपके दिल की बात। चलिए अब हम इंतजार की बात करते हैं, और आपको पूछना है पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, कलाकार का नाम और साथ में स्वर और संगीत किसका है। रूठने वाला गाना भी आपको याद करना है।

खामोशी फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, राजेश खन्ना और वहीदा रहमान। स्वर और संगीत भी पूछा था लेकिन बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है, हेमंत कुमार और गुलजार के बोल थे। और हमने आपसे पूछा था रूठने पर एक ऐसा गाना है जो आपने कभी कभार ही सुना होगा। विविध भारती के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम से हम प्रसारित करते हैं वो गाना, तो उस गाने का जिक्र अभी तक किसी ने नहीं किया, लेकिन जिसने गानों के जिक्र किए हैं जिन श्रोताओं ने, वो ये गाने हैं, रूठे सैया मनाऊ कैसे, रूठा है तो मना लूंगा, और एक श्रोता ने लिखा है तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। ये गाना बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, रूठा है तो मना लेंगे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, ओ दिलवर जानिया रूठने मनाने में बीत न जाए जवानियां, और रूठो ना हमसे ओ बच्चों की नानी, और एक श्रोता ने लिखा है देखो रूठा न करो अजी रूठ कर अब कहां जाइएगा। भाई ये सारे गाने तो आप अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन ये वाला गाना पिछली बार कब सुना था, जरा याद हो तो बताइएगा। फिल्म का नाम अगर बता सके तो बताइए। गीतकार का नाम भी बताइए। फिल्म का नाम, गीतकार का नाम आपको बूझना है, पहेली जरा कठिन है।

दो फूल फिल्म का ये गाना था। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें थी। हसरत जयपुरी के बोल थे, वसंत देसाई का संगीत था। इसकी जानकारी शायद किसी को नहीं थी, किसी ने इस बारे में बताया नहीं, ना फिल्म का नाम, तो ये भी नहीं बताया आपने कि पिछली बार आपने कब सुना था। अब कभी भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुनिएगा और याद कीजिएगा ये गाना। बहरहाल रूठने पर बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं। कब तक हुजूर रूठे रहोगे लेकिन गुस्से में प्यार अबलम जी अब तो हंसो, रूठा है तो मना लेंगे ना रूठो ना रूठो मेरी जान, देखो रूठा ना करो रूठे सैया। और एक श्रोता ने लिखा है कि धन्यवाद इस गाने के लिए, और एक श्रोता ने लिखा है कि वो तो रूठा है मना लेंगे। एक श्रोता ने लिखा है, मोबाइल पर जब कोई रील देखता हूं तो कभी कभी हंस हंस कर पेट में बल पड़ जाते हैं, फिर मासूम बच्चों की मासूम हरकतें देखकर हंसी आ जाती है। ये इस बात पर है कि कब किन लम्हों में आप मुस्कुराते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि रूठना मनाना अच्छा जी मैं हारी, ये वाला गाना लिखा है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है रूठने पर गाने, लेकिन ये भी बताइए कि जब कोई रूठ जाता है आपसे तो आप मनाते हैं या आप रूठने वाले को यूं ही छोड़ देते हैं, जाओ भाड़ में जाओ रूठे रहो हम तो नहीं मनाएंगे। आप मनाते हैं या आप मनुहार करवाते हैं, दोनों बातें लिखिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं तन्हा होता हूं तो या तो मोबाइल ऐप पर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रोग्राम सुन लेता हूं, या फिर घंटे भर के लिए कहीं घूमने चला जाता हूं, अखबार भी पढ़ लेता हूं, या पुराने गाने सुनकर अपनी तन्हाई को दूर करता हूं। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं गुस्से में होती हूं तो चुप हो जाती हूं, थोड़ी देर में अपने आप गुस्सा शांत हो जाता है। ये बहुत अच्छा नुस्खा है वैसे, कि अगर सामने वाला गुस्से में कुछ बोल रहा है, आपको भी गुस्सा आ रहा है, तो आप शांत हो जाएं तो सामने वाले का गुस्सा भी खत्म हो जाता है, आपका भी। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का विचित्र फंडा है, किसको अपनाएगा किसको छोड़ देगा इसकी जानकारी नहीं होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का क्या कहें, सुबह शाम उठते बैठते कैसे इसकी धड़कन बढ़ गई, हांफने पर डॉक्टर तक पहुंचे जिन्होंने कहा कि आपने कुछ ऐसा सोचा क्या, आप जिंदगी के निजी फैसलों में कभी दिल को न ले, बस दिमाग ही लगाए और उनकी टैबलेट आज तक छूटी नहीं। भाई अपने दिल का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल है कि मानता ही नहीं और किसी पर भी आ जाता है, दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल भी टूट के छलनी हुआ, विधि ने जो घात किया, खुशियां पल भर में लुट गई, यादों को भी नदी में ही विसर्जित कर दिया, बस एक सिर्फ एक निजी जागती उसकी निशानी अब कलेजे से लगा के संभालना है और उसे आंखों में संभाल के रखना है जब तक सांस चलती है। और अब चलिए सुनते हैं ये गाना, जरा बताइए कौन है हीरोइन, पर्दे पर कौन गा रही है ये गाना, और गीतकार का नाम आपको बूझना है। फिल्म है भरोसा। इसमें इबारत के कौन कौन से शब्द हैं जरा ये भी बूझिए आप।

भरोसा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत। इस गाने में एक नाराजगी भी है और दुख भी है और साथ भी है, भूलने की बात भी है, याद भी है, दिल भी है। तो आज की इबारत के बहुत सारे शब्द इस गाने में थे और हमारे श्रोताओं ने भी इस गाने का जिक्र किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब रूठती हूं तो न मनाती हूं न मनुहार करवाती हूँ। क्या बात है भाई, ये तो अच्छा नुस्खा है कि ठीक है, ना मैं मनाऊंगी ना तुम, मतलब मैं ना मैं रूठूं ना तुम रूठो, ये वाला हिसाब किताब है ना। और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है कि पर्दे पर आशा पारिख हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मन की हर उदासी का सबब दिल का टूटना नहीं होता है, कई बार कुदरत का बदलता मिजाज और शरीर में विटामिन की कमी जैसी शारीरिक वजहें भी इंसान को अवसाद और डिप्रेशन में डाल देती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सामने वाला हमारी कोई गलती के बिना ही रूठता है तो मनाने का सवाल नहीं है, पर अगर सोचने पर हमारी गलती महसूस होती है तो जरूर मनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल के बारे में क्या कहें, ये एक ऐसी चीज है जो अनवरत क्रियाशील रहती है, जहां इसने धड़कना छोड़ा व्यक्ति इस संसार से विदा हो लेता है। दिल का धड़कना और सोचना उम्र के साथ बदलता रहता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि खुशियों में झूम उठता है दिल, गम में मौन हो जाता है। वैसे ये हमारी एक मानसिक स्थिति है जो हमारे मनोभावों को प्रस्तुत करती है, एहसास दिलाती है, चाहे वो प्यार हो, दोस्ती हो, परिवार के प्रति जिम्मेदारी। फिल्मों में दिल के संबंधित कई गाने हैं और दिल एक मंदिर है, गानों की लंबी फेहरिस्त दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल शब्द के ही गाने हमने आपसे पूछे थे, हमने तो आज की इबारत से जुड़े हुए गाने पूछे थे। एक श्रोता ने बहुत सारे शब्द लिखे हैं, जमाना, उदास, तन्हाई और

उन्होंने तन्हाई और अकेलापन सुबह शाम ये भी लिखा है, तो सुबह शाम बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है, तो चलिए भाई ये गाना सुनते हैं और देखिए कि क्या आपने याद किया। और हाँ, आपको बता दें, दो फूल फिल्म का गाना जो हमने सुनवाया था, कुछ हमारे सुधीर श्रोता हैं जिनकी जानकारी बड़ी समृद्ध है, उन्होंने लिख दिया था विविध भारती के फेसबुक पेज पर, हमें देर से दिखा, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जरा सुनिए ये गाना और बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।

आशा निराशा के समुद्र में हिचकोले खाता है, आशाओं के किरण के साथ प्रफुल्लित होकर नई ऊर्जा से भर जाता है, नए सपनों और उन्हें पूरा करने की ओर अग्रसर हो जाता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल और दिमाग का द्वंद हमेशा से रहा है, रिश्ते बनाए तो दिल से जाते हैं लेकिन निभाए दिमाग से। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अगर सामने वाले पर गुस्सा आ रहा हो तो उस समय चुप रहना ही उचित रहता है, क्योंकि गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है पर उस समय गुस्से में कही गई बातें सामने वाले को दूर कर देती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कभी खुद से रूठ जाता है दिल, कभी जमाने से। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिल बड़ा अजीब है। और अब चलिए प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनते हैं, फिल्म आह से। आपको पूछना है कौन है हीरो, कौन है हीरोइन, और गीतकार संगीतकार का नाम भी जरा बताइएगा। फिल्म आह

आह फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी। हमने आपसे पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, और हीरो हीरोइन का नाम भी पूछा था। सभी श्रोताओं ने बहुत कम वक्त में बहुत जल्द त्वरित जवाब दिया, नरगिस और राज कपूर। एक श्रोता ने लिखा कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है, मैंने अपनी डायरी में लिखा था ये गीत। और एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे ज्यादा वक्त मेरी नवासी को मनाने में लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब किसी को गुस्सा आए तो चुप रहना ज्यादा बेहतर होता है। बहुत सारे श्रोताओं ने आज अपनी बातें और अपनी यादें साझा की। किसी ने रूठने की बातें की, किसी ने तनाई की बातें की, किसी ने दिल की बातें की। दिल की बातें श्रोताओं ने ज्यादा की। बहरहाल कुछ श्रोताओं ने यह भी लिखा है कि आज का सुरीला सफर सुनते हुए हमारी दोपहर सुरीली हो गई। भाई हमारी दोपहर भी सुरीली हो जाती है आपके साथ, जब आपकी टिप्पणियों के साथ हम होते हैं। बहरहाल आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरीला सफर कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

सामाजिक प्राणी है जो घर बनाकर रहता है। एक निश्चित उम्र में वो घर बसाता है और अपने परिवार को बढ़ाने की ओर अग्रसर होता है। कई तरह के पड़ाव किसी भी मनुष्य के जीवन में आते हैं, जिनमें किसी बच्चे के जन्म को सबसे खास माना जाता है। एक नन्हा सा जीव जब दुनिया में आंखें खोलता है तो सभी की आंखों का तारा बन जाता है। उसके परवरिश करते करते कई बार माता पिता को ये लगता है कि एक और संतान हो जो उनकी पहली संतान को भाई या बहन के रूप में साथ देने आ जाए।

व्यक्ति की चाह होती है कि उसका अंश इस दुनिया में आए। अमूमन सभी को एक संतान का होना आवश्यक लगता है, परंतु कई सामाजिक रीतियां ऐसी हैं जो

ये जताती हैं कि किसी भी व्यक्ति के वंश को आगे बढ़ाने का काम उनके बेटे ही करते हैं। कई बार बेटों की चाह में भी लगातार संतान पैदा की जाती हैं और एक ही परिवार में कई बच्चे होते जाते हैं। इससे न सिर्फ जनसंख्या बढ़ती है बल्कि इतने बच्चों का पालन पोषण भी एक मुश्किल काम होता जाता है। ज्यादा बच्चों के होने से परिवार में सभी की उचित शिक्षा, उच्च जीवन और जरूरी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं। रह जाते हैं आँखों में अनगिनत अधूरे ख्वाब।

किसी भी देश की जनसंख्या एक ओर उस देश की शक्ति का प्रतीक होती है, वहीं उस देश के विकास और प्रगति के लिए जनसंख्या का नियंत्रण भी अति आवश्यक होता है। यदि किसी देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जाए तो उस देश में संसाधनों की कमी, बेरोजगारी, गरीबी और अव्यवस्था बढ़ती जाएगी। लोगों के पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पाने के लिए भी जरूरी साधन नहीं होंगे। यही कारण है कि जनसंख्या को नियंत्रित रखने के लिए समय समय पर अलग अलग जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को परिवार नियोजन की आवश्यकताएं बताई जाती हैं। कई अलग अलग स्लोगन्स के जरिए भी इस बात पर जोर दिया जाता है, जैसे हम दो हमारे दो।

देश और परिवार की उन्नति के लिए उचित निर्णय सभी से अपेक्षित है। इसी संदेश के साथ त्रिवेणी से दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षो में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था, वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड

0: में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 इकाई ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्रगिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
1: आईएनएस महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई।

0: ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
1: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी, और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रूपये से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानसप्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। चिराग फिल्म का गाना है लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। शब्दकार मजरूर सुल्तानपुरी, संगीतकार मदन मोहन।

0: राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म थी भाभी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे आरजू फिल्म का ये गाना। रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: दिल ही तो है। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। रचना थी साहिल उद्यानवी की, संगीतकार थे रोशन। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
3: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
2: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 के तहत 14 जुलाई को बीएलओ, बीएलओ 2 और चुनाव पाठशाला की दूसरी बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार इस बैठक का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और त्रुटिहीन करना है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभियान के तहत सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम इसमें न जोड़ सके। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और पुराने चरणों के दूसरे प्रयास की बोलियां खोल दी हैं। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए कुल 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। इस प्रक्रिया में उद्योग जगत की मजबूत भागीदारी दर्शाते हुए 16 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया है। आज पूरे विश्व में जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बढ़ती आबादी की चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1990 से हर साल 11 जुलाई को यह दिवस नियमित रूप से मनाया जाता है। इस वर्ष का मुख्य विषय युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना रखा गया है। विश्व जनसंख्या दिवस को लेकर आज राजधानी रांची समेत राज्यभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इधर गिरिडीह में जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से चेताडीह मातृत्व अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने लोगों से परिवार नियोजन को अपनाने की अपील की।
1: TFR रेट है वो 2.1 होता है और झारखंड का 2.4 है। तो हमने अपील किया है अपने सैया से, सुविका से और सभी स्टेक होल्डर से, इस विषय के लोगों से बात करो और परिवार नियोजन को अपनाते हुए जो देश है ताकि हमारा स्टेट जो है डेवलप्ड स्टेट में अपना प्रस्थापित।
0: दुमका जिले के मसानजोर स्थित झारखंड सरकार के सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में ठहरे 48 वर्षीय चिकित्सक डॉक्टर शशि दिनकर मिंज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आज सुबह उनका शव कमरे के बेड पर मिला। वह रांची के बरियातू के रहने वाले थे और वर्तमान में हजारीबाग सदर अस्पताल में पदस्थापित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दुमका का विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव 28 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसकी सुरक्षा के लिए 600 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अनुमंडल पदाधिकारी कौशल किशोर ने बताया कि पूरा मेला क्षेत्र 24 घंटे नियंत्रण कक्ष की निगरानी में रहेगा। मंदिर परिसर, गर्भगृह, कांवरिया कतार और शिवगंगा जैसे प्रमुख स्थानों पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए जाएंगे। पुरी में रथ यात्रा को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे ने विशेष रेल सेवाओं की घोषणा की है। रेलवे ने चक्रधरपुर मंडल से होकर गुजरने वाली 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इन विशेष ट्रेनों के चलने से झारखंड, ओडिशा तथा आसपास के क्षेत्रों के हजारों श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। धनबाद नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए नई रणनीति लागू की है। विशेष परिस्थितियों में तत्काल सफाई के लिए 75 सदस्यीय क्विक रेस्पॉन्स टीम बनाई गई है। नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने बताया कि पार्षदों की मांग और बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद प्रत्येक वार्ड में 13-13 सफाई कर्मियों की टीम बनाई गई है।
2: किसी वार्ड में एरिया ज्यादा रहता है, वहां पर सफाई सही से नहीं हो पाती, तो ऐसे केसेस को हम लोगों ने क्विक रिस्पांस टीम से साफ सफाई कराने का निर्णय लिया गया है। ये जो क्विक रिस्पांस टीम होगी, ये हमारे जो संबंधित सिटी मैनेजर और सहायक नगर आयुक्त हैं उस संबंधित अंचल के, वो डिमांड के अनुसार पर जहां जहां आवश्यकता होगी वहां वहां उसकी वाटी टीम को भेजेंगे और त्वरित साफ सफाई करवाने की कार्रवाई करेंगे।
0: राज्य में मॉनसून के सक्रिय होने के साथ ही मौसम विभाग ने 11 से 15 जुलाई के बीच अधिकांश हिस्सों में व्यापक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 14 और 15 जुलाई को राज्य में भारी बारिश की संभावना है। एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 5 पदक अपने नाम किए हैं। मिक्स्ड रिले टीम ने देश को स्वर्ण पदक दिलाया, जबकि शिवाजी परशुराम ने 5000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। भरतप्रीत सिंह, विनोद सिंह और प्राची अंकुश देवकर ने कांस्य पदक हासिल किया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम मन चाहे गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। आपको याद आ गया होगा, इसी शैली में मन चाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत किया करते थे और बहुत सारे श्रोता अपने रेडियो की आवाज सचमुच बढ़ाया करते थे, क्योंकि श्रोताओं के पसंदीदा फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम है और बहुत बेसब्री से श्रोताओं ने इंतजार किया था और हाल ही में ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो चलिए आज बढ़ाइए आवाज और देखिए कि आपका नाम इसमें शामिल है या नहीं, आपकी पसंद शामिल है या नहीं। प्यार का मौसम फिल्म का गाना।

प्यार का मौसम फिल्म का गाना था, किशोर कुमार की आवाज, और इस गाने की फरमाइश भेजी थी हमारे इन श्रोताओं ने। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा और इनके परिवार के अन्य लोग, और स्वाति नारायण, ललिता नारायण खर्चे का भी नाम लिखा है इस पोस्ट कार्ड में। और श्रोताओं की फरमाइश आई है चांदूर बिस्वा तालुका नंदुरा जिला बुल्ढाणा महाराष्ट्र से, नारायण भाव खट से, रक्षा ताई खट से, ललिता संजना और इनके परिवार के अन्य लोग, जोधपुर राजस्थान से गिरधारी लाल विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये श्रोताओं की पसंद पर।

गाइड फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, शब्दकार शैलेंद्र, संगीतकार सचिन देव बर्मन, और श्रोताओं की फरमाइश पर यह गाना था गज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी और फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन और अफसाना बेगम, महजवी शेख और इनका पूरा परिवार, दयाल बंदे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, पद्माकर राउत, सविता राउत, अश्लीला राउत, आदित्य राउत और इनके अन्य साथी। और इसके अलावा फरमाइश आई अयोध्या स्टेट भोपाल मध्य प्रदेश मयूरी परिसर से श्रवण सिंह के नारे और इनका पूरा परिवार। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म जीने की राह।

जीने की राह फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और चिट्ठी मिली बरगी नगर जबलपुर से रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर, राजेश, शुभांगी, सृष्टि और इनके परिवार के अन्य लोगों की ओर से। दयालबंद बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पद्माकर राउत, सविता राउत, अश्लेला और इनके अन्य साथी। और फरमाइश भेजी छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, सन्नी, कोमल यादव और इनके परिवार के अन्य लोग। प्रयागराज से पिंकू और बबली की ओर से फरमाइश आई। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म अनामिका, किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

अनामिका फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। रंगारेड्डी एकलव्य नगर से वेंकटेश, श्यामला, सायोना, साई प्रकाश, सुषमा, बाबू अकेला और इनका पूरा परिवार, गांव चलाला काठियावाड से सुलेमान भाई दल, खलील दल और इनके अन्य साथी, और इसी गाने की फरमाइश आई थी कटारिया कच्छ से मानविक राघाणी, डॉक्टर निषाद, कबीर, रमजान और इनके अन्य साथी, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से देवी राम इनवाती, दामिनी इनवाती। चलिए सुनते हैं अगला गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गाना। संगीत मदन मोहन का था, फिल्म थी मेरा साया, और इसे पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर ने इसी गीत की फरमाइश की थी। एनआर श्रीवात्री ने सागर मध्य प्रदेश से, शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन और इनके अन्य साथी, और नरोत्तम गौड़ और इनके साथियों ने फरमाइश भेजी थी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। चलिए अब सुने ये गाना।

मेरे हम सफर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। गणेश पीठ पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत, सुवर्णा शिंदे और इनके परिजन, जगाधारी हरियाणा से विजय मोहन, मीनाक्षी और इनके परिवार के अन्य लोग, लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और इनके परिवार के अन्य लोग। अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नाट्य तरंग। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हरिराम आचार्य का लिखा नाटक रहीम की ढाणी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। तो आइए सुनते हैं नाटक रहीम की ढाणी।

0: वाव, जैसलमेर हमको हर एंगल से फैसिनेट करता है मिस्टर ओझा।
1: अच्छा,
0: और हम क्या, दुनिया का कोई भी टूरिस्ट इधर से मुग्ध हुए बिना नहीं।

0: फॉर मी।
1: आप हरे भरे बंगाल से आती हैं, इसलिए ये सूखा रंगहीन लैंडस्केप आपके लिए नई बात हो सकती है।
0: नो मिस्टर ओझा, ये तो एक ब्रॉड पैनोरामा है। इस बैकग्राउंड पर कलरफुल परिधान, आर्ट, कल्चर और इतिहास के जो रंग उभरते हैं, लोक संगीत के जो स्वर गूंजते हैं, वो सब कोने का नहीं, फील करने का चीज है।
1: एक बात कहूँ मिस मित्रा?
0: ओ यस।
1: आप एकदम पागल हैं।
0: रियली? इज इट अ कॉम्प्लीमेंट?
1: एक खूबसूरत चीज को अप्रिशिएट करने के लिए एक खूबसूरत नजर भी होनी चाहिए, और वो नजर आपके पास है मिस मित्रा।
0: थैंक यू मिस्टर ओझा, यू आर सो नाइस टू मी।
1: आपने यहाँ का खूबसूरत सोनार किला देखा, मूमल महेंद्र की प्रेम गाथा सुनी, मांड धरती का मीठा संगीत भी सुना, अब नया तो कुछ बचा नहीं यहाँ, किधर ले चलूं?
0: हमको क्या मालूम, गाइड तुम है मिस्टर ओझा। नया कुछ नहीं बचा तो तुम हमको जंगल में किधर ले जा रहा है? क्या खाली पेट्रोल जलाने में तुमको मजा आता है?
1: नहीं मिस मित्रा, इस बार मैं आपको जैसलमेर के इतिहास का एक अछूत पृष्ठ दिखाना चाहता हूँ, देखना चाहेंगी?
0: ओह, दैट्स लाइक ए गुड गाइड। लेकिन इतिहास का अछूता पृष्ठ और इस डेजर्ट में?
1: हाँ, ये पृष्ठ स्वाधीनता संग्राम के दिनों में सन 1940 के आसपास यहाँ एक ढाणी में लिखा गया, वो भी स्याही से नहीं, शरीर के रक्त से।
0: वहाँ जरूर ले चलो मिस्टर ओझा। वो जगह क्या बोला, ढाणी?
1: ढाणी यहाँ कुएं या ताल तलैया के आसपास छोटी सी बस्ती को कहते हैं।
0: आई सी।
1: लो, आ गई हमारी मंजिल।

0: ये है रहीम की ठाणी। बहुत कम लोगों को जानकारी है इसकी। आइए।
1: रहीम की ढाणी, हम भी पहली बार नाम सुना। ये रहीम कौन है?
0: है नहीं, था। ये सामने है उसका स्मारक, रहीम का मजार, एक गुमनाम शहीद की समाधि, जिसने आजादी की लड़ाई में फिरंगी हुकूमत से टक्कर ली और अपने ही तरीके से देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल कायम की। रहीम का सिर्फ एक मिशन था, अंग्रेज सरकार का खजाना या अंग्रेज परस्तों की दौलत लूटना और उसे गरीबों में बांट देना। ब्रिटिश हुकूमत के रिकॉर्ड में रहीम खान महज एक डकैत था, चलती ट्रेन में डाके डालने वाला डाकू, जेल तोड़कर भागने वाला एक खतरनाक मुजरिम।
2: अपराधी रहीम का अमन कोर्ट की जेल तोड़ के फरार, उसके सर पर 1,00,000 का इनाम, ब्रिटिश हुकूमत का ऐलान। पढ़िए पढ़िए।

0: अल्लाह अल्लाह।
1: पीर बाबा के कदमों में रहीम खां का सलाम।
0: खुदा खुश रखे। आ रहीमा, तुझे तो फिरंगियों ने कैद खाने में डाल रखा था ना।
1: हाँ पीर बाबा।
0: तो क्या तू जेल तोड़कर निकल आया?
1: बड़े कमजोर सींखचे लगा रखे हैं फिरंगी ने, हाथ लगाते ही टूट गए और मैं बाहर निकल आया।
0: पगले, तू जानता भी है कुछ? जवानी के जोश में तू किसे ललकार रहा है? उस फिरंगी सरकार को जिसका सूरज कहते हैं कभी डूबता नहीं।
1: झूठ है, अफवाह है पीर बाबा। ये सूरज मगरिब से उगा है, इसलिए इसका मशरिक में डूबना तय है।
0: कैसे?
1: क्योंकि ये उजाला देने वाला नहीं, अंधेरा फैलाने वाला सूरज है। जुल्म का अंधेरा, गुलामी का अंधेरा, नाइंसाफी का अंधेरा।
0: कुछ अपने गरेबान में भी झांक रही माँ, डकैती का धंधा करता है और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल

0: बोलता है।
1: ऐसा मत कहिए पीर बाबा, मैं डकैत नहीं हूँ, अदना सा खादिम हूँ आपका। अच्छे बुरे की पहचान आपसे सीखी है। इन काले दिल वाले गोरों ने जोर जुल्म से हमारे मुल्क की जो दौलत अपनी अय्याशी के लिए बटोरी है, उसे छीन कर अपने भाइयों में वापस तकसीम करने का फर्ज जान पर खेल कर भी अदा करता हूँ।
0: बेटे रही माँ, इस काम में खून खराबा भी तो होता है, नेक काम के लिए भला बंदूक क्यों?
1: मैं तो एक हक परस्त सिपाही का मेहनत कश बेटा था पीर बाबा, बंदूक उठाने पर मुझे गोरे अफसर ने मजबूर कर दिया।
0: क्यों भला?
1: बाबा, आपने ये सवाल करके मेरा जख्म कुरेद दिया। मेरे वालिद ने एक सिपाही की हैसियत से सारी उम्र इस नामुराद सरकार की खिदमत की, मगर जब वो बूढ़ा और बीमार होकर खटिया पर दम तोड़ रहा था, तब उसी के बड़े फिरंगी साहब ने दवा के लिए चंद पैसों की मदद मांगने पर उसे गोली से उड़ा दिया।
0: अल्लाह, ऐसी जलील हरकत, तूने जान नहीं ले ली उसकी?
1: होता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता पीर बाबा।
0: तो तू कहां था?
1: मैं वालिद की दवा के लिए एक साहूकार के पास बीवी के कड़े बेचने गया था। लौटा तब तक सब कुछ खत्म हो गया था, वालिद का कत्ल हो गया था और मेरी बीवी ने खुदकशी कर ली थी।
0: या मेरे खुदा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
1: उसी दिन मैंने वालिद की बंदूक उठाकर कसम खाई कि इन फिरंगी लुटेरों को अपने जीते जी चैन से नहीं बैठने दूंगा। बंदूक का पहला घोड़ा मैंने जलील अफसर के सीने पर दबाया और ये रास्ता पकड़ लिया।
0: मगर इस रास्ते में चैन कहाँ है बेटे? ये रास्ता तो जेल और फांसी के अलावा और कहीं नहीं ले जाता।
1: जेल से तो निकल ही आया हूँ और अब तय कर लिया है कि जीते जी दुश्मन के हाथ नहीं आना है, चाहे वो मेरे सर पर कितने ही इनामों का ऐलान कर दे।
0: तो फिर अब करेगा क्या? हुकूमत के हाथ बड़े लंबे होते हैं बेटे, तू छुपेगा कहाँ?
1: अभी तो आपकी पनाह में हूँ, जहाँ का हुक्म आप देंगे वहीं चला जाऊंगा।
0: और तेरे साथी?
1: वो भी मेरे साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे।
0: देख रही माँ, यहाँ इस ठिकाने पर तो हर किस्म का आदमी आता है।
1: हाँ बाबा।
0: तेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुम लोग मांगणियारों का भेष बनाओ और मेरा पैगाम लेकर जैसलमेर महारावल के पास चले जाओ, उनकी पनाह पुख्ता होगी और तुम वहां एकदम महफूज रहोगे।
1: जो हुकुम पीर बाबा।
0: अल्लाह।
1: बाबा
0: बोल बेटे।
1: इतना कर्म किया है तो चलते चलते एक और कर्म का वादा दे दो।
0: हाँ हाँ बोल।
1: इस फकीर बंदे का जब भी दम टूटे, आपके कदमों में टूटे, बस यही मेरा अरमान है।
0: जिंदगी और मौत तो परवरदिगार के हाथ है रहीमां, जो उसे मंजूर होगा वही होगा। जा अब आराम कर, कल सुबह कूच कर लेना आगे।
1: अच्छा बाबा। खुदा हाफिज बाबा।
0: अल्लाह हाफिज।

0: घने कमानदाता,
1: रियासत के क्या समाचार है दीवान जी?
0: सब अमन चैन है हुजूर, बस एक मामला आपकी सेवा में दरपेश करने की इजाजत चाहता हूँ।
1: पेश करो।
0: कल रात अमर सागर के रस्ते में 5 अनजान लोग बांगड़ियारों के भेष में पड़ाव डालकर गा बजा रहे थे।
1: कोई चोर डाकू तो नहीं है? कौन है उनका मुखिया?
0: वो अपना नाम रहीमा बताता है अंदाता, पीर पगारों की चिट्ठी लेकर आया है।

0: और हुजूर के चरणों में हाजिर होकर कोई पैगाम देना चाहता है।
1: कहाँ है वो लोग?
0: पुलिस की हिरासत में अंदाता।
1: और वो चिट्ठी?
0: ये है वो चिट्ठी अंदाता।
2: महारावल जैसलमेर, आप पर अल्लाह ताला की नजर करम हो, पीर पगारों की दुआ कबूल फरमाएं। बाज़ाब्ता अर्ज की जाती है कि चिट्ठी लाने वाला शख्स हमारा वफादार खादिम है, इस नेक बंदे को अपनी पनाह में लेने का करम फरमाएं। ये आपकी जी जान से खिदमत करेगा, बाकी पैगाम इसके मुंह से रूबरू सुनकर खातिरी कर लें। बकलम पीर पगारो।
1: रहीमा को बाइज्जत बादल विलास में हमारे रूबरू पेश किया जाए।
0: जो हुक्म अंदाता।
3: महारावल का इकबाल बुलंद हो, नाचीज की जोहार कबूल फरमाए अंदाता।
1: आओ रहीमा, पीर पगारों की चिट्ठी हमें मिल गई है।
3: हुजूर की मेहरबानी है।
1: दीवान जी को सवाल पूछेंगे तुमसे, ठीक से जवाब देना।
3: जो हुक्म अंदाता।
4: हमारे पास जो खबरें हैं उनके मुताबिक अमरकोट का बाशिंदा रहीम खां एक खतरनाक डकैत है जो ब्रिटिश हुकूमत के खजाने लूटता फिरता है।
3: खबर सही है।
4: वो रहीम खां कंपनी राज का एक सजा याफ्ता मुजरिम और फरार कैदी है।
3: एकदम सच है।
4: अंग्रेज सरकार ने उसके सिर के लिए 1,00,000 रुपए के इनाम की डोंडी पिटवा रखी है।
3: आप बजा फरमाते।
4: क्या तुम वही रहीम खां हो?
3: खुदा झूठ न बुलवाए, ये खादिम वही रहीमा है।
1: इतने गुनाहों का बोझ लेकर हमारी रियासत में किस लिए आए हो?
3: महारावल की छत्र छाया में पनाह लेने अंदाता।
1: हमारा काम क्या अब डकैत और मुजरिमों को शरण देने का रह गया?
3: गुस्ताखी माफ हो अंदाता, रहीमा इंसानियत की वतन परस्ती की राह पर चलने वाला एक नाचीज बंदा है। डकैत और मुजरिम का नाम तो उसे फिरंगियों ने दिया है, जो 7 समंदर पार से यहाँ आकर हमारे मुल्क की दौलत और इज्जत पर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। रहीमा तो सिर्फ उनसे अपने मुल्क की दौलत वापस छीन लाने का काम अंजाम देता है।
1: तुम्हारी जबान से बगावत की बू आती
3: है। वतन परस्ती अगर बगावत है अंदाता, तो मैं फख्र के साथ अपना बागी होना कबूल करता हूँ।
4: किसी रजवाड़े में एक बागी को शरण देने का मतलब है ब्रिटिश राज से सीधी टक्कर लेना।
3: दीवान जी, मैं अनपढ़ आदमी हूं, सियासत नहीं समझता, मुल्क की खिदमत करना चाहता हूं और इन गोरों को यहां से बाहर खदेड़ने वाली हर जंग में हिस्सा लेना चाहता हूं। इसलिए अपने पीर बाबा के हुक्म से और महारावल की अजमत के एतबार से यहां आया हूं।
4: पूरी रियासत इस वक्त जबरदस्त अकाल की चपेट में है, खजाना तंग है, इसलिए फिलहाल हम तुम्हें महावार।
3: हमें कुछ नहीं चाहिए अंदाता, आपने जो भरोसा रखकर हमें पनाह दी है उसके बदले में मेरी खाल की जूती भी बनाकर आपको पहना सकूं तो कम है। और दीवान जी, रहीमा के जिंदा रहते अगर रियासत का खजाना तंग रह गया तो फिर रहीमा के वजूद का कोई मतलब नहीं।
1: क्या फिर कोई टाका डालोगे?
3: आप फिक्र न करें अंदाता, रियासत के खजाने को मालामाल कर देना मेरा पहला फर्ज होगा। डाका सिर्फ फिरंगी तिजोरियों पर पड़ेगा, वो भी सरहद के पार, ये मेरा अहद है।
1: तो फिर ठीक है दीवान जी।
0: हुकुम।
1: रहीम खां को अपनी टोली के साथ खुफिया महकमे में खास औहदों पर लगा दो।
0: जो हुकुम अंदाता।
1: आज इसका खुफिया नाम होगा राम सिंह।
3: घनी घनी खम्मा अंदाता, इस मेहरबानी के बदले ये रहीमा आखिरी सांस तक आपकी खिदमत करेगा और वतन की मिट्टी पर अपने खून की आखिरी बूंद तक कुर्बान कर देगा।

0: आज की ताजा खबर, कराची एक्सप्रेस पे भारी डकैती, ब्रिटिश बैंक की तिजोरी लूटी, ट्रेन का 50 लाख की रकम लूट कर फरार, हर जगह कड़ी नाकाबंदी। पढ़िए आज की ताजा खबर, कराची एक्सप्रेस पे भारी डकैती।
1: साथियों, खुदा के फजल और आप लोगों की बहादुरी से हमें फिर एक बड़ी कामयाबी मिली। आज बड़े दिनों बाद अमल में स्वाद आएगा, क्यों करीमा?
2: रहीमा, ये वक्त राग रंग का नहीं है। छापा मार को वारदात के बाद वापस अपने गुप्त ठिकाने और गुप्त भैंस में लौट जाना चाहिए।
1: तो फिर बोलो, ब्रिटिश राज
3: मुर्दाबाद,
1: वतन के दुश्मन
3: मुर्दाबाद,
1: इनकलाब।

0: ये ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध प्रांत से समाचार मिला है कि अमरकोट का खतरनाक डकैत और फरार कैदी रहीम खां चलती ट्रेन में 50 लाख रुपयों की डकैती के बाद रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। सरकार को संदेह है कि वो सिंध की सरहद को पार करके जैसलमेर के रेगिस्तान की तरफ भागा है। उसकी तलाश और गिरफ्तारी के लिए सरकार ने सिंध प्रांत के आईजी पुलिस मिस्टर हटसन की अगुवाई में ऑपरेशन सर्च का ऐलान किया है।
1: Good afternoon, Your Majesty, His Highness of Jaisalmer.
2: आइए आइए, welcome, Mr. Harrison. फरमाइए क्या खिदमत की जाए?
1: As you know, Your Highness, हम इधर on duty आया। हमारा मिशन है Operation Search. इस ऑपरेशन में हम आपका मदद मांगता।
2: बड़े शौक से Mr. Harrison, आपकी मदद करके हमको खुशी होगी। आप इस ऑपरेशन की डिटेल्स बताएं तो बेहतर हो।
1: Oh yes, Your Highness. सिंध सूबे का रहीम खान एक ट्रेन रॉबरी के बाद फरार हो गया है। गवर्नमेंट को डाउट ही नहीं, पूरा यकीन है कि द ब्लडी एब्सकाउंडर वो भगोरा आपकी रियासत में कहीं छुपा है। इसलिए ये ऑपरेशन सर्च हम इधर से स्टार्ट करना मानता।
2: जरूर मिस्टर हरसन, इस ऑपरेशन में हम आपकी पूरी मदद करेंगे।
3: राम सिंह
4: हुकुम अंदाता।
2: हरसन साहब, ये राम सिंह हमारे खुफिया महकमे का बहुत काबिल अफसर है। रियासत की चप्पे चप्पे की बहुत अच्छी जानकारी है इसे। इसे अपने स्टाफ के साथ हम आपकी मदद के लिए बाकायदा तैनात करते हैं।
1: That's very good. Thank you, Your Highness.
4: रहीम खां का सलाम दीवान जी।
5: आओ रहीमा, कैसा रहा ऑपरेशन?
4: ऑपरेशन तो गोरी सरकार का था दीवान जी, पूरा करवा दिया। सच कहता हूँ दीवान जी, अंधाता का भी जवाब नहीं है। क्या मीठी और पोख्ता चाल खेली है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बस अब एक वारदात सक्कर सिंध में और करना चाहता हूँ दीवान जी।
5: कैसी वारदात?
4: वहाँ अंग्रेजों का एक पिट्ठू है, सोने चांदी में हीरे जवाहरात में लूटता है। गरीबों से लूट लूट कर अरबों की पूंजी कमाई है उसने। बस एक झपट्टा उस पर जरूर मारना है।
5: अब थोड़े दिन आराम ही कर ले रहीमा।
4: जब तक ये गोरे लुटेरे यहाँ हुकूमत कर रहे हैं तब तक हमारे लिए आराम हराम है।
5: सिंध में चौकसी बहुत कड़ी हो गई होगी, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डालता है?
4: यहां मौत का डर किसको है? जोखिम से खेलना ही तो अपना शौक रहा है दीवान जी। आज रात हमारी टोली निकल जाएगी, आप तो परसों तक लूट का माल जाब्ते में दाखिल खजाना करने की तैयारी रखवाना।
5: जैसी तेरी मर्जी रहीमा।
4: अच्छा, अलविदा।
5: अलविदा, ईश्वर तुझे सफलता दे।
0: ये ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध सूबे से एक भारी डकैती के समाचार मिले हैं। रहीम खान ने कल रात सखर के एक नामी सेठ की कोठी पर संगीन डाका डाला। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस ने कोठी को घेर लिया और गोलीबारी की, जिसमें कई सिपाही मारे गए। रहीम खान को भी गोलियां लगी, लेकिन वो घायल हालत में भी अपने साथियों की मदद से पुलिस को चकमा दे गया। लूट का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और पूरे सिंध में रेड अलर्ट कर दिया गया है।

0: রে ভাই, পানি কেসি হ্যায় তবিয়ত?
1: মা ঠিক হুঁ করিমা, মাল কাহাঁ?
0: ও ঠিক ঠিকানে পৌঁছ চুকা হোগা। अब्दुल जुम्मन और पंडित अलग अलग रास्तों से माल लेकर जैसलमेर गए हैं।
1: अब कोई फिक्र नहीं, जरा ये पट्टा खोल दे।
0: तुम्हारी हालत ठीक नहीं है रही भाई, सारे कपड़े खून में तर है।
1: जिस मिट्टी से ये जिस्म बना है, ये खून उसी की अमानत है। बहने दे इसे।
0: जिद मत करो रहे भाई, तुम्हें अभी बहुत जीना है। वतन की खातिर, हमारी खातिर तुम्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है।
1: कौन सा अस्पताल?
0: जैसलमेर लिए चलता हूँ।
1: अरे पगले, जिसने मुझे जीते जी पनाह दी, उदा दिया, उस अंधाधा को मरने के बाद मुसीबत में डाल दूं? नहीं, जो अब तक राज रहा है उसे राज ही रहने दे करीमा।
0: मेरी बात मानो रही भाई, चलो मेरे साथ।
1: नहीं, अब ये ढाणी छोड़कर कहीं नहीं जाना। मेरा जिस्म रेगिस्तान की इस मिट्टी में मिल जाने दे करीमा।
0: ऐसा मत बोलो रही भाई, ऐसा मत बोलो।
1: रो मत करीमा, इधर देख पगले, मैं कितना खुश हूं। जैसी बन सकी वतन की खिदमत की, ना कि ऐश के लिए नहीं, फर्ज के लिए डाले। जिसने पनाह दी उसका कुछ कर्ज उतारा, आगे ये काम तुम लोग करना। फिरंगी रात से टक्कर लेते रहना। पानी

0: तमन्ना दिल में रह जाएगी।
1: कौन सी तमन्ना रही भाई, बोलो बोलो तो।
0: पीर बाबा का दीदार, उनकी कदम बोसी।
1: चलो रही भाई, मैं ले चलता हूँ वहाँ।
2: अल्लाह अल्लाह,
1: या खुदा, तेरी खुदाई, पीर बाबा आप यहाँ?
0: पीर बाबा, आपने जहमत उठाई, या मेरे मौला, इस गुनहगार पर इतना करम।
2: गुनहगार नहीं है सही माँ, तूने वतन परस्ती के हक में एक वफादार सिपाही की तरह अपना खून बहाया है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क से ये फिरंगी राज खत्म होगा, आजादी का नया सूरज उगेगा।
0: आमीन। अलविदा बाबा।
2: अल्लाह।

0: नहीं करीमा रही मरा नहीं, ये उसकी कुर्बानी है, शहादत है उसकी। शहीद को आंसुओं से विदा नहीं करते बेटे, जिस सरजमीन पर उसका खून गिरा है उसे वही बाइज्जत दफन करो। उसका मजार उसकी वतन परस्ती की याद दिलाएगा। आज से ये ढाणी रहीम की ढाणी कहलाएगी। ये रेत के टीले उसकी कुर्बानी के सबूत बनेंगे और ये हवाएं उसकी शोहरत के नगमे दोहराएगी।
1: ये है जैसलमेर के इतिहास का वो गुमनाम पन्ना मिस मित्रा, रहीम की ढाणी, रहीम खां का ये मजार।
2: बड़ा पवित्र है ये स्मारक मिस्टर ओझा, श्रद्धा के भाव से हम इसको नमन करता है। इसका दर्शन कराने के लिए आपको धन्यवाद कैसे दिए जाए समझ में नहीं आता। आई रियली थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
1: बस बस मिस मित्रा, एक गाइड के नाते ये मेरा फर्ज था। आइए चलें।

0: अभी आप सुन रहे थे हरिराम आचार्य का लिखा।
1: मीडियम में 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही आप हमारा कार्यक्रम सुन पा रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर भी। इस वक्त शाम के 4 बजने को हैं और आप सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 के तहत 14 जुलाई को बीएलओ, बीएलओ 2 और चुनाव पाठशाला की दूसरी बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार इस बैठक का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और त्रुटिहीन बनाना है। रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में आज शहर के विकास, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में हर वार्ड में डिजिटल प्रशिक्षण स्टेशन और एयरपोर्ट रोड के सौंदर्यीकरण, जल जमाव के स्थायी समाधान, पार्कों के विकास और नागरिक सुरक्षा समितियों के गठन पर विचार किया गया। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और पुराने चरणों के दूसरे प्रयास की बोलियां खोल दी हैं। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए कुल 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। इस प्रक्रिया में उद्योग जगत की मजबूत भागीदारी दर्शाते हुए 16 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया है। आज पूरे विश्व में जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बढ़ती आबादी की चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। गुमला में मिशन परिवार विकास अभियान 2026 के तहत परिवार नियोजन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने आज जागरूकता रथ और रैली निकाली। सिविल सर्जन डॉ. शंभुनाथ चौधरी ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दुमका का विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव 28 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसकी सुरक्षा के लिए 600 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मंदिर परिसर, गर्भगृह, कांवरिया कतार और शिव गंगा जैसे प्रमुख स्थानों पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए जाएंगे। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
1: आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार।
3: साहब का था, पृथ्वीराज जी का था और बाबूजी का, मेरे पिताजी का, तो उन्होंने वो रंगमंच ज्वाइन किया और उन्होंने एक नाटक कंपनी बनाई।

0: जिसमें 300 के करीब लोग थे और प्रोपराइटर मालिक बाबूजी थे मेरे पिताजी। वो कंपनी चलाना अपने आप में एक रंगमंच की सेवा जो है, लेकिन उस समय क्या था कि समाज में खासतौर से नॉर्थ इंडिया में नाटक को अच्छा नहीं समझा जाता था, नाचना गाना
1: जी।
0: तो मेरा जो ननिहाल था वो चूंकि बंगाली परिवार था, मेरे नाना नानी बंगाली थे, संगीत उन लोगों का तो रचा बसा है और उनका तो गाना सीखना बहुत जरूरी है। तो माँ मेरी क्लासिकल किराना घराने से उन्होंने गाना सीखा था और किसी तरह संयोग से बाबूजी और माताजी की शादी हो गई। माँ मेरी बहुत छोटी थी जब शादी, उस जमाने में 13-14 साल की उम्र में हो जाया करती थी। तो इस तरह से बाबूजी को उनके परिवार ने डिसोन कर दिया, निकाल दिया एक तरह से, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रोफेशन चुना था। और माँ ने लेकिन मेरे बाबूजी का साथ दिया। तो इस तरह से नाटक कंपनी में हमारी आंख खुली। और आप ये सोच लीजिए कि फिर वो हमारे रंगमंच जो है, नाटक कला हर विधा की, क्योंकि माताजी और पिताजी दोनों ही लिटरेचर पोएट्री इसमें दखल रखते थे। बाद में हमें मालूम पड़ा कि हमने बचपन में इंटरनेशनल साहित्य पढ़ा है, इंडियन साहित्य तो पढ़ा ही, भारतीय साहित्य तो सारा पढ़ा, चाहे वो शरद चंद हो, बंकिम चंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, प्रेमचंद हो, जितने भी है, रेणु हो, और हमने बाहर का भी जो साहित्य है, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की, ये सारी चीजें, बाबूजी अंग्रेजी वाले थे, मम्मी उर्दू और हिंदी वाली थी, तो हमें विरासत में ये कला और संगीत रंगमंच वो हमारे खून में है। और सच पूछे तो अगर हमें कहा जाए कि आप कुछ ये नहीं करना है, जो कला क्षेत्र से आप हट जाए, तो शायद हम लोग भूखे मर जाए, हमें कुछ नहीं आता
1: और। जी जी जी, उसी में रचे बसे हैं और उसी में पूरा जीवन हमने लगाया है
0: जी।
1: तो सीमा जी, हम आपसे और भी बात करेंगे आपकी जिंदगी के पहलुओं पर। कोई गीत आपकी पसंद का पहले सुन ले।
0: जी बिल्कुल, संगीत तो आप जानती हैं हमारे रक्त में मिला हुआ है। फिल्म है आरती
1: जी,
0: रोशन साहब का म्यूजिक है और उसमें गाना था आपने याद दिलाया तो मुझे
1: याद आया। क्या बात है, क्या बात है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये
0: जी।

0: सीमा जी, निर्देशक और नाटककार रंजीत कपूर की बात अगर हम करें, अनु कपूर साहब की बात करें और निखिल कपूर की आप बहन हैं और जाने माने अभिनेता ओमपुरी साहब से आपने विवाह किया, इन सब चीजों को, इन सब बातों को आप कैसे देखती हैं?
1: छोटा सा प्रश्न आपने पूछा है लेकिन वो पूरा जीवन उसमें समेटा हुआ है मेरा। मेरे भाई जो है तीनों अपनी अपनी विधा में लेकिन कला क्षेत्र में ही है। सबसे छोटा जो ब्रदर है वो बहुत अच्छा शायर है, उसने कई फिल्मों में गाने लिखे हैं। मेरी हर सीरियल का टाइटल सॉन्ग वो ही लिखता है और हर सीरियल और फिल्म का टाइटल वो ही रखता है। और अनु भाई एक्टर हैं, आप ये जानते ही हैं। रंजीत भाई जो हैं वो निर्देशक हैं, राइटर हैं। तो सब अपनी अपनी जगह बादशाह हैं अपने अपने फील्ड में
0: जी।
1: और जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं तो आप एनरिच होते चले जाते हैं। अच्छा, हम बहन भाइयों का करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू हुआ, ऐसा नहीं था कि कोई आगे है कोई पीछे है, ऐसे सब साथ ही चल रहे थे, साथ ही संघर्ष कर रहे थे और अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि कोई भी क्षेत्र किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन उसके बावजूद कला से जुड़ा हुआ है
0: जी जी।
1: तो इसलिए हम लोग अपने अपने रास्तों पे, जो कंटकीर्ण रास्ते थे उन पे चलते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे।
0: तो कभी भाई बहनों में कोई कंपटीशन रहता होगा?
1: कंपटीशन शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, एक अंग्रेजी में शब्द है जिसे हिंदी में प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। ईर्ष्या के बिना आप एनवी करते हैं, आप किसी से ये कहते हैं कि आपको इतना ज्यादा क्यों आता है, है ना, मन में ये सवाल होता है। और मुझे हमेशा मेरे जो जितने भी मैं अपने दुश्मन मानती हूँ ना वो बहुत ऊंचे, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी में दुश्मन भी बनाओ तो बहुत बड़ा बनाओ वरना आपको उसके बराबर होना पड़ता है। तो मेरा कंपटीशन हमेशा दुनिया के महान डायरेक्टर से है, दुनिया के महान राइटर से। कंपटीशन से मतलब प्रेरणा
0: जी जी।
1: आपको वहां जाना है, इतनी ऊंचाई पे जाना है। तो भाइयों से भी वही रहा है कि इनको इतना ज्यादा आ रहा है मुझे क्यों नहीं, तो उसके बाद ना आपको एक फोर्स मिलती है कि आप और ज्यादा पढ़ें।
0: बिल्कुल, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन
1: जी,
0: हमेशा
1: जी,
0: जी। तो ओमपुरी साहब भी आपकी जिंदगी में आए, आपने उनसे विवाह किया, किन शब्दों में आप अपनी बात रखना चाहेंगी?
1: देखिए 11 साल हमारा अफेयर चला और तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी और तब पुरी साहब स्ट्रगल कर रहे थे। और उसके बाद जब 11 साल के बाद हमने डिसाइड किया शादी करना, तब उनको थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ था। तो शादी हुई। पुरी साहब एक ऐसे कलाकार हैं जो अगर मैं अपने लोगों की तारीफ अपने मुंह से करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दुनिया के इन्हें गिने जो कलाकार होते हैं मैं पुरी साहब को उनमें रखती हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा उनसे प्रेम है, मेरी शादी हुई थी या जो भी, लेकिन ना बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मैं देखती हूँ, क्योंकि देखिए जिस कलाकार की नकल की जा सके वो स्टार हो सकता है, वो कलाकार नहीं हो सकता
0: जी।
1: पुरी साहब की आप डायलॉग डिलीवरी की, उनके आप किसी भी चीज की नकल नहीं कर सकते, है ना। तो वो हर कैरेक्टर में ढल जाते थे और मैंने उनका एक जो बहुत ही सशक्त पक्ष देखा है वो ये देखा है कि एक छोटा सा मैं एक सीरियल बना रही थी तो उन्होंने कहा अरे ये रोल मैं करता हूँ, खुद कह के। मैंने कहा पुरी साहब आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, इतने महान मतलब नाम है आपका इंटरनेशनल लेवल पे, ये आप क्यों? नहीं नहीं सीमा छुट्टी है मैं करूंगा, मैं वो बैठ नहीं

0: सकते थे।
1: हाँ।
0: उनकी प्रॉब्लम थी कि उनको काम
1: फ्री नहीं बैठ।
0: हाँ, फ्री नहीं बैठ। तो मैं ऐसे काम करते हुए गई तो वो बैठे हुए नोट्स बना रहे थे। मैंने कहा क्या, कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन से? बोले नहीं तुम्हारा वो करना। मैंने कहा इतनी छोटी सी सीरियल का एक छोटे से उसमें भी आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप देखिए डेडिकेशन काम के प्रति के इतना आपने जिंदगी हो गई है, आपके 40 साल हो गए हैं काम को करते हुए, जिसमें आपने इंटरनेशनल अवार्ड ले लिए हैं, नेशनल अवार्ड ले लिए हैं, इसके बावजूद छोटा सा काम है लेकिन उसके नोट्स बना रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं और उस पर आप डिस्कस कर रहे हैं कि सीमा मैं ऐसे करूं, मैं ये पहन लूं या वो कर लूं, इसको इस कैरेक्टर को ऐसे बना लूं, तो आपको ये सीखने को मिलता है। जैसे लता जी वगैरह को भी मैंने देखा है कि कोई भी काम जब वो करते हैं तो वो अपने आप को तिफले मकतब समझते हैं कि मैं अभी पहली क्लास में हूं, और यही उनके जो विनम्रता है उनको महान बनाती है, और वही पूरी साहब में था
1: जी।

0: ओमपुरी साहब के अभिनय के बारे में तो हम आपसे क्या कहें, मतलब उनकी आवाज, उनकी अभिनय प्रतिभा, उनका चेहरा हर बात पर मतलब संवाद बोलता था, उनका चेहरा, उनकी आंखें, जो उनके जज्बात, फीलिंग्स, वो पर्दे पर साकार हो जाती थी। आपको उनकी कौन सी फिल्में पसंद थी?
1: मुझे परफॉर्मेंस वाइज तो देखिए वो सब में बहुत न्याय करते थे अपने किरदार के साथ, लेकिन एक सौभाग्य मैं कहूंगी कि हरियाणा फिल्म फेस्टिवल था, यमुनानगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार थी, रंजीत भाई की फिल्म चिंटू जी थी और पुरी साहब की फिल्मों का सिंहावलोकन था रिट्रोस्पेक्ट।

0: पर्सपेक्टिव था, तो उसमें हम तीनों ही वहां थे। तो मैं पुरी साहब की एक फिल्म मैंने नहीं देखी थी, तो मैंने कहा कि चलिए मैं देखूंगी आज आपकी ये फिल्म। बाकी फिल्में देखी थी, वो थी माय सन द फैनेटिक, अंग्रेजी फिल्म थी। तो मैं जब वो फिल्म देखी, यकीन मानिए मैं एक तो जारो कतार रो रही थी, और मैंने ना जैसे ही फिल्म खत्म हुई है ना, मैंने उनके पैर छू लिए। मैंने कहा क्या, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पुरी साहब हैं। मैं वो किरदार को देख रही थी, मतलब मैं आपको शायद शब्दों में ना समझा पाऊं कि वो परफॉर्मेंस जो थी ना उनकी, वो दुनिया से बाहर की परफॉर्मेंस थी।
1: जी, जी, जी।
0: तो वो फिल्म मेरे लिए सबसे उनकी महत्वपूर्ण है।
1: इसके अलावा उनकी बहुत सारी फिल्में आपने देखी भी होंगी।
0: सारी फिल्में तकरीबन देखी हैं।
1: हाँ।
0: अब देखिए ना उनके फ्लेवर देखिए आप, एक तरफ अर्धसत्य करते हैं, आक्रोश करते हैं, गूंगे का रोल है, आंखों से बोलते हैं, है ना, और एक तरफ चाची 420 करते हैं, है ना, माला माल वीकली करते हैं, और सीरियसली आपको, सीरियस रह के आपको हंसाते हैं। उसमें कहीं बफूनरी की जरूरत ही नहीं है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियसली। तो उनका रेंज आप, क्योंकि देखिए रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है, तो वो कलाकार थे, मतलब अल्टीमेट कहूंगी इनको मैं,
1: और इंटरनेशनल
0: जी
1: लावल के कलाकार। उनकी मतलब कोई फिल्म ऐसी नहीं है जिस पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हम उनके अभिनय से प्रभावित नहीं हुए।
0: फिल्म कमजोर हो सकती है, फिल्म की स्क्रिप्ट कमजोर हो सकती है, फिल्म का डायरेक्शन कमजोर हो सकता है, लेकिन वो उनको जितना किरदार दिया गया वो कमजोर नहीं है।
1: बिल्कुल। आपको संगीत में भी बहुत रुचि रही है ना, और आपकी चूंकि माताजी स्वयं क्लासिकल सिंगर रही हैं, तो आपके खून में भी सिंगिंग रही होगी, तो किस रूप में आप देखती हैं संगीत को?
0: अगर आप इंडियन संगीत की बात करते हैं, भारतीय क्लासिकल संगीत की बात करते हैं और वेस्टर्न क्लासिकल की बात करते हैं, तो मुझे दो चीजें हैं। वेस्टर्न क्लासिकल जब मैं सुनती हूँ तो मुझे ह्यूमन इमोशंस दिखाई देते हैं, इंसान के जो जितने भाव हैं उसके जितने भी भावनाएं वो दिखाई देती हैं, और जब आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, आपको दिव्य रोशनी दिखाई देती है। तो दो चीजों का ये मेरे लिए दिव्यता जो है वो म्यूजिक है।
1: जी, जी।
0: मैंने भी सीखा है नसीर अहमद खान साहब से दिल्ली में, तो मैं सीखती थी, लेकिन जैसे बोल रही हूं ना कि म्यूजिक मेरे लिए डिवाइन है, दिव्य है, उसको मैं प्रोफेशन नहीं बना सकती, उससे कमाई नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अभिनय और म्यूजिक को कभी प्रोफेशन नहीं बनाया, वो मेरे लिए आत्मा की चीज है, उसको सुनती हूँ।
1: तो अगर हम आपसे कुछ गुनगुनाने को कहें तो आप कुछ पसंद करेंगी गुनगुनाना?
0: गुनगुनो ये तो आपने
1: क्योंकि यहाँ वो प्रोफेशन से नहीं जुड़ा है
0: एक लाइन गुनगुनाती हूँ
1: जी।
0: मेरी माता जी गाया करती थी ये गाना, बचपन में सुना था, लता जी का है।

0: वाह, बहुत सुंदर। तो सीमा जी, चूंकि आपके जीवन में रंगमंच और कला शुरू से थी, तो आपके जीवन में लेखन और थिएटर की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई और आपने लिखना कब शुरू किया?
1: मैं जब 15-16 साल की थी तो मैं छुप के कविताएं लिखती थी।
0: अच्छा, छुपकर क्यों?
1: छुपकर ये कि मुझे, देखिए ना, माँ इतनी बड़ी शायरा थी और वो मुशायरों में जाती थी। उन मुशायरों में साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी जैसे बड़े बड़े शायरों के बीच और माँ जिस तरह की शायरी करती थी, उनके आगे हम कुछ नहीं। और मैंने तो फ्री वर्स में अतुकांत लिखना शुरू किया था, तो इसलिए मुझे लगता था कि तो बड़ी बेकार सी चीजें हैं, लेकिन मन में उद्गार आते थे तो उसको कागज पे उतार लेती थी। तब से शुरू किया मैंने।
0: जी जी, तो सबसे पहले क्या लिखा, आपको याद है कि जब लेखन की शुरुआत हुई होगी?

0: सबसे पहला क्या लिखा गया होगा?
1: ऐसे एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती हूँ कि पहला कौन सी रचना थी, लेकिन वही 15-16 साल की उम्र में मैंने अपने माता पिता पे एक 4 लाइनें लिखी थी। तुम अपने आंचल पर एक घनेरी छांव काट दो, ताकि मई जून की तपती गर्मी में भूख और प्यास से बेहाल जब मैं उस छांव का आश्रय पा सकूं, तो मुझे लगे भूले भटके प्यासे राही का पड़ाव यहीं तक, बस यहीं तक।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा, आपकी पसंद का ये गीत सुन लिया जाए?
1: जी बिल्कुल।

0: 1988 से आपके टीवी धारावाहिक शुरू हुए और साथ ही आपने सरकारी मंत्रालयों के लिए भी डॉक्यूमेंट्रीज लिखी काफी, इन सभी पर थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं।
1: जी, कॉलेज से मैं निकलने के बाद पढ़ी रही थी, उन दिनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी। और कहते हैं ना, जहां जहां पड़े पग संतन के वहीं वहीं भंडा ढार। जैसे ही मैंने अलीगढ़ में एडमिशन लिया, उन दिनों राइट्स बहुत होने लगे, फसाद, तो हमें भागना पड़ता था वापस। तो वो 3 साल का 4 साल में हो गया बीए, तो उस बीच मुझे दिल्ली आना पड़ता था क्योंकि अलीगढ़ से दिल्ली पास था, तो मैं दिल्ली आ जाती थी। इसलिए मैंने 83 में सबसे पहले पपेट थिएटर ज्वाइन किया
0: जी
1: दिल्ली में
0: जी।
1: तो वो इंटरनेशनल लेवल का था, जो हमारे ट्रेडिशनल पपेट्स होते वैसा नहीं था, मॉडर्न पपेट्री हम करते थे और इंडिया को हमने कई कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया है। जो इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल्स होते थे उसमें मैं जाती थी, हमारे डायरेक्टर थे तब दादी पदम जी, तो उनके संरक्षण में, उनकी देखरेख में मैंने मॉडर्न और ट्रेडिशनल पपेट थिएटर किया। उसके बाद चूंकि पपेट थिएटर में आप फाइनेंशियली सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि जिंदा रहने के लिए आपको कमाना भी बहुत जरूरी है, तो फिर मैंने एक सीरियल डाली दूरदर्शन में, और उस समय एक ही चैनल हुआ करता था दूरदर्शन, और दूरदर्शन में वो सीरियल हो गई किले का रहस्य
0: जी।
1: और चूंकि नौसिखिया थे इस फील्ड में आता नहीं था ज्यादा, तो काफी पैसे का भी लॉस हुआ, सब हुआ, लेकिन ठोकर खा खा के सीख लिया, तब से ये यात्रा है शुरू। जब दूसरे प्राइवेट चैनल्स आ गए तो उनपे भी लिखना और डायरेक्शन कर ही रहे थे, प्रोडक्शन भी कर रहे थे, तो वो सिलसिला चलता रहा।
0: और सरकारी मंत्रालयों से जुड़ने के लिए फिर
1: जी कई मैंने बनाई है डॉक्यूमेंट्रीज, जैसे अभी आपसे जिक्र कर रही थी महानदी के किनारे, तो छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन है महानदी, नदी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो महानदी जब मैं बना रही थी तो अच्छा बजट था उसका, तब तक लता जी ने संन्यास ले लिया था
0: जी
1: गाने से
0: जी,
1: तो तब मुझे अवसर मिला कि मैं उन तक जा पाऊं। उससे पहले फिल्म नहीं बनाई थी मैंने कोई, तो मैं नहीं जा पाई थी, तो मैंने हृदयनाथ मंगेशकर जी, जो उनके छोटे भाई हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने संपर्क किया, और नीरज जी, गोपाल दास नीरज, उनसे गीत लिखवाया महानदी पे, और हृदयनाथ जी से मैंने कहा कि मुझे लता जी से गवाना है गाना, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि उन्होंने हाँ भी किया और मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्होंने गाए। तो डॉक्यूमेंट्रीज तो मैंने बहुत बनाई हैं, और एड
0: इन सब के लिए आपने बहुत ज्यादा काम किया है मुझे लगता है, जिस पर अगर हम चर्चा करने चले तो शायद हमें कई अंकों में ही कार्यक्रम समेटना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री आपकी नजर में कौन सी ऐसी बन पाई जिसे आप याद करती हैं?
1: महानदी।
0: महानदी,
1: क्योंकि आप एक नदी की कहानी कह रहे हैं, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, और महानदी के किनारे जितनी सिविलाइजेशन हुई, बुद्ध आए उस दौरान वहां पर, और भगवान श्री राम, श्रृंगी ऋषि, और ये सब चीजों पे करते हुए आप एक्चुअली उस दौर में पहुंच जाते हैं। शूट जब कर रहे होते कि आप जिस धरती पे खड़े हैं वहां पे ये महान आत्माएं आके और चली गई हैं, तो आप अपने आप को ना कण समझते हैं कि मिट्टी का कण भी ज्यादा बड़ा है आपसे, और आप भाग्यशाली समझते हैं।
0: बहुत सुंदर। तो चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं
1: जी। मेरी पसंद का गीत है।

0: शर्मा जी, जब आप ये लिखती हैं, जब कोई किरदार गढ़ती हैं, किसी विषय को उठाती हैं, लेखन करती हैं, तो आपकी कहानियों में आपकी किरदारों को लिखते समय पटकथा में किन बातों का आप ख्याल रखती हैं? जैसे अभी आपने महानदी का जिक्र किया, तो उस समय की पूरे इतिहास को समेटना कोई आसान काम नहीं होता है। किस तरह से पूरी चीजों को समेट कर इतने खूबसूरत तरीके से आप पेश करती हैं?
1: जी देखिए, क्या है, हर विषय का कालखंड और वो अलग होता है। तो ऐतिहासिक जो विषय होते, जैसे अभी अवंतिका बनाई, तो वो पूरा इतिहास को लेके बनाए। लेकिन वही जब आप फिल्म बना रहे होते मिस्टर कबाड़ी, तो वो आज की है। इसमें किरदारों को जो उठाने का आपने प्रश्न किया है, ये बहुत अच्छा और सार्थक प्रश्न है। हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि हम थिएटर कंपनियों में, छोटे छोटे गांवों में, हमारी थिएटर कंपनी दो दो मूविंग थिएटर कंपनी थी, दो दो महीने एक एक गांव में रहते थे। तो हम एक एक गांव में और शहरों में, कस्बों में हम लोग बहुत रहे हैं। अगर मैं आपको गिनाना चाहूं तो जितने साल मेरी उम्र है उसके कम से कम 5 गुना ज्यादा कस्बे हम लोगों ने बदले हैं।
0: क्या बात है।
1: तो जब हम अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों से लेके अपर क्लास के लोगों तक, कलाकार से लेके बिल्कुल मजदूर वर्ग के लोगों तक, जब आप उनसे बातचीत करते हैं, और अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं, अगर आप थोड़े से प्रज्ञावान हैं और आप चाहते हैं कि कुछ बनना है आपको, तो आप उन किरदारों को जिंदगी में आत्मसात करते हैं। फिर जब आप लिखने बैठते हैं तो पता नहीं कहां से कोई एक ठेले वाला है ना, कोई एक अचार बेचने वाला, कोई एक है ना, वो किरदार आते चले जाते हैं, वो जीवंत हो जाते हैं लिखने के जरिए और आपके सेलुलॉइड के जरिए।
0: तो आपकी रचनाओं में जो आपकी किरदार है वो बहुत जीवंत हैं। आप किसी भी सीरियल को उठाकर देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म को देख लीजिए, तो ये सब क्या आपके स्वयं के जीवन से जुड़े हुए कोई पहलू हैं? या जैसा कि अभी आपने कहा कि इतनी सारी जगह में रही हूं, आसपास की घटनाओं से, लोगों से प्रेरित ज्यादा रहे?
1: बहुत ज्यादा। आपके कलाकार जो भी पात्र हैं वो आपके आसपास ही होते हैं, उनको फिर आप एक कैरेक्टर दे देते हैं, उस कहानी में ढाल लेते हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, शोले फिल्म सबको समझ में आएगी कि शोले में आप जगदीप जी को देखते हैं कि वो टाल पे बैठे हैं। अब जब आप टाल पे बैठने वाले इंसान का कैरेक्टर आप गढ़ रहे हैं,

0: हैं तो आपको भाषा भी उसकी वैसे ही लेनी पड़ेगी, बिना कि वो जमींदार साहब की भाषा अलग होगी, उसकी भाषा अलग होगी, उसका नाम अलग होगा, है ना। गायत्री देवी आप नाम अगर है तो वो थोड़ी सी रॉयल फैमिली से ही होंगी
1: जी,
0: लाजवंती होंगी तो वो कुछ और होंगी, लीलाबाई होंगी तो वो, है ना। हाँ
1: बिल्कुल सही कहा। तो यानी कि हर किरदार को जब हम जीते हैं तो उसी के अनुरूप उसके बैकग्राउंड को भी महसूस करते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से है
0: जी।
1: आपके जीवन में कौन सा ऐसा किरदार है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया अब तक?
0: मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार एक प्रथा पे है, मध्य प्रदेश मालवा और राजस्थान में एक प्रथा है, अभी भी थोड़ा बहुत चलन है तो काफी कम हो गई है, कि पति अपनी पत्नी को बेच सकता है, नाता बैठना बोलते हैं। तो वो किरदार कैसे गढ़ा, जब मैं पुरी साहब से बिछड़ गई थी बीच में, तो मैं झालावाड़ गई, झालावाड़ राजस्थान में, जहाँ माताजी पढ़ाती थी, उर्दू टीचर थी, वहां पर कहीं और जब ठिकाना नहीं होता है ना भावनाओं का, तो माँ ही याद आती है। माँ की गोद ही ऐसी जगह है जहाँ आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप 9 महीने उसके पेट में रहे हैं, उसी से सांस ली है, उसी से खाया है, उसी से पिया है, तो आप निश्चिंत थे वो 9 महीने, आप तो निश्चिंत थे, न चिंता थी आपको सांस कैसे लूं और खाना कैसे खाऊं। तो उस समय जब मैं जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, भावनात्मक रूप से, सोशली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो मैं माँ के पास चली गई। जब मैं वहां गई तो हमारे यहाँ एक बाई काम करती थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, शारदा नाम मैंने रखा है उसका। तो शारदा एक दिन मुझसे बोली, वो 300 रुपया महीना उसकी उस समय तनख्वाह थी झाड़ू पोछे की, तो मुझसे बोली कि भाई साहब मुझे 5,000 रुपए उधार दे सकती हैं क्या? तो मैंने कहा तुम्हारी 300 रुपए तनख्वाह में तुम घर चलाती हो, दो और घर होंगे ज्यादा, 600-700 रुपए में घर चलाती थी वो, 5,000 रुपए पहली बात तो ऐसा क्या संकट आ गया, दूसरा कैसे चुकाओगी 5,000? उस समय ऐसे है कि कोई भाई मुझसे 5 लाख रुपए आज मांगे, तो कह लेंगे नहीं मुझे ना नाते की झगड़े की रकम भरनी है वरना मुझे बेच दिया जाएगा। तो मैं तो इस मामले में बिल्कुल ही वो थी, मैंने कहा बेच दिया जाएगा मतलब, मैं समझी नहीं। तो उसने मुझे बताया कि पंचायत से मेरे आदमी ने खा, पंचायत टाइप होती, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो बेच रहा है मुझे, दूसरे के नाते बिठा रहा है, तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तो मुझे 5,000 रुपए देने। मैंने वो तो 5,000 दे दिए, उसको तो भगवान ने बचाया, मैं तो एक बहाना थी,
1: माध्यम बनी।
0: लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज आई कि हम इतने सक्षम नहीं है कि हजारों लाखों शारदाओं को बचा सके, तो फिर वो कैरेक्टर मेरी स्क्रिप्ट बन गया
1: जी,
0: और इसलिए मैंने हार्ट फिल्म लिखी
1: जी। जी, एक ज्वलंत विषय है ये जिस पर आपने अपनी फिल्म में विषय उठाया, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: शंकर जयकिशन की फिल्म है प्रोफेसर, आवाज देकर
1: हमें तुम बुलाओ। क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये, आइए सुनते हैं इसकी
0: जी।

0: सीमा जी, बात चल रही है आपकी जिंदगी पर, आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर। हम आते हैं लेखन के साथ साथ आपके निर्देशन पर भी। लेखक जब लिखता है तो बहुत सारे किरदार उसके आसपास होते हैं। जब एक लेखक से आप निर्देशक की दुनिया में कदम रखते हैं तो फिर वो किरदार आपके सामने होते हैं जिन्हें आपको जीवंत करना होता है। तो निर्देशक बनने की जो यात्रा थी वो कैसे शुरू हुई और ये यात्रा कैसी रही?
1: देखिए, जब राइटर लिखता है तो उसकी लेखनी ना बहुत, जिससे बोलना चाहिए, हंसी में बता रही, छलांगे मारती है, ये भी लिख दो, वो भी लिख दो, ये लिख दे। लेकिन जैसे ही आप निर्देशन में लाते हैं उस स्क्रिप्ट को, तो आपकी लिमिटेशन हो जाती है। आपको किरदार सामने खड़े होते हैं, उनको कितनी दूरी पे जाना है, कैमरा कैसे करना है, वो सिमट जाता है ना। आपका जो कैनवास है वो सिमट के फिल्म का पर्दे जितना हो जाता है। राइटर का तो कैनवास आकाश है
0: जी।
1: लेकिन निर्देशन में एक चीज है कि सृजन का जो राइटर और निर्देशक का जो एक मजा है लिखने का और उसको बनाने का, क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अभी तो शब्द है कागज पे, अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं, निर्देशन में जाना चाहते हैं। और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह। तो ये यात्रा दुरू होती है, मुश्किल होती है, क्योंकि डायरेक्टर को बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। उसको म्यूजिक का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको कैमरे एंगल का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको लेंसेज का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको एक्टिंग का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस कैसे ले।
0: बिल्कुल,
1: तो मुश्किल काम होता है लेकिन मजा आता है।
0: जैसे आपने कहा कि उसे हर एंगल का ज्ञान होना चाहिए, इसके पीछे क्या पहले आपने कुछ कोर्स किए या आप किसी के अंडर में रही? इतना एक वाइड जैसे एंगल देखने के लिए क्या एक निर्देशक की तैयारी होती है?
1: देखिए, क्या हुआ कि पपेट थिएटर से निकलने के बाद सबसे बड़ा मसला था सर्वाइवल का, कि आप रोजी रोटी, दिल्ली में रहना है और मकान का किराया भी देना है, खाना भी खाना है, रहना भी है, और इतने सक्षम नहीं थे कि माता पिता भेज सकें, और आप 3 साल का, 4 साल का FTII में जाके कोर्स कर सकें। तो जो भी सीखा जिंदगी से सीखा, ना तो किसी के अंडर में मैं असिस्टेंट रही, ठोकरे खा खा के सीखा, लेकिन सीखा खुद से ही सीखा, और अभी भी सीख ही रहे हैं।
0: हर पलम सीखती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो जीवन के संघर्ष को कैसे देखती हैं आप?
1: बहुत संघर्ष रहा है। जीना जो है ना, वो अपने आप में ही एक संघर्ष है। तब से शुरू हो जाता है जब हम कंसीव होते हैं, जब हमारा है ना

0: तब से ही संघर्ष शुरू हो जाता है और उसके बाद जैसे दुनिया में आते हैं तो आपका संघर्ष है, रोटी कमाने का संघर्ष है, अपने आप को स्थापित करने का और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बिना समझौता किए आपने एक प्रिंसिपल बना रखे हैं, उनसे समझौता किए बिना आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा सा मुश्किल रास्ते हो जाते हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि उन रास्तों से होके हम गुजर गए। समय लगता है, थोड़ा लंबा होता है।
1: तो आप जिस दुनिया में हैं, चाहे थिएटर की दुनिया से वो शुरुआत हुई और ग्लैमर वर्ल्ड तक आप पहुंची, आज भी आप वहां स्टैब्लिश हैं, आप बराबर काम कर रही हैं, तो थिएटर की दुनिया से लेकर ग्लैमर की दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं या आप खुद एक महिला के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रही हैं, क्या संघर्ष होते हैं वहां महिला को अपने आप को स्थापित करने के और बने रहने के?
0: महिला होना ही अपने आप में एक संघर्ष है। हम बहुत सारी गुलामियों को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी गुलामियों। एक जमाने में, प्राचीन काल में, तो स्त्री बहुत स्वतंत्र थी
1: जी।
0: फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे ही आते गए ताताई आते गए तो स्त्रियों को सुरक्षा के लिए उसको पीछे कर दिया गया और वो फिर हमारी मानसिकता बन गई। आज भी मैं देखती हूँ मेरा जो संघर्ष रहा है वो शायद मैं बहुत फॉर्चुनेट सौभाग्यशाली रही हूं कि मुझे किसी ने उस तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की, या फिर मेरा प्रोफेशन ऐसा था जिसमें कोई चांस नहीं था कि एक्सप्लॉइट, या मेरा अपना व्यक्तित्व ऐसा रहा होगा कि थोड़ा डरते भी थे लोग क्योंकि मैं मुंह फट थी, थोड़ा सा इस मामले में बोल देती थी,
1: आउटस्पोकन
0: थी कि भाई ऐसा है कि अगर ऐसी बात है तो आप रखिए अपने पास, मुझे नहीं चाहिए काम। लेकिन और लोग इतनी सौभाग्यशाली नहीं होते हैं, मजबूर कर दिया जाता है उनको, या तो वो उस फील्ड को छोड़ देती हैं या फिर कहीं सरेंडर कर देती हैं। तो ये तो स्त्री के साथ चलता ही रहा है। और दूसरा एक और मानसिकता है समाज में कि अगर कोई स्त्री सक्सेसफुल हो गई है तो जरूर किसी ना किसी तरह के समझौते करके ही ऊपर आई है
1: जी।
0: ये एक अजीब सी मानसिकता है। उसमें मुझे एक सवाल हमेशा लोगों से ये खड़ा होता है कि भाई तुम सिर्फ समझौते देखते हो, चाहे लता जी हो, आशा जी हो, हेमा मालिनी हो, मतलब किसी मधुबाला हो, मीना कुमारी हो, या आप लेखिकाएं हो
1: जी,
0: उन सबके ऊपर ये लांछन लगते आए हैं, आप उनका टैलेंट नहीं देख रहे,
1: उनकी मेहनत
0: और उनकी प्रतिभा। आप कोई दूसरी लता मंगेशकर बता दीजिए ना, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज से हो सकता है क्या? नहीं। जब तक आपके अंदर प्रतिभा नहीं होगी, जब तक आपके अंदर एक डेडिकेशन नहीं होगा अपने प्रोफेशन को लेके, तब तक आप सक्सेसफुल हो नहीं सकते। वरना तो ऐरा गैरा नतु खैरा कोई भी बन जाएगा
1: जी,
0: स्टार
1: जी,
0: नहीं बनते ना
1: जी। तो कितनी महिलाएं हैं जो आज लेखिकाएं हैं या निर्देशिकाएं हैं या किसी भी प्रोफेशन में है, किसी भी कंपनी में है, किसी भी महकमे में वो काम कर रही है, वो अपनी मेहनत और मशक्कत के बाद जब किसी पद या प्रतिष्ठा पर पहुंचती हैं और उनको ये इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि भाई होगा कहीं कुछ न कुछ, वरना इतनी ऊंचाई पर पहुंचना एक महिला के लिए इतना आसान तो नहीं है, तो बड़ा दुख होता है। आज भी जब ये बातें कही जाती हैं तो
0: बहुत दुख होता है और दुख नहीं शर्म आती है उन लोगों की मानसिकता पे। और मुझे एक बात की और शर्मिंदगी है कि इसमें पुरुष तो है ही शामिल, स्त्रियां भी शामिल हैं ये लांछन लगाने में, तो वो बहुत गलत है। हमको हमारी मानसिकता, समाज की मानसिकता को बदलने की बहुत जरूरत है
1: जी। चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं
0: जी।

ये था सुप्रसिद्ध राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन।

0: कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला।

0: सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
1: और आ गया।
0: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: पुनम करकेट्टा। रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में आज शहर के विकास, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में हर वार्ड में डिजिटल प्रशिक्षण स्टेशन और एयरपोर्ट रोड के सौंदर्यीकरण, जल जमाव के स्थायी समाधान, पार्कों के विकास और नागरिक सुरक्षा समितियों के गठन पर विचार किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर रांची में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि एम्स और रिम्स 2 के निर्माण से चिकित्सकों की कमी दूर होगी। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र में आज एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। गंभीर रूप से घायल युवक का रिम्स के रांची में इलाज चल रहा है। गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने उर्वरक की कालाबाजारी रोकने और किसानों को निर्धारित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की। उन्होंने सभी उर्वरक विक्रेताओं को दुकानों पर निर्धारित मूल्य सूची, उर्वरक संबंधी सूचना चार्ट तथा वैध लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। और गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र के नीरज हाजरा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने एसडीपीओ खोरी महुआ अमरेंद्र कुमार से पूरे मामले पर जांच रिपोर्ट मांगी है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: FM 102.1 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोताओं, इस वक्त संध्या के 5:56 हुए हैं। लीजिए पेश है किसानों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के आपन ई कार्यक्रम में स्वागत है। और अलका बहिंदने से जोहार प्रणाम और साथ ही अति प्रशांत भाई, तो तोरा भी जोहार प्रणाम।
1: जोहार जोहार अलका बहिन और कार्यक्रम सुननार सब किसान भाई बहन के भी हमार देने से जोहार और सब गोटे के

0: कार्यक्रम में स्वागत हो किसान भाई बहन।
1: देखा आपने कार्यक्रम में हाजिर हो गए है प्रशांत भाई।
0: हाँ
1: अभी तो चले तो पूरा बारिश अच्छा खासा ठीक ठाक होवे थो।
0: हाँ देखा कि मौसम में तो बदलाव आये लो भाई। मौसम में बदलाव तो बहुत जरूरी है लो। कहे कि देखा कि हम इनके मौसम के आधारित खेती बाड़ी हो
1: एकदम।
0: अगर तोरा ऐसे अगर खरीफ में तोरा मौसम साथ ना दल को तो खरीफ के फसल है से हम इनके उतना बढ़िया से ना हो पारतो। ये खातिर हम इनके जरूरी है कि भाई मौसम भगवान तनी साथ दे, तनी बढ़िया से पानी गुंदी हुए ताकि हम इनके से धान धूरा पूरा लग जाए और खरीफ जितना लगवे के मक्का उरीद है से अरहर सब लगवे के जो समय है समय से उ लग जाए।
1: बिल्कुल। और एक चीज और भी हमने ध्यान करवाए कि जैसे बारिश के बहुत ज्यादा पानी हो है तो हमने के कुछ ध्यान रखना है भूजल के संचयन के बारे में, यानी जमीन के जल के कैसे हमने बारिश के जल के जमा करिए।
0: सबसे बड़ा चीज हो कि भाई भूजल जो है हम के संचयन का है जरूरी है। एक तो कहो कि देखा कि भूजल के संचयन अगर ना करवा तो देखा आए दिन ऐसे समस्या हो बरसात के समय में कि सड़क में ऐसे जब बारिश हो लगो है तो नाली और सड़क ऐसे पतेन लगे।
1: बिल्कुल।
0: कि एकदम समगम हो जाता तो पतेन चलते कि कोई नाली में गिरल हो कि कोई मोटरसाइकिल जीते थे नलिया में गिर गलो कि कोई आदमी ऐसे चलते चलते ठेस के गिर गलो गढ़ा में डूब गलो तो पते नहीं चलते।
1: बिल्कुल पते नहीं चलते कि रोड है कि नाली है।
0: हाँ लगता सोचे है कि एकदम बड़का ऐसे नदी नियर बहो लगा तो ऐसे बाढ़ के समस्या उत्पन्न हो जाए वहां पर ही। तो ई समस्या काहे उत्पन्न हुए कि तुम्हारा निकास सही से न मिल पाओ और सारा बोझ ऐसे हम इनके नाली पर आ जाए
1: रोड के नाली पे आई।
0: हाँ और जब नाली पर आ जाए तो हम इनके नाली दे देखा एक तरह से थोड़ा सा है कहीं कहीं साफ स्वच्छता के कारण भी ऐसे थोड़ा सा हम इनके लापरवाही से नाली गंदा रहो। दूसर में है कि उतना पानी ऐसे निकाले की क्षमता नाली में नहीं रहे तो वह नाली ऐसे बढ़ करके फिर रोड पर चला हुआ है रोड ऐसे फिर नाला बन जाए। तो ई खातिर हम इनके का करना हो कि भाई जो पानी हम जो बाहर बह रहा है ई पानी के हम इन भीतर कैसे करिए, यानी कि जमीन के भीतर ई पानी ले जेबे तो हम इनके जो पेयजल समस्या आवो गर्मी के दिन में वो पेयजल समस्या से हम इनके निजात मिल जाते
1: एकदम।
0: क्योंकि हम इनके भूमिगत जल स्तर बढ़तो तो ओकर बढ़ावे के बहुत छोटा छोटा उपाय है जो हर आदमी अपन घर में कर सको है।
1: बिल्कुल। अगर भूजल बढ़े तो देखो कि आजकल चापा कल अगर चलावे था बहुत बार चले हुआ गर्मी में तो पानी ही नहीं निकलतो।
0: हाँ।
1: और भूजल अगर बढ़े तो तोरा पानी के मतलब मिलना जल्दी हो जाए तो।
0: हाँ।
1: और एक भी एक हमारा कारण यही लगो हो प्रशांत भाई कि आजकल कोई भी घर बनावो थे ना तो चारों तरफ या तो माटी एकदम न छोड़े थी, टाइल्स हो गए लो पक्का हो गए लो ऐसा कर दे। गांव घर में तो आदमी कुछ कर भी ले थे लेकिन शहर में ज्यादातर ऐसा हो जाए
0: तो इसीलिए शहर के लिए है सो बनावल गए नियम कि हर घर में है से एक है से सोखता जरूरी है।
1: जरूरी पनसोखा एकदम।
0: हाँ एकदम पनसोखा जरूरी है कहे कि वह पानी है जो हम इनके वर्षा जल के है से संचयन करे के एक साधन बन।
1: बिल्कुल।
0: और वो पानी ऐसे अगर तोरा सोखता में गेलो तोरा भूजल के ऐसे समस्या जी आवो है हम इनके स्तर घटे की समस्या हुए चापा कल ठनठनाए लगो गर्मी के समय ते तो ऊ चीज वह ऐसे न हो तो दिनों दिन ऐसे हम इनके सावधानी से अगर भूजल के संचयन करिए तो वर्षा जल के संचयन करिए तो हम इनके ऐसे सावधानी से समझ लगे भूजल के स्तर ऐसे बढ़ जाते और हम इनके ऐसे आयो वाला समय में पानी के कोनो समस्या न उत्पन्न हो।
1: सबसे बड़ी बात यही है कि हमने के बाद आगे आवे वाला जो पीढ़ी है।
0: हाँ।
1: कैसे हमने पानी बचा के आगे आवे वाला पीढ़ी तक दी है।
0: हाँ बिल्कुल।
1: कहे कि हमने के पुराना पीढ़ी इतना दिन तक दे लेती है अब हमने के आगे करना है तो ये वर्षा के जल के हमने के बचाव करना चाहिए ओकरा जैसे तैसे बहे
0: नहीं देना
1: बर्बाद नहीं हुए देना चाहिए।
0: हाँ तो ओकर खातिर देखा कि सरकार तरह तरह के है से योजना पर आधारित है से काम करवा रहा है जैसे कि देखा कि सब जगह है से सोखता बनवा रहा है देखा कि ट्रेंच बनवा रहा है जहाँ पर खेत पोखरी बना रहा है डोभा बना रहा है ओकर बाद आहरा पोखर के सफाई करा रहा है तो ई सब जो है से रिचार्ज बोरवेल करा रहा है तो ई सब का है ई सब हम इनके जे भूजल जे स्तर है ओकरा बढ़ावे के बहुत तरह के उपाय करल जा रहा है, लेकिन हमरी नहर से एक बेबुद्धि वाला काम यही करो ये कि जैसे तू कहला कि घर दूरा तो बहुत एकदम चकाचक बना दिए टाइल्स मार्बल वाला, लेकिन सोखता के कहीं उपाय
1: नहीं
0: तो यही के कारण हो जाए कि शहर के आदमी सब ऐसे फिर नाला में चलो लगो थी है ने। अगर सोखता के अगर वो सब ऐसे निर्माण करे लगे घरे घरे तो एगो तो भूजल के समस्या समाप्त हो, तो दूसर में ऐसे नाला बन जाए बरसात के समय में, वो बरसात के समय में नाला बने

0: आदमी बचा सको है। और जब यह चीज है कि अगर पेड़ पौधा तू ना रोपा तो फिर तोरा मिट्टी के क्षरण के भी समस्या उत्पन्न हो जाओ, तो वहां पर भी ऐसे भूजल में देखा कि स्तर गिरे लगो है कि मिट्टी जब क्षरण हो रहा हो तो यानी कि पानी ऐसे बाढ़ में जा रहा हो, बेकारी में जा रहा हो। ई खातिर है कि हम इनके ऐसे पानी के ऐसे सुरक्षित जगह पर ले जाना हो, ताकि हम इनके वो पानी से, बरसात के पानी से कोई तरह की दिक्कत ना हो और वो पानी के हम इनके फायदा मिले।
1: बिल्कुल। और अगर हमने के का शुरुआत अपन घर से करिए, अपन
0: हाँ,
1: चंगा बुद्रो मतलब
0: समझा
1: स्कूल से
0: बुझा के करिए।
1: होवे
0: हाँ बिल्कुल,
1: या फिर ऑफिस में जो लोग काम करे थे वहां से, अगर यहाँ से भी शुरुआत हो जाए थे तो हमने के कहबा कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे और भी बेस हो तो वर्षा के जल
0: बिल्कुल
1: संचयन
0: बिल्कुल।
1: वास्ते।
0: हाँ तो ई खातिर किसान भाई बहन के जरूर कहबन के भाई कि जल संचयन करना बहुत जरूरी है। अबधर के समय में अबधर से ना चेत के रहते आदमी, तो आवे वाला समय में जनसंख्या ऐसे धीरे धीरे धीरे धीरे कम हुए के बजाय बढ़ते जेते, तो पानी की समस्या भी बढ़ते है।
1: मांग तो जरूर
0: हाँ,
1: बढ़ते
0: काहे
1: जाते
0: के देखा कि रोज दिना है से नावा नावा बिल्डिंग बन रहा है,
1: बहुत।
0: तो बिल्डिंग में बिना पानी के थोड़ी बनो है, उकर जितना भी मटेरियल है सब पानी से तैयार हो है।
1: और हर आदमी के सबसे पहला जरूरत पानी है,
0: हाँ
1: मतलब सांस लिए वास्ते ऑक्सीजन और पिए
0: हाँ
1: वास्ते
0: बिल्कुल
1: पानी,
0: बिल्कुल
1: मतलब
0: बिल्कुल,
1: पानी के
0: पानी
1: कोई विकल्प ना है।
0: न, पानी ही जीवन हो। अगर वो पानी ना रहो तो यहाँ पर जीवन के ऐसे सृजन नहीं हो
1: होता
0: सकल
1: है।
0: है। ये खातिर है कि हम इनके जे पानी है जो हम इनके जीवन है ओकरा बचाना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, कार्यक्रम में हम इन आगे भी बढ़ल रहे अलका बहिन, अब
1: जरूर।
0: धर ऐसे सुनो ये जरूरी संदेश।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: तो अभी हमने सुन लिए लोकगीत और एगो जरूरी संदेश।
1: हाँ।
0: और अभी के समय हो प्रशांत भाई खरीफ फसल लगावे के।
1: बिल्कुल।
0: और अभी जो बारिश के मौसम हो, खेती बाड़ी के मौसम हो, धान के मौसम हो, तो बहुत सादा बहुत मतलब हमने के ज्यादा ही काम रहो है खेती बाड़ी के काम में, गोरु डांगर के काम, मतलब काम बहुत अभी हमने के रहो है।
1: बिल्कुल, देखा कि हम इनके अगर जहाँ धान धुरा लगवे के खेत है, सबसे पहला होगा खेत की तैयारी करना बहुत जरूरी हो। बारिश हो गलो है तभी एकदम पूरा है से खेत के एकदम जोत कोड़ के बढ़िया से कर देती किसान भाई भी एकदम, और जो आर पगार है ओकरा बहुत अच्छा से एकदम सुलझा देती, सुलझा देती बढ़िया से, और जहाँ पर भूस मूसा सब जो आर पगार में छेद कर लेती ओकरा कम से मून देती, ताकि ऐसे पानी खेत के बाहर न जाए, ताकि वहाँ के जितना भी खाद डलाए या फिर ऐसे में सरगति जे रहे वो खेत के अंदर रहे और वो फसल के मिले,
0: मतलब मेड़बंदी है।
1: हाँ, मेड़बंदी बहुत जरूरी है और बहुत बढ़िया से ओकरे कहल जाए आर पगार सोझे आने को।
0: बिल्कुल, कि हमने के मतलब आरी ठीक कर लेना है।
1: हाँ।
0: और जल जमाव की एक चीज और भी देखना है, जल जमाव की भी व्यवस्था ज्यादा न हुए कि ज्यादा भर जाए फसल के खराबी हो।
1: हाँ, देखा सबसे बड़ा चीज हो कि हम इन्हें से देखा बरसात के जो सब्जी हम इनके झारखंड प्रदेश में हो है तो यह से बाहर उहर भी जाए सब्जी हम इनके, तो ई खतिल है कि यहाँ किसान जो पठारी क्षेत्र है तो किसान भाई भी इन्हें से यहाँ है से ज्यादा गढ़ा वाला खेत

0: है ज्यादा पठारी क्षेत्र में सीढ़ी नुमा टाइप के, तो ऐसा में ऐसा जल जमाव की समस्या थोड़ा कम हो है, लेकिन जो है से जो गहरा खेत है ओकर में तो तोरा एक नंबर खेत हो गलो, दो नंबर खेत हो गलो, उस समय धान रोपाई हो तो ओखिर में सब्जी लगे के कोई
1: समस्या
0: ना हो। लेकिन समस्या हो कि अगर किसान भाई बहन गहरा खेत में लगे थी अबधर के समय में तो उनका जल जमाव की समस्या झेल पड़ते। ई खातिर किसान भाई बहन से गुजारिश करबन की खेत में अपन ऐसे ऐसा खेत चुनती ताकि ऐसे वहाँ जल के ठहराव पानी के ठहराव ओकर में ना हुए, जमाव के समस्या ओकर में उत्पन्न ना हुए। हम इनके सबसे पहले ऐसे जब खरीफ फसल लगवाई खास करके सब्जी तो ओकर में ऐसे जल निकासी के जो है उपाय उचित कर देवे जाए ताकि ओकर में जल जमाव के समस्या ना हुए। अगर जल जमा हो गए पौध गलन के समस्या शुरू हो जितो पूरा उससे समझ ला के फसल के बढ़वार हो रुक जितो सब फसल बर्बाद हो जल में। तो ये खातिर है जल निकासी के हम इनके प्रबंधन बढ़िया से करना हो। दूसर में टाँग टुकड़ वाला जमीन जो है ओकर में ज्यादा ज्यादा सब्जी की खेती करना हो, खास करके बैंगन टमाटर ये सब जो है
1: वही टाँड पे ज्यादा बेस्ट
0: टाँड पर बहुत अच्छा रहतो। बैंगन तो पानी के तनी झेलियो ले, टमाटर बिल्कुल नहीं झेलते। ये खातिर है तो वो सब के मरचाय हो गलो, टमाटर हो गलो, खीरा हो गलो, करेला हो गलो, बैंगन हो गलो, कद्दू हो गलो, ये सब जे चीज भी लगाना हो तो टाँड वाला जमीन में ही अबधर के समय में लगाना उचित रहता।
1: बिल्कुल, और जो भी हमने लगाइए तो अपन क्षेत्र के अनुसार जो सही बीज है ओकरा लगाइए कि हमने के क्षेत्र या फिर कहला कि पानी खेत ओकर अनुसार लगाइए ताकि ओकर बढ़वार बेस रहो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो अब देखा कि कार्यक्रम में हम इन आगे बढ़े के लगे और जानकारी लेके आन लीजिए।
1: जानकारी है कि मौसमी सब्जी के खेती कैसे करल जेते, एक बुजुर्ग महिला किसान थी सावित्री देवी जे बतैथी हम इनके कि खेती कैसन करे थी और का का उल लगे ले थी,
0: तो सुनल जाए इनकर अनुभव।
1: जरूर,
2: नमस्कार किसान भाई बहन, समय समय पर हम आप सभी को ऐसे किसान भाई बहनों से मिलाते हैं जो बताते हैं अपने अनुभव और अपने कृषि कार्य को खेती के बारे में। तो आज इसी क्रम में हमारे साथ एक महिला बुजुर्ग किसान जुड़ी हुई हैं जो बताएंगी वो क्या क्या खेती में लगाई हुई हैं, कौन सा फसल लगाई है, किस तरीका से देखभाल कर रही है। तो जानते हैं सबसे पहले परिचय इनका, तो आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: तो अच्छा, तो बताओ कि तोर नाम का हो?
3: सावित्री देवी।
2: सावित्री देवी, कहाँ हो घर तो?
3: सरगावा।
2: अच्छा, तो सब्जी जे बहुत तरह के सब्जी लगेले हा, और काका लगेले हा अभी
3: अभी कद्दू लगल हो, खीरा लगल हो, ककड़ी लगल हो।
2: अच्छा, अभी कद्दू खीरा ककड़ी निकले लगल हो?
3: हाँ, भिंडी लगल हो, बैंगन हो, टमाटर हो, सब चीज निकल रहा हो।
2: अच्छा, तो ये सब सारा कब लगेली हला तू? कब लगेली हला?
3: माघ फागुन में।
2: माघ फागुन में लगेली हला से अभी हो गए थो?
3: हाँ।
2: तो तखनी तोरा कुछ देखभाल करे के जरूरत पड़ले है लो?
3: बहुत कुछ दवाई सब चीज।
2: अच्छा, तो जैसे सबसे पहले जमीनवा में तू जब लगावी है कोई फसल तो इधर में सबसे पहले तू का कर रहा?
3: पहले ओकरा जोत कोड़ के।
2: तो जोत कर जे करे हाँ, तो तू तो महिला किसान हाँ, बुजुर्ग भी है, तो तू अकेले करे है कि तोर परिवार वाले?
3: सब परिवार मिल के जोतना कोड़ना सबके चलना।
2: अच्छा।
3: सबके झोरा चिरना रोपना पानी पटाना
2: सब मिल के।
3: हाँ, सब मिल के चलना।
2: अच्छा, तो बहुत तरह के तू सब्जी लगेले है जैसे कहला बैंगन हो, भिंडी हो, कद्दू हो,
3: खीरा हो, परोर हो।
2: अच्छा, सब ना जमीन में लगेले होगा?
3: कम से कम 10 कट्ठा 15 कट्ठा में।
2: अच्छा, 10 कट्ठा 15 कट्ठा में लगेले होगा। अब सब फसल हो गए हो, सब सब्जी निकले लगल हो? अभी बाजार में बेचे था?
3: अभी बेचे थे, सस्ता मिको हो।
2: अभी सस्ता मिले थे ना, लेकिन जखनी समय रहे थे तो महंगा भी मिले थे? तो
3: महंगा भी हो
2: जाता। आज जैसे ओकर समय हो गलो कि खूब फसल हो गलो तब तो दाम कम हो गलो?
3: कम हो गलो। हाँ, दाम कम बहुत कम हो गलो।
2: हाँ, तो अभी जैसे अभी जब बाजार में निकले थे फसल तो ओकर में अभी तरह कुछ देखभाल की जरूरत पड़े थे करने?
3: बहुत कुछ।
2: अभी का करे पड़े थे?
3: अभी देखना हो, चोरना हो, सब धोना हो, मचना, सब बाजार फिर लगना हो।
2: अच्छा,
3: फिर बेचना हो।
2: तो बाजार वास्ते का का सब्जी निकाले निकले थो?
3: अभी भिंडी निकले थो, कद्दू निकले थो, झिंगी निकले थो, परोर निकले थो, बैंगन भी निकले थो।
2: अच्छा, ये सब निकले लगल?
3: हाँ, टमाटर भी निकले थो।
2: अच्छा, तो टमाटर के तो दाम ठीके मिले थे तो अभी?
3: हाँ, अभी सस्ता भी हो जाओ, कहियो महंगा हो जाओ, कहियो 50 हो जाओ, कहियो 30 हो जाओ, कहियो 40 हो जाओ।
2: अच्छा, ऐसे करके मिले थो ने? तो अभी जैसे फसल हो गए हो तब एक में कोई तरीके के डर हो बीमारी उमारी के?
3: बीमारी में दवा भी दी डालो पर।
2: अच्छा, तो जैसे अभी बाजार में निकले थे तो रोज रोज कुछ कुछ निकाले थे सब्जी, तो अभी तो वैसे कोई डर ना हो तो?
3: ना, अभी डर ना हो, अब तो फसल
2: अब तो आप खत्म कर
3: बोला हो।
2: अभी का लगेगा जैसे आपके फसल का लगेगा?
3: भिंडी लगतो, मकई लगतो, बादाम लगतो, टमाटर।

0: अलग तो खीरा अलग तो सब्जी फसल
1: में से लगतो ने तू का का लगे बापन बारी में
0: आई सबे
1: अच्छा
0: खीरा कद्दू
1: आ तू कहला बादाम
0: बादाम
1: हां तो बादाम लगवे वास्ते तू कितना जमीन में बादाम लगेबा ना जैसे तोरा लगाना हो तो
0: 4 किलो 5 किलो 10 किलो
1: अच्छा ओकर वास्ते जमीन तैयार करे वास्ते कुछ खास करे पड़े हो
0: सब चीज जोता उता के रोपना हो खिंचालना माटी देना हो
1: अच्छा कई बार बादाम वास्ते जुताई करे पड़े हो
0: दो तीन बार
1: जुताई करे पड़े है ने तो अगर मतलब ट्रैक्टर से जोतो हां
0: ट्रैक्टर से आजकल
1: तो है
0: गाड़ी गाड़ी पे रख लेना करो
1: ना तो ट्रैक्टर से जोते हैं ने अच्छा तुझे मतलब तीन चार बार जोतला तो मैं खाद कौन सा दे हां
0: यूरिया दे हो डीएपी दे हो बाजान दे हो
1: अच्छा
0: और किसम के दवा चलो
1: तो गोबर खाद के उपयोग कर रहा
0: गोबर भी दे हो
1: गोबर भी दे है ने
0: हां गोबर भी दे हो
1: अच्छा
0: सल्फर देना जरूरी हो
1: सल्फर
0: दवा देना जरूरी
1: जरूरी पड़ जाओ तब कहे कि अब जमीन के मांग हो गए हो लेकिन अगर कुछ कुछ जमीन में थोड़ा थोड़ा जमीन में तू करके देखिया कि गोबर खाद और जैविक खाद अगर ओकर से फायदा होता तो बाकी जमीन में भी कोशिश करिया ने ठीक हो और ओकर में बादाम में जे लगावे है तो जे बादाम हो से घरे के बीज रहो हो कि दुकान से
0: खरीद के
1: करे हां
0: खरीद के आजकल धान भी लगो हो से खरीद के मक्का भी लगो से घर के आपको कुछ समझ में ना हो
1: नहीं लगे
0: सब खरीद के
1: अच्छा तो फिर बादाम जैसे लगेला तो कोई कुछ बीमारी उमारी के या फसल लगवे से पहले का बीज उज उपचारित करे हां कि कौन दुकान से ले है अच्छा तो जेकर में बीमारी के और उपचारित करे कि बीजवा में पहले
0: दवा दे हो बादाम ने खर्चालना करना माटी देना माटी तो सब देना हो
1: अच्छा माटी
0: हां माटी उठ दे के पानी फसल पर तो दियो पातो तो दबो
1: कितना बार दिए पड़े हो
0: अभी दो बार
1: पानी बादाम में दिए पड़े हो और कैसे ज्यादा ना और ओकर में देखभाल वास्ते का करे पड़े हो
0: अही सब बरसात में पानी निकालना हो पानी रहना
1: मतलब पानी जमे ना देना चाहिए क्या कि अब तो बरसात आ गेले हो
0: तब तो पानी डाल तो निकल जतो बरसात रह तो निकल जतो और मट्टी रह तो तब उखल जगह रह तो पानी निकल जतो ना दब जतो
1: यानी मतलब जो खेत तैयार करे है तो ओकर में तू जमीन मतलब वो जो तैयारी करे है ओकरे अनुसार ने और ओकर में बीमारी के डर हो बादाम में
0: बेदाम में तो बीमारी डर न को ये मोरे उरे के डर हो पानी भर गलो मोर गलो
1: अच्छा पानी
0: बैठ गलो हाँ पानी भर गलो मोर गलो
1: मतलब पानी निकासी के सबसे ज्यादा जरूरत रहे कि पानी निकासी समय हाँ, पर हो जाए
0: हाँ बैठ गलो बैठबे न कर लो
1: और जैसे अभी मकई भी तू कहला लगे हाँ,
0: तो मकई चालना वही चालना
1: मकई के भी जमीन तैयार करे वास्ते मतलब हाँ? क्यारी बना ला अच्छा से ना
0: बना ला जोत के तो लगा
1: कई बार जोते पड़े हो
0: वही दो बार जोत ला के बाद मकई लगा देला
1: हाँ हाँ
0: मकई लगा के फिर चालना हो दो बार सल्फेट के गिराना हो तो मकई हो तो
1: अच्छा तो जैसे ओकर में तू चाल के सल्फेट मतलब दवाई दे दे हां तब निकल तो
0: आजकल दवा मारना हो
1: अच्छा जैसे पौधा थोड़ा थोड़ा निकल लो तखन ये तो दवाई मारे हां
0: जखनी इतना थोड़ा भलो
1: हां तखनी का करे
0: 8 दिन 10 दिन में चार दला फिर छोड़ सल्फेट देला तीन जगह में चार के माटी दे के छोड़ देला तो मैंने दवा मारा
1: अच्छा ओकर में कई बार पानी के सिंचाई की जरूरत पड़े तो
0: पानी बरसात में मकई पानी भर हो
1: अच्छा तो पानी को अगर में पानी बरसात हो लो पानी पड़ दो और अगर कभी बारिश कम हो गलो तखनी का करो है
0: तब वही मकई भर लो तने मनी खराब हो गलो
1: ओकर में पानी निकासी की व्यवस्था रखे पड़े थे तो नहीं
0: निकाल निकाल के जब बढ़ गलो तब पानी करने जरूरत है हल्को फुल्को मकई हो जाए
1: अच्छा वो हल्को फुल्को में हो जाए
0: हाँ
1: अच्छा जैसे मकई में मतलब कोड़न दिए पड़े है तो कई बार कोड़न दे हो
0: दो बार
1: कितना कितना दिन में दे हो
0: 10 दिन में
1: पहला बार 10 दिन में दे
0: 15 दिन में फिर पास दे देना
1: दूसरा बार 15 दिन बाद पास दे देना और ओकर में जैसे खर पतवार होते होते तो ज्यादा कोशिश करे तो वहाँ से निकाले के ने
0: हाँ तो वहाँ से ना निकालियो वही बाढ़ गलो जब पानी पड़ गलो बढ़िया से रह गलो फिर दवा ववा सब मारो पर ओकर में खूब अच्छा से लगे हुआ सब लगा हुआ के तब उपज गलो तब दे गलो ना तो खत्म हो गलो
1: अच्छा तो तोरे जब भी मकई लगे ले है तो तोरा फायदा देले हो कि नहीं देले हो
0: फायदा जरूर दल को मकई में
1: अच्छा आ तू तो खेती किसानी के काम करे था तो तोरा अच्छा लगे थो खेती किसानी के काम
0: किसान के काम किसान हो चाहे ना हो किसान करना हो
1: किसान के काम हो कि मतलब
0: हो चाहे ना हो
1: संतुष्टि हो करे में
0: करे में
1: अच्छा
0: धाने बुनो हो तो हो चाहे ना हो रोप डोब के जे हो मगर किसान डूब जाओ मगर घाटा हो जाओ मगर किसान छोड़ो ना खेती पर,
1: खेती तो करना ही करना
0: नहीं
1: और सब परिवार के मदद से भी करना हाँ,
0: सब परिवार को।
1: अच्छा तो परिवार सब साथ दे थो तोरा खेती बाड़ी करे में
0: हाँ।
1: अच्छा तो कब से खेती के काम करे थो बो
0: काम
1: हाँ?
0: कम से कम 50 साल की उम्र
1: से 50 साल से तो खेती के काम करे हाँ। था हमेशा से हाँ। अच्छा तब के खेती किसानी और अब के खेती किसानी में तोरा कुछ अंतर लगे हो जखनी तू पहले कर
0: पहले लोग पहले आदमी के खा लेना हो
1: अच्छा
0: आप जब दवा बारू 10-15 साल से अब ध्यान बदला गलो है पहले आदमी के होवो ना हलो अब बदला गलो तो आदमी के खाए भर उतना से बेसी हो जाओ
1: खाए भर से मतलब अब ज्यादा फायदा देत हो ने अब जमीन में फसल ज्यादा अच्छा
0: ध्यान होवो लगो तो
1: अच्छा तो बहुत बेस जानकारी बतैला हमने के सब किसान भाई बहन सब के कि तू कैसे खेती करे था का का लगे था और पहले के समय और अब के समय में का का अंतर होले कैसन होले तो बहुत अच्छा जानकारी देला एकर वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद।
2: तो अब इधर देखा हमने एक महिला किसान के अनुभव सुनलिए बहुत बढ़िया से अपन खेती बाड़ी के बारे में बतेल थी उ किसान हल्थी सावित्री देवी और उनकर से बात करत हल्थी अलका कुमारी।
1: तो देखा बतेलती अपन अनुभवी किसान हल्थी पहले के खेती बाड़ी और अब के खेती बाड़ी में वो अपन बात बतेलती और अब हमने बात कर प्रशांत भाई मौसम के जानकारी और बाजार भाव की
2: हाँ।
1: तो सबसे पहले आज के बाजार भाव जानिए।
2: तो देखा कि सबसे पहले किसान भाई बहन के बता दिए कि आज जो बाजार में है से लाल आलू और सफेद आलू के जो भाव रहे लाल आलू के बता दिए कि 18 से 20 रुपए प्रति किलो रहले सफेद आलू 12 से 15 रुपए प्रति किलो प्याज 25 से 30 रुपए प्रति किलो फूलगोभी 50 से 60 रुपए प्रति किलो पत्ता गोभी 30 से 40 रुपए प्रति किलो पटल 20 से 30 रुपए प्रति किलो और भिंडी 15 से 20 रुपए प्रति किलो।
1: नेनुआ के भाव चले थो 20 से 30 रुपए प्रति किलो कद्दू के भाव हो 20 से 30 रुपए किलो हरा मिर्ची के दाम हो 60 से 80 रुपए किलो और शिमला मिर्च 50 से 60 रुपए किलो गाजर 30 से 40 रुपए किलो बीट 30 से 40 रुपए किलो और मूली 30 से 40 रुपए किलो और धनिया पत्ता 150 से 160 रुपए किलो और अदरक के दाम बतावा प्रशांत भाई
2: 120 से 140 रुपए प्रति किलो खीरा 30 से 40 रुपए प्रति किलो टमाटर 30 से 40 रुपए प्रति किलो लाल साग और पालक साग 20 से 25 रुपए प्रति किलो। और आज की जो तापमान रहले किसान भाई बहन मौसम के जानकारी के देने से तो आज ज्यादा से ज्यादा तापमान बढ़ोतरी रहले 29 डिग्री सेल्सियस और कम से कम आज तापमान रहले 24 डिग्री सेल्सियस और कल भी ऐसे तापमान है से थोड़ा सा अंतर जरूर रहतो कल थोड़ा सा मौसम में गर्माहट रहतो कल 32 डिग्री सेल्सियस ज्यादा और कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस रहे के संभावना है और आज के जो आर्द्रता है वो 80% है।
1: तो हो गलो आज के मौसम के जानकारी और बाजार के भाव
2: हाँ। और देखा कि अबधर के समय हो भाई कि जे किसान भाई बहन मई के महीना में जे अपन पौधा रोपण के से तैयारी शुरू कर ले थी और जे गड्ढा उड्ढा भुजकुल को खोड़ के रखलती है ताकि ऐसे हम इन पौधा लगाइए चाहे फलदार चाहे लकड़ी रूमा जे भी है तो उ पौधा के रोपे के समय आ गेल है कहे कि बारिश जब है से शुरू हो जाए तो फिर पौधा रोपण के शुरुआत हो जाए। तो जोन किसान भाई बहन अपन ऐसे बागवानी करे के तैयारी कर ले थी या फिर फल बाग लगाए के तैयारी शुरू कर ले थी तो उ है से अब पौधा ओकर में लगे थी और ओकर है से जल के जमाव के समस्या ओकर में ना हुए दे थी।
1: बिल्कुल
2: इतने का अपन किसान भाई बहन के और अपन जो खेत बाड़ी है बढ़िया से करा भाई अब इधर मौसम में बदलाव आयल हो तो तनी है से तनी गरज मलक के तनी बच करके अपन खेती बाड़ी में जा और जल्दी है से ज्यादा अंधार करे की जरूरत ना है खेत बाड़ी में जे जब इंजोरी रहे तब अपन घर चलावा।
1: बिल्कुल और एक साथ कार्यक्रम किसान वाणी से विदा लेवे के भी समय हो गए है तो हमरा अलका
2: और प्रशांत के अनुमति दा
1: जोहार।

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनने वाले सब ग्रामीण भाई बहन के प्रशांत के देने से जोहार और सबको टेके कार्यक्रम में स्वागत हो ग्रामीण भाई बहन। आज हमार संगे इस कार्यक्रम में हेतु अलका बहन, तो अलका बहन तोहरो जोहार।
1: जोहार, प्रणाम प्रशांत भाई और कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनने वाले सभी ग्रामीण श्रोता के भी अपन इस कार्यक्रम में स्वागत है और अलका बहन देने से जोहार प्रणाम।
0: देखा अलका बहन, जैसा कि अवधर के समय में है कि ग्रामीण भाई बहन है ऐसे अपन खेत बाड़ी में है, बरसात के अनुसार ऐसे तैयारी शुरू कर दी थी। धान धूरा के तैयारी तो सब गोटे करबे करो थी, और संगे संगे ऐसे ग्रामीण भाई बहन ऐसे अपन सब्जी की खेती जे अपन नगदी फसल है जेकर से उनका ऐसे रोजी रोजगार चलित रहो है, अपन बारी झारी ऐसे फसल निकलित रहो है, रोपायत रहो है, उ चीज के ऐसे ज्यादा ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाए। कहे कि बरसात के समय में अब दर देख रहा है कि जैसे जैसे पानी पड़तो वैसे वैसे किसान भाई बहन के ऐसे काम है ऐसे
1: बढ़ते जाए। हाँ, कि बारिश के मौसम में जितना अच्छा बारिश हो, बारिश के मौसम में जितना बेस बारिश हो उतना ही अच्छा हमने के काम शुरू हो जाए और मन खुश हो जाए तो कि चला अभी हमने के अब खेती बाड़ी के काम पूरे तरीका से लग जाना है।
0: हाँ, सबसे पहला चीज कहा देखा कि हमें बहुत मेहनत से खेत बाड़ी में अपन ऐसे फसल लगवो ही और ओकर देखभाल में भी उतने संजीदगी बरतो ही। सबसे पहला चीज है कि बरसात शुरू हुए में ओकर में बहुत तरह के समस्या भी आओ है आदमी के जनजीवन में। एक तो कहबन कि देखा कि बरसात में मौसम के बदलाव के कारण अखरी पिपरी है से बहुत है से जमीन से बाहर निकले
1: और खेत में हम इनके काम रहो
0: है। खेत में हम इनके काम धाम रहो है भाई। तो हम इन कहबे कि सबसे पहला चीज है कि अपने के चेत के रहे के बहुत जरूरी हो, चाहे अखरी पिपरी से हो गलो चाहे गरज मलक से।
1: बिल्कुल,
0: काहे कि दोनों चीज हो से तोहरा अगर चेत के ना रहे तो दोनों के एकदम तरह नुकसान पहुंचे।
1: बिल्कुल, देखा दो तीन बात हमने के बरसात में ध्यान रखे के हाँ। रहो है जे हमने के स्वास्थ्य वास्ते भी जरूरी रहे तो सही कहला कि अखरी पिपरी कहे कि खेत के ही काम हो।
0: हाँ।
1: और खेत में बहुत तरह के कीड़ा मकोड़ा या कहला सांप वगैरह के डर रहो है, अभी के समय में ज्यादा रहे तो कुछ ऐसा जूता वगैरह भी जेकर से डर कम हो जाए तो जरूर पहन लेना चाहिए, खाली पांव से बचना चाहिए।
0: हाँ, एक हो गलो। दूसरी बात है कहबे कि देखा कि जब मौसम विभाग चेतावनी दे तो इस चीज के चेतावनी के मानना बहुत जरूरी है, ओकर पर नजर रखना बहुत जरूरी है। कहे कि देख रहा है कि गरज मलक में आजकल देखो ठनका गिरो है तो ठनका में गिरे से कितना आदमी के ऐसे परेशानी बढ़ जाए, जान से हाथ धो पड़ जाए, गोरु डांगर के क्षति हो जाए। तो अगर हम इन थोड़ा सा ध्यान दे करके सब काम करिए, बुद्धि से काम करिए तो हम इनके नुकसानी होते।
1: बिल्कुल, सावधानी से काम करना है। और देखा मौसम की जानकारी आजकल हर हाथ में मोबाइल रखो।
0: हाँ।
1: कि हर घर में हर के हाथ में मोबाइल है और मौसम की जानकारी सब तक बहुत जल्दी पहुंच जाए है।
0: बिल्कुल,
1: कि अभी इस क्षेत्र में मतलब वज्रपात की आशंका है, डर है तो कोशिश करना चाहिए कि उस समय हम वैसा जगह न जाए और कभी का रास्ता में रहिए भी तो गाछ के नीचे खड़ा रहे से बचिए।
0: हाँ, बड़ा गाछ
1: बिल्कुल लंबा
0: गाछ के एकदम नजदीक में न रहिए ताकि ओकर में ऐसे आकर्षण क्षमता बहुत ज्यादा रहो है और ओकर पर बिजली गिरी की संभावना ज्यादा रहो है। तो जो बौना है झुरमुट वगैरह है ओकर तरह बच सको है, लेकिन बड़ गाछ के नीचे न रहे चाहिए, चाहे जानवर के भी न
1: रखना हो या खुद भी रहना हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूर सावधानी बरत थी। और देखा कि हम इनके जब फसल लगे जाए अलका बहन तो हम इनके एक चीज ध्यान दे पारो कि भाई बड़ी मेहनत से बड़ी पूंजी से हम इनके फसल लगवो है और बड़ी आशा से लगवो है, लेकिन ओकर में ऐसे आशा पर पानी फेरो थी कीट पतंगा।
1: बिल्कुल, जब देखवा ना कि कोई फसल लगे ले है बहुत अच्छा बढ़वार हो लहलहेले हो और कोई पत्ता में मतलब कीड़ा लग गए ले।
0: हाँ।
1: तब तो समझवा कि हमें सारा फसल बर्बाद हो जाए तो बहुत अफसोस लगो,
0: बड़ी अफसोस। तो ओकर लिए कुछ पहचान है जो कीट के हम पहचान कर सके, जैसे कि एक हो जाओ तोरा पत्ती लपेटक। पत्ती लपेटक जो है वो ऐसे पतिया के एकदम मोमोर के एकदम ओकर भीतर ढुक जाए।
1: हाँ, हाँ।
0: ओकर भीतर ढुक करके और अंदरे अंदरे पतिया के खायत रुक
1: खोखला कर दे
0: और जब देखवा ना खोल के पतिया तो में चरक चरक नियर पूरा रेखाल रेखाल नियर।

0: यानी कि जितना हरापन रहे ओकर में
1: खत्म
0: खा जाए पूरा, तो ओकर है से ओकर से बचाव करना बहुत जरूरी हो। एकर खातिर बचवे के लिए है से नीम के तेल जे रहो ओकर छिड़काव करना बहुत कारगर हो।
1: यानी अगर हम नीम के तेल के छिड़काव करे थी
0: हाँ।
1: तो हमने के ई जे पत्ती लपेटक है ओकर से हमने के बचाव होते फसल।
0: बिल्कुल बिल्कुल बच सको है। ओकर बाद दूसरा हो गलो तना छेदक, जैसे कि देखा कि बैंगन के हो गलो या टमाटर हो गलो या कोई भी तरह के सब्जी लगा लो ओकर में तना में घुस जतो कीड़ा, घुस करके छेद करके पूरा अंदर अंदर
1: खोखला कर देते खत्म कर देते
0: हाँ, तो ओकर में घुस जतो और जब पौधा मर जतो तो समझ ला है कि हम इनके ऐसा बीमारी ऐसे आर पौधा में लग सको है।
1: एक पौधा से बढ़ते बढ़ते दूसरा पौधा तीसरा पौधा यानी पूरा लग गेलो
0: हाँ। तो ओकर से बचवे के लिए ऐसे क्लोरोपाइरीफास
1: अच्छा
0: दवाई है ओकर छिड़काव करे से ई जे तना छेदक कीड़ा है ओकर से तू अपन फसल के बचा सको है। तीसरा कीड़ा हो गलो रस चूसक, ई कीड़ा है बरसात में सबसे ज्यादा फैले वाला कीड़ा हो। ई पत्ते जे है से एकदम पूरा एकदम खा करके खत्म कर देतो और जहां देखो कि पतैया है से पूरा सिकुड़ जा है एकदम घोंघचाल नियर समझ ला, तो ई सिकुड़ जतो अगर पड़ता है एकदम मुरझा जतो, तो ई हमला से बचवे खातिर एकर में दवाई आओ है इमीडा क्लोरोपीड।
1: यानी ये दवाई के प्रयोग करके अगर हमने के पौधा में देखे थे इस तरीका की बीमारी है
0: हाँ।
1: तो कर वास्ते हमने समुचे दवाई या कृषि विशेषज्ञ से जानकारी लेकर भी हमने कर ले सकते।
0: एकर बाद भी एक आर है सफेद लट बोलल जो है ओकरा, ये बरसात के देखबा के मौसम में है से फसल के जड़ काट दे है पूरा और पौधा तो मर जतो,
1: जब जड़ ही खत्म हो गेलो तो पौधा ही खत्म।
0: ये सबसे तेजी से ही काम हुआ है कीड़वनी सब करो थी, तो एकर खातिर है जखनी जोतो लगो है तखनी है से नीम के खली है से माटी में मिला देवे चाहिए
1: ताकि जड़ से ही खत्म हो
0: हाँ, या फिर ट्राइकोडर्मा के उपयोग करे चाहिए।
1: यानी हमने की सब चीज के ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो ई चीज के किसान भाई बहन ध्यान रखती तो जो कीट है ओकर पहचान करके ओकर से बचाव कर सकल हती अपन फसल के।
1: बिल्कुल,
0: अब चलिए तनी जानकारी देने और सुनल जाए जरूरी संदेश और गीत।
1: जरूर
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: श्रोताओं हूं हमारे साथ हैं एक सफल मुर्गी पालक।
1: गीत के बाद अब ले चलो ये जानकारी देने और सुनो ये एक जानकारी भरल बातचीत। एक मुर्गी पालक थी जे अपन अनुभव साझा कर रही थी और बहुत बढ़िया तरीके से मुर्गी पालन के कार्य कर रही थी। यह थी शशि कुमार
2: और इनका से बातचीत कर ले थी प्रशांत कुमार।
1: तो सुनल जाए इनका बातचीत।
0: श्रोता हूँ हमारे साथ हैं एक सफल मुर्गी पालक जो मुर्गी पालन का काम बहुत ही अरसे से करते आ रहे हैं। आज ही इनके फार्म में 3000 का लॉट ये चलाते हैं और इनसे काफी लाभान्वित है। तो सबसे पहले जानते हैं इनसे इनका परिचय। जी आपका नाम?
3: मेरा नाम शशि कुमार सिंह।
0: शशि कुमार सिंह कहाँ के रहने वाले आप?
3: शिला ग्राम तल सब कुछ शिला
0: जी।
3: शिला चतरा
0: जी। ये आप मुर्गी पालन का कार्य कितने सालों से कर रहे हैं?
3: 5 साल से।
0: 5 साल से आप कर रहे हैं। आपका अनुभव काफी है। आपने मुर्गी पालन में क्या मुनाफा और क्या नुकसान देखा?
3: हमने अच्छा देखा। मुनाफा ये है कि बेरोजगारी का बहुत अच्छी है। 3000 फार्म में कम से कम 30 से 35 हजार रुपये एक लॉट में आ जाता है।
0: एक लॉट में तो प्रत्येक लॉट मतलब कितने कितने दिनों में आप निकालते हैं?
3: हम 32 से 35 दिन में।
0: यानी कि एक समझिए कि प्रति माह आपकी जो आमदनी होगी 30-35 हजार के आसपास है मुर्गी पालन से और ये 3000 के लॉट में ही आप इतना मुनाफा ले रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या देखभाल करना पड़ता है मुर्गियों? सबसे पहले से बताइएगा।
3: सबसे पहले में है कि चूजा जब आता है
0: जी
3: तो पहला दवा है गुड़ और हल्दी।
0: गुड़ और हल्दी कैसे देते हैं? गुड़ हल्दी किस प्रकार से देते हैं?
3: गुड़ और हल्दी जो देहाती हल्दी जो होता है
0: दोनों
3: को खौला दिया
0: जी बिल्कुल
3: वो ठंडा हो गया उसको पानी में मिश्रित करके इतना ही सामान्य पानी में
0: जी
3: 1000 मुर्गी पालन में 200 ग्राम गुड़ और 200 ग्राम हल्दी
0: जी
3: उसको दे दिया खोला के ठंडा हो गया
0: जी
3: सारे चूजा को दे दिया पीने के लिए। उसमें जो पेट में विकार जो आता है शुरू शुरू फर्स्ट चांस उससे दूर हो जाता है
0: बिल्कुल। तो ये पहला उसका जो पेय हुआ ये गुड़ और हल्दी के मिश्रण आप तैयार करके देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं?
3: उसके बाद शाम में उसको एंटीबायोटिक
0: वो भी पानी में ही देते हैं।
3: पानी में ही
0: तो एंटीबायोटिक देने का मात्रा क्या होता है?
3: एंटीबायोटिक 1 ग्राम में 1 लीटर पानी में 1 ग्राम
0: जी। अब हमें बताएंगे उसके भोजन के बारे में। भोजन कब से देना शुरू करते हैं उसे?
3: कम से कम चूजा छोड़ने से 4 घंटे बाद।
0: 4 घंटे बाद तो कितने क्या भोजन देते हैं उसे?
3: भोजन में दाना जो आता है मुर्गी दाना
0: प्री स्टार्टर आता है
3: प्री स्टार्टर
0: तो वो देते हैं।
3: तो
0: मतलब कि वहाँ पे आपका जो शेड बना हुआ है मुर्गी शेड वो किस प्रकार से बना हुआ है?
3: वो शेड है ऊंचा स्थान है टायर का भी हम लोग बनाते हैं साइकिल टायर का भी।
0: जी
3: और नहीं तो दाना जो आता है वो उसका पोल्ट्री का
0: फीट जी
3: छोटा छोटा डब्बा में ताकि उसका गला में नहीं फंसे उतना ही दाना में उसको खिलाते हैं 1 सप्ताह तक।
0: 1 सप्ताह तक प्री स्टार्टर चलता है। और उसका पानी देने का समय क्या है? उसका
3: समय 3 बार कम से कम 3 बार
0: 3 बार पानी 3 बार पानी में आप दवा मिश्रण हमेशा करते हैं या फिर साफ पानी पिलाते हैं?
3: दोपहर में उसको साफ पानी पिलाते हैं।
0: साफ पानी पिलाते हैं। अब हमें बताएंगे उसके और वैक्सीनेशन के बारे में कि वैक्सीन करने से क्या लाभ होता है?
3: 6ठा दिन का वैक्सीन है उसको 5 से 6 दिन के अंदर फर्स्ट वैक्सीन
0: जी
3: तो बहुत जरूरी चीज है
0: जी
3: उससे रोग में बहुत क्षमता आती है
0: यानी कि रोग को रोकने में। हाँ हाँ
3: 14 दिन के बाद उसको वैक्सीन गैमरो देते हैं
0: जी
3: पेट फूलना ज्यादा लेटरिन होना इसे रोकता है
0: ये रोकता है जी।
3: फिर 18 से 19 दिन में फिर लसोटा वैक्सीन देते हैं।
0: लसोटा?
3: हाँ
0: जी। लसोटा का क्या लक्षण है?
3: उसका लसोटा का लक्षण है लेटरिन सादा होना पेट फूलना
0: उसका भी वही है
3: उसका भी है।
0: तो ये सारी बीमारियां बराबर आने की संभावना होती है या फिर आ जाती है तब देते हैं या फिर संभावना पहले ही दे देते हैं ताकि वो बीमारी आए नहीं?
3: पहले ही दे देते हैं ताकि वो बीमारी अटैक नहीं करे।
0: अटैक नहीं करे ये आपका सबसे पहले ये सावधानी होती है कि आप बीमारी अटैक करने से पहले ही वो सारा चीज वैक्सीनेशन कर दे ताकि उन्हें बीमारी की संभावना से बचाया जा सके। तो आपकी मुर्गियां है ये प्री स्टार्टर 1 महीने तक चलता है उसके बाद है सो चलता है स्टार्टर।
3: स्टार्टर
0: जी
3: उसके बाद स्टार्टर चलता है वो 28-27 दिन तक
0: जी,
3: स्टार्टर 28 के बाद उसके बाद फिनिशर देते हैं।
0: फिनिशर देते हैं जी। तो फिनिशर कितने दिन तक चलाते हैं?
3: वो 32 से 35 दिन ऐसे 30 दिन के बाद हम लोग देखते हैं बाजार में अगर बाजार दाम मिल गया हमको प्रॉफिट आ रहा है तो उसको हम लोग 32-33 दिन में निकालते हैं
0: फिनिशर देके निकाल देते हैं। आप हमें बताएंगे कि 32-33 दिन में आपके शुरू से चूजे कितने बड़े हो जाते हैं कितने वजन के हो जाते हैं?
3: 32-33 दिन में अगर अच्छा दाना हाइब्रिड खिला

0: खाने से तो 700-800 ग्राम, एक किलो 700-800 तक हो जाएंगे,
1: यानी कि 1.5 किलो के ऊपर हो जाते हैं 32-33 दिन में। अब हमें आप बताएंगे कि उस समय से निकाल देने में, मतलब कि 1.5 किलो के आसपास निकाल देने में फायदा है या फिर उससे और बड़ा करने में?
0: उससे और बड़ा करने में ही फायदा है
1: जी।
0: जी उसमें है कि बाजार अगर 10 रुपया डाउन भी बिके तो अच्छा बचत है
1: बड़ा में। तो अभी आपका होली का समय आने को है, तो अभी आप बाजार किस प्रकार से देख रहे हैं?
0: अभी बाजार से हम लोग तो देख रहे हैं कि ठीक ही है, और अंदाज है कि होली बाजार ठीक ही रहेगा।
1: जी तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुर्गियां जब निकालते हैं तो आप एक साथ थोक में निकालते हैं या खुदरा बिक्री का भी व्यवस्था रखे हैं?
0: कोशिश हम लोग करते हैं थोक निकालने का, उसके बाद अगर बच गया तो कुछ हम लोग खुदरा भी दे देते हैं अगल बगल दुकानदार लोग को भी।
1: तो ये कोशिश थोक में मतलब कि करते हैं तो क्या उसमें ज्यादा मुनाफा है या फिर?
0: नहीं, खुदरा में ज्यादा मुनाफा है।
1: खुदरा में ज्यादा मुनाफा है और थोक में
0: कम है।
1: तो आप थोक मतलब कि कम है तो फिर क्यों बेचते हैं? फिर
0: थोक में बेचने का कारण है कि ज्यादा लॉट का मुर्गी, अब 6-7 टन मुर्गी हो गया तो लोकल बिकने में दिक्कत होता है, तो दाना ज्यादा खाएगा नुकसान हो जाता है।
1: अभी बाजार में मुर्गियों की क्या कीमत है, कैसे अब?
0: अभी बाजार में अगर थोक में लिया जाए तो 90-95 रुपए के जी है
1: जी। सचिन जी, तो आपने बड़ी अच्छी बातें बताई मुर्गी पालन के बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो आप धैर्य से जानकारी सुन लिए मुर्गी पालन के बारे में, उनका देखभाल के बारे में जानकारी दे थी शशि कुमार सिंह,
3: और इनसे बातचीत करे थे प्रशांत कुमार।
2: तो चले चले तो एक बार फिर एक गीत सुना जाए।
3: जरूर।

0: इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम से हम इनके विदा लेवे बेरा भे गेलो अलका बहिन।
1: तो कार्यक्रम खेती बाड़ी से हमरा अलका
0: आर प्रशांत के अनुमति दा
1: जोहार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बारी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। संध्या के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हमारे
1: समाचार। नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि रांची में सफाई पर विशेष ध्यान देने वाले वार्डो को स्वच्छ वार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार हर माह दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री आज रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री सेठ ने कहा कि वेंडर्स की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर रांची में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि एम्स और रिम्स 2 के निर्माण से चिकित्सकों की कमी दूर होगी। रांची में कल आयोजित होने वाली झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है, जो कल सुबह 7:30 बजे से शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगी। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र में आज एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। गंभीर रूप से घायल युवक का रिम्स रांची में इलाज चल रहा है। और रांची जिला योग संघ की ओर से 2 दिवसीय रांची जिला योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज रांची में शुरू हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। पहले दिन सीनियर वर्ग की स्पर्धाओं में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने योगासन का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल जूनियर वर्ग की स्पर्धाएं और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित होगा। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आइए सुनते हैं श्रोताओ आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर।

नमस्कार श्रमिक बंधुओं, आप सभी को आपकी रेडियो सखी वंदना श्रीवास्तव का जोहार। आपके उसी कार्यक्रम में जो कहते हैं आपके श्रम और मेहनत की कहानी, यानी कि मेहनत काश। श्रमिक बंधुओं, आज हमारे कार्यक्रम में हर बार की तरह एक खास योजना की जानकारी है आपके लिए, ताकि इसका लाभ उठाकर आप अपने जीवन को सुखी, संपन्न और सुकून भरा बना सकते हैं। तो चलिए, कौन सा है ये योजना, इसके लिए कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा और थोड़ा सा इंतजार। लेकिन फिलहाल सबसे पहले अपने कार्यक्रम की ओर से हम आपको सुनवा रहे हैं ये प्यारा सा गीत।

सभी बंधु उम्मीद करते हैं आपको ये गीत बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए इस गीत को दिल में बसाए हम आपको ले चलते हैं अब उस दिशा में जहाँ कुछ बातें हैं आज जानने की, समझने की और अपनी जिंदगी में अपना कर आगे बढ़ने की। तो श्रमिक बंधुओं, आज जैसा कि हमने बताया, आपको बताने जा रहे हैं कि क्या है प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम, क्या है इसके क्षेत्र, क्या है इसकी योजनाएं और कैसे आप इनका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से बताते हैं इन सब के बारे में आप सबको। आप सभी ध्यान से सुनिएगा श्रमिक बंधुओं। प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम, जिसे पीएमएस न्यू 15 पॉइंट्स प्रोग्राम भी कहते हैं, आज प्रधानमंत्री के द्वारा संचालित किया जा रहा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम, ये इसका क्षेत्र क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती है, इसके बारे में भी चलिए एक एक कर हम आपको बताते हैं। श्रमिक बंधुओं, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम एक व्यापक सरकारी पहल है, कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य देश के 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी को समान अवसर प्रदान करना है, उनके सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। साथियों, यह कार्यक्रम मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 क्षेत्रों में कार्य करती है और संबंधित योजनाओं में विभाजित की जाती है। शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना इन समुदायों के लिए, आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में समान भागीदारी इन अल्पसंख्यकों की बढ़ाने की, और तीसरा जो क्षेत्र है वह जीवन स्थितियों में सुधार और सुरक्षा लाने की। तो किस तरह से शिक्षा के अवसर को बढ़ाया जा रहा है इन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, चलिए पहले हम आपको ये बताते हैं। शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक बच्चों को सामान्य वर्ग के बच्चों की ही तरह जो है इनकी बुनियादी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक निःशुल्क शिक्षा सभी सरकारी विद्यालयों में दी जाती है। इसके अलावा जो है माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की भी कक्षाएं संचालित की जाती है इन बच्चों के लिए सरकारी विद्यालयों में, और वहां भी इन्हें कम से कम खर्च पे शिक्षा दी जाती है। मुफ्त किताब दी जाती है, कॉपियां दी जाती है, साइकिल दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है और भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, जिसके जरिए ये उच्चतर माध्यमिक तक की शिक्षा मुफ्त प्राप्त कर पाते हैं। और इसके अलावा जो बातें हैं इनकी आर्थिक समानता की, तो इनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आजकल कौशल विकास योजना के तहत हमारी सरकार इन वर्गों के युवक युवतियों को कितने तरह के प्रशिक्षण प्रदान करती है रोजगार से संबंधित, और ऐसे वर्ग के अल्पसंख्यक वर्ग के युवक युवतियां अलग अलग अपने कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त कर बैंक से लोन लेकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपने को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना सकते हैं। अब इन जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत इन्हें ऋण देने की भी योजनाएं हैं, और यह ऋण उन्हें नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा स्वरोजगार के लिए प्रदान किया जाता है। आजीविका मिशन के तहत दीनदयाल अयोध्या योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के जरिए महिलाओं और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की लगातार कोशिश हमारी सरकार की इस योजना के तहत चल रही है। 15 सूत्री कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री जी के, इसके तहत इन अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों की स्थिति को सुधारने के

0: उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए भी कई कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए कई योजना भी चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। इसके तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल, कौशल केंद्र और पीने के पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत। इतना ही नहीं, श्रमिक बंधुओं, ग्रामीण आवास भी इनको उपलब्ध कराई जा रही है ग्रामीण आवास योजना के तहत। और सांप्रदायिक सद्भाव बने, बहुत सारे संवेदनशील क्षेत्रों में हमारे ये अल्पसंख्यक लोग रहते हैं जहां दंगा होती है और कई तरह के अन्य दुर्घटनाएं होती है जिनसे उनके पुनर्वास की आवश्यकता होती है, तो सरकार आज उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था कर रही है 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत और दंगा पीड़ित लोगों के लिए आवास की व्यवस्था भी कर रही है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम है हमारे अल्पसंख्यकों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसका लाभ आज हमारे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोग बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं। आज हर समुदाय के लोग शिक्षित हो रहे हैं, सरकारी विद्यालयों में मुफ्त में छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, साइकिल, पोशाक प्राप्त कर रहे हैं, मिड डे मील की सुविधा दी जा रही है और खेल कूद, कला, संस्कृति, विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ने का उन्हें अवसर भी प्रदान किया जा रहा है अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए। साथ ही उन्हें कौशल विकास योजना के तहत निपुण बनाकर रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। महिला हो या पुरुष, आज कई अल्पसंख्यक वर्ग के महिला पुरुष को ये दी जा रही है रोजगार के अवसर इसी 15 सूत्री कार्यक्रम के द्वारा और इनके आवास की भी व्यवस्था की जा रही है। तो अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई समुदाय के लोग हैं या खुद भी अगर आप इस समुदाय के व्यक्ति हैं तो इसका लाभ जरूर उठाए ताकि सबका विकास होगा तभी देश का विकास होगा और हमारा देश जो है विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना पाएगा, विकसित राष्ट्र बन पाएगा। उम्मीद करते हैं श्रमिक बंधुओं कि हमारी ये बातें आपने ध्यान से सुनी होगी और प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का लाभ भी आप जरूर उठाएंगे। तो चलिए, ये तो हुई थी आज की खास बातें हमारे बीच योजना के संदर्भ में। अब हमारे बीच एक मेहमान मौजूद हैं जिनसे पहले भी आप मिल चुके हैं। चलिए एक बार फिर से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं संजय तूरी जी से, जो बता रहे हैं कि बांस की तरह तरह की सामग्रियां बनाकर भी आप अपने रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपने साथ साथ कई लोगों को स्वरोजगार प्रदान कर सकते हैं। इनसे बातचीत कर रहे हैं संजय तूरी जी से हमारे सहयोगी सूरज रजक, लेकिन इनकी बातचीत सुनने से पहले चलिए सुनाते चलते हैं आपको कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, इस वक्त है हमारे साथ संजय तूरी जी और हम हैं चुरचू प्रखंड के आंगो के ओरिया में हैं। और ये संजय तूरी जी और इनका पूरा परिवार, एक टोकरी और टोकरी से बांस से जितने सामान तैयार किए जाते हैं घरेलू उपयोग के लिए, वो सभी चीज तैयार करते हैं। तो संजय जी, आप बताइए क्या क्या आप लोग

0: बनाते हैं?
1: टोकरी बनाते हैं और सूप बनाते हैं, डाला बनाते हैं और डोरी बनाते हैं। हर तरह से जैसा हमारा डिमांड आने पर से पब्लिक का, जैसे जो मांग दिया उसे हम बना के मांग पर बनाते हैं।
0: तो ये आप लोग मतलब पूरी पीढ़ी
1: मेरा पैसा ही है हम लोग का, पूरी जाति भी है हम लोग और पैसा भी
0: मतलब पारंपरिक रूप से
1: हम लोग।
0: अभी तो नहीं पूछ सकते हैं कि कितने दिनों से, मतलब पूरा परिवार इसमें लगा हुआ,
1: परिवार लगा रहता है और प्लस अभी हर अभी हम जैसे मेरा पूर्वज और उससे मेरे से मेरा बाल बच्चा सब इसी हम से रोजगार हम लोग को इसी से चलता है सारा। जितना हम लोग का खाना पीना कपड़ा लेता त्योहार मनाना ये बांसे ही कमा के हम लोग इससे गुजर करते हैं हम लोग बांसे
0: ही। अच्छा बांस कहते हैं, ये बांस आप लोग को मिलता कहाँ से?
1: हम लोग खरीद के लाते हैं।
0: खरीद के लाते हैं ना?
1: जी सर।
0: तो अच्छा बांस मिलने में कठिनाई होती है या
1: नहीं? जाना पड़ता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जहाँ मिल जाए बांस हम लोग वहाँ से 100 रुपया में 80 रुपया में खरीद के लाते हैं।
0: अच्छा मान लेते हैं कि एक ये बांस है तो इसकी कीमत 80 रुपया है।
1: हाँ 80 रुपया है।
0: 80 रुपया है तो इससे कितना, जैसे मान लीजिए एक टोकरी बनाए तो इस साइज का टोकरी जो बना रही है
1: हाँ, जी सर।
0: तो इसको कितना बनेगा टोकरी इससे?
1: चार बनेगा इसमें,
2: चार वो पांच
1: हाँ, चार पांच बनता है,
0: चार पांच बनता है,
1: चार पांच बनता है।
0: तो टोकरी मौनी
1: मौनी सूप दोरी
0: दोरी
1: और हर तरह से पंखा और छोटा छोटा टोपा जैसे जो हो गया छठ में शादी के लिए दोरा हो जाता है डोलची एक आता है उसे हर तरह से हम लोग बनाते हैं।
0: सबसे ज्यादा क्या मांग रहता है
1: ये? सबसे ज्यादा अभी तो सर ये मांग रहता है टोकरी, अभी छठ है, अभी सीजन पे सीजन पर सीजन पर होती है। इस सीजन में आ गया आपको सूप आ गया, दोरी है और डाला है ऐसा सूप ऑलरेडी, तो अपना टोकरी तो ऑलरेडी परमानेंट हर दिन का हम लोग मतलब मांग रहा था उसका। और ये हो गया अभी ये जा रहा है, कौन सा महीना जा रहा है?
0: कार्तिक है मतलब अक्टूबर का,
1: अक्टूबर महीना, इसमें से हम लोग को सूप का ज्यादा डिमांड रहता है,
0: इसमें सूप का ज्यादा
1: डिमांड रहता है।
0: और शादी ब्याह में क्या क्या चीज?
1: डोरी हो गया, डोरी और डाला ज्यादा, डोरी का ज्यादा डिमांड रहता है शादी का टाइम में,
0: दोरी का ज्यादा
1: डिमांड होता है।
0: तो मतलब बड़ा वाला जो
1: बड़ा वाला दोरी, उसमें हर तरह से आदिवासी लोग करता है, उसमें से दुल्हन बैठती है
0: बैठने के लिए
1: हाँ, और जैसे हिंदू धर्म में से और जनजाति लोग हुआ तो उन लोग को लिए साज जो होता है उसमें से मिठाई का भी हम लोग बनाते हैं बड़ा बड़ा हाँ, मांग आता है ठकुआ जैसे बोलता है,
0: ठकुआ लड्डू वगैरह भी
1: लड्डू वगैरह जिसमें जाता है उसमें लड्डू वगैरह हम लोग उसमें पार्सल करने के लिए कोई 10 को 5 को मांग दिया हर तरह से हम लोग बना देते हैं।
0: अच्छा जैसे कि बांस लाए तो इसको मतलब बनाते कैसे है? मतलब इसका पहले क्या क्या प्रक्रिया?
1: इसको काट के लाते हैं वहाँ से
0: हाँ।
1: उसके बाद इसको फाड़ते हैं, उसके बाद इसको पतला काम निकालते हैं
0: हाँ।
1: फिर पटर रहता है छोटा उसको निकालते हैं,
0: पानी वानी में भी डालते हैं क्या?
1: पानी में नहीं, जब बेचने जाते हैं ना
0: हाँ।
1: तब जिसे थोड़ा सा धोने के लिए
2: पानी इसमें भी पानी डाल रहा
0: था एक मिनट
1: डाल देते हैं पानी छींटते हैं उसमें नरम होने के लिए थोड़ा सा
0: है ना,
1: नरम होने के लिए डाल
0: और नरम होने के लिए डालते हैं ना,
1: जैसे वो कड़क रहता है ना अपना ये है हाथ में गड़ जाता है ऐसा हिसाब से, तो उसको नरम करते हैं, ज्यादा पानी मात्रा नहीं रहता हल्का मात्रा रहता है और सूप रोके सूप में हल्का मात्रा देते हैं पानी के लिए उसके बाद।
0: अच्छा अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि आपके पूर्वज जो करते थे सो
1: जी सर,
0: और आज आप लोग जो कर रहे हैं उसमें कुछ बदलाव किए हैं?
1: बदलाव किए हैं, अभी देखिए हम लोग अलग तरह से डिजाइनिंग दे रहे हैं
0: हाँ, ये चीज महत्वपूर्ण है।
1: हम लोग डिजाइन अभी हम लोग का ट्रेनिंग है, देखिए यहाँ ट्रेनिंग होता है, अभी हम लोग ट्रेनिंग में जाएंगे, हम हर तरह से सूप बनाते हैं, उसमें मोबाइल रखने का सोफा बनाते हैं, मोबाइल बैठने का कुर्सी बना रहे हैं, डोलची बना रहे हैं, गुलदस्ताना बना रहे हैं, बन रहा है अभी ट्रेनिंग हम लोग को जा रही है, अभी हम लोग 6 महीना कोर्स करेंगे उसके बाद हम लोग मार्केट में भी वो।
0: तो कहाँ से ट्रेनिंग कर रहे हैं?
1: अभी हम लोग रांची से यहाँ मास्टर आता है सिखाने के लिए हम लोग।
0: अच्छा
1: अभी तो
0: अब तो आप लोग ट्रेनिंग के लिए कहीं गए थे कि
1: नहीं? अभी हम लोग ट्रेनिंग का कोर्स चालू कर रहे हैं उसका,
0: उसका चालू कर
1: हर तरह से उसका बनेगा डिजाइनिंग।
0: तो मतलब अभी कुछ बदलाव किए हैं?
1: हाँ बदलाव तो बहुत है अभी।
0: सबसे बड़ा बदलाव क्या मानते हैं?
1: अभी बदलाव है अभी हम लोग को यही सब सीख रहे हैं, जैसे ये तो पर्सनल हो गया कि टोकरी डाला कोई भी बना सकता है, इससे हो गया अभी हम लोग को जैसे सोफा हो गया, पलंग हो गया, बैठने के लिए कुर्सी हो गया,
0: तो इसी चीज से बनेगा?
1: इसी चीज से सब बनेगा,
0: इसी चीज से बनेगा,
1: इसी चीज से बनेगा,
0: मतलब इसी बात से सोफा वगैरह भी बन जाएगा?
1: सब बनता है, गुलदस्ता हो गया, मोबाइल रखने का लाइट हो गया, बेड लाइट हो गया, ये सब इसी से बन जाता है,
0: सबसे बन रहा है। और तो अभी आप लोग बना रहे हैं सब चीज?
1: हाँ सर।
0: मतलब क्या बदला है इसे?
1: अभी इस अभी बना रहे हैं हम लोग, सोफा का ट्रेनिंग चल रहा है हम लोग का
0: हाँ।
1: और रखने का डोलची है ये है वो, मतलब जो इतना सामान रहता है गुलदस्ता जैसे आप टेबल में रख दिए वैसे रखने के लिए सब उसी में बन रहा है।
0: तो ओरिया में आप लोग कितने परिवार हैं?
1: हम लोग यहाँ 25 घर है।
0: 25 घर मतलब आप लोग पूरा मिला के ये सब मतलब...
1: ये सब कम से कम आबादी बोलिएगा तो 150-200 से प्लस है।
0: 200 लोगों को?
1: हाँ
0: 200 लोगों की आबादी और सब इसी पर जुड़े हुए?
1: सब इसी पर जुड़े।
0: और मतलब कि आमदनी पर आते हैं?
1: आमदनी पर आते हैं। देखिए हम लोग का एक आदमी इसमें से 150-200 रुपये का कमा लेता है।
0: अच्छा एक आदमी मतलब 150-200 रुपए में
1: कमा लेता है,
0: आमदनी हो जाती है। अगर सामूहिक देखे तो मतलब अगर 4-5 परिवार मिले तो 500-700 रुपए की आमदनी इससे होती है। तो क्या लगता है कि इस व्यवसाय में मतलब आप लोगों को मुनाफा मतलब उस हिसाब से हो पाता है? जैसे
1: मुनाफा तो नहीं होता सर, क्या होता है अपना घर का फैमिली लोगों से उसमें अपना घर चला लेती है, बस यही होता है।
0: घर से चला लेती है?
1: चला लेती है। जैसे अभी खाना दाल रोटी चावल इस हिसाब से पैसे से हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं।
0: तो आपकी अभी उम्र क्या होगी?
1: मेरा उम्र अभी 30 साल का चल रहा है।
0: 30 साल का चल रहा है। तो आप कब से बना रहे हैं?
1: अभी हमारा कम से कम मेरा हम पढ़ा किए 9 मैट्रिक में किए, उसके बाद हम बाहर गए तो बाहर में से थोड़ा अभी आए घर तो अभी बाहर जाना छोड़ दिया हम। एक्चुअली
0: बाहर कहाँ चले गए थे?
1: बम्बई गए थे।
0: बम्बई चले गए? तो वहाँ कितने दिन रहे?
1: वहाँ तो रहे सर 2-3 साल रहे।
0: 2-3 साल रहे वहाँ और फिर वापस लौट आए? और परिवार के और कोई भी लोग गए थे मुंबई?
1: नहीं बम्बई तो परिवार में से कोई नहीं गए, परिवार सभी वहाँ से काम कर
0: मतलब मुंबई में आप अकेले गए थे और अब लौट के यहाँ इसी काम में करें कि और भी कोई काम करते हैं?
1: नहीं ये भी करते हैं, जैसे इसमें से ज्यादा मुनाफा नहीं होता तो छोड़ देते हैं, सीजन में ज्यादा इसको करते हैं। और ज्यादा घर का जो लेडीज लोग है उन लोग तो परमानेंट
0: वो लोग दिन भर काम में
1: दिन भर खाएगी खाना बनाएगी, उसके बाद जो इमरजेंसी काम रहा तो कहीं चला गया, नहीं रहा तो बस इसी में हम लोग को गुजारा है।
0: मतलब कि इसी में गुजारा है। और मतलब सबसे जैसे जैसे टोकरी है इस साइज का तो इसकी क्या कीमत है?
1: इसका कीमत अभी बाजार में सर अभी का ऑलरेडी दिन में 50 रुपए जाता है, अभी का डिमांड है 100 रुपए।
0: अभी का डिमांड 100 रुपए
1: अभी का कार्तिक मंथ का जो
0: तो बाजार केवल आपका गांव से ही बेचते हैं कि बाजार भी जाते हैं?
1: बाजार भी जाते हैं, व्यापारी भी जाता है, होलसेल भी रेट देते हैं हम लोग।
0: मतलब यहाँ भी बिकता है, बाजार भी जाते हैं और होलसेल लेने के लिए लोग यहाँ
1: आते हैं, व्यापारी आता है।
0: तो आसपास का कौन बाजार है, कौन कौन सा बाजार है?
1: यहाँ सोमार बाजार है चुरचू, अच्छा जैसे मेरा जो प्रखंड है और उसको बृहस्पति बाजार हो गया मेरा झुमरा, हम लोग ये दो बाजार का
0: चरही बाजार भी जाते हैं।
1: चरही बाजार भी जाते हैं,
0: मतलब तीन बाजार है आपका।
1: ये सोमवार शुक्रवार यहाँ चुरचू में होता
0: है ना? हाँ सर। तो ये मतलब मोटा मोटी अगर कहें कि इसमें से एक परिवार की आमदनी कितनी होती होगी?
1: एक परिवार के सर यही तो 100-150 का आसपास में, ज्यादा नहीं होते।
0: मतलब जीविका चलने के लिए
1: चलने के लिए इससे ज्यादा
0: बहुत ज्यादा आमदनी इससे
1: आमदनी नहीं
0: बनती। लेकिन क्या लगता है जैसे भविष्य क्या है, जैसे आप लोग बताएं कि नई तरह से आप लोग मतलब बना रहे हैं?
1: हम लोग को सोचे कोई रोजगार इसी चीज का अच्छा, हम लोग को बिजनेस दे चाहे अच्छा कोई बढ़ोतरी सरकार तरफ से मिल जाए तो हम लोग और इसको सफल आगे बनाने के, अभी जो नई पीढ़ी में है उन लोग को सफल बनाने का आगे हम लोग कार्यक्रम, जैसे सरकार तरफ से हम लोग बिजनेस करने के मिल गए, जैसे होता है कि इस लोन से इस आप इतना डिमांड कीजिए तो हम लोग बांस के हिसाब से हर डिजाइन तरह दे सकते हैं यदि सरकार हम लोग को चाहिए तो।
0: मतलब अगर योजना हो जी और उसको सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए तो बहुत बेहतर स्थिति बदल सकती है, क्योंकि पारंपरिक चीजों की मांग है अभी भी घटी नहीं है और लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं,
1: इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं। अभी देखिए छठ में भी तो हम लोग को यही नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं बीजी में हर आदमी आया, दो दो एक दो दो तीन दो चार दो हमको, हम लोग दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास बांस है, सो बांस सब दूर से लाना पड़ता है। अभी जम गए सवेरे खाना खा के तो हम दिन भर में एक दो को बांस लाए क्या कर कितना लाएगा माता में ढोके, इसी से हम लोग से मांग ज्यादा इसका मतलब मांग नहीं पूरा,
0: मतलब अभी पूर्ति नहीं कर पा रहे। अगर पहले से इकट्ठा करके रखें और पूंजी लगा कर रखें तो ज्यादा इससे आमदनी हो सकती है बनाने के लिए। तो आपके परिवार में कितने लोग हैं जो इस काम को करते हैं?
1: हमारे यहाँ एक घर में है सो हम लोग तीन परिवार हैं, तीनों परिवार
0: लगे रहते हैं।
1: लगे रहते हैं
0: मतलब एक आर्थिक जरिया है
1: जरिया।
0: लेकिन देखिए अभी है कि पारंपरिक रूप से जो चीजें बन रही थी और बहुत ज्यादा मुनाफा मतलब एक जीवन चलने भर है, लेकिन अगर अच्छे तरीके से इस योजना को क्रियान्वित किया जाए और नई तरह से ट्रेनिंग लेकर ज्यादा
1: अच्छा
0: हो सकता है। चलिए आपने बातचीत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
3: मेहनत कश के साथियों, अभी आप सुन रहे थे संजय तूरी से कि किस प्रकार से आप बांस के सामग्री बना के भी अपने को रोजगार से जोड़ सकते हैं। इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी सूरज रजक। और इसी के साथ श्रमिक बंधु करके मेहनत कश का वक्त हो गया है। इस वायदे के साथ की अगली मुलाकात जल्द होगी और नए नए आपके रोजगार संबंधी ज्ञान की बातें लेकर अलग अलग ऐसे जीवंत व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे जो आपको देंगे नई प्रेरणा नए रोजगार के संदर्भ में। तब तक के लिए दीजिए कार्यक्रम

श्रोता आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेहनत काश। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। लीजिए पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनने वाले तमाम श्रोताओं को वंदना श्रीवास्तव का नमस्कार। लीजिए दोस्तों, आज की शाम आपके नाम, आप हैं तो ये आकाशवाणी है, आप हैं तो जिंदगी में बस खुशियां हैं, आप हैं तो बस हमारा और आपका ये साथ यूं ही बना है। तो लीजिए आपके लिए गीत।

सच दोस्तों, आप हैं तो ये लम्हे थम से जाते हैं, और आप हैं तभी जिंदगी की सारी रौनकें बस चमक उठते हैं। तो लीजिए आपकी शाम के नाम एक और खूबसूरत सा गाना संग्राम फिल्म से। आवाज दी है इस गाने को मुकुल अग्रवाल और अलका याग्निक ने।

मुकुल अग्रवाल और अलका याग्निक की आवाजों में दोस्तों आपने सुना ये गाना फिल्म संग्राम से। आप सुन रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम फिल्म संगीत और आपके साथ है आपकी दोस्त वंदना श्रीवास्तव। लीजिए FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आ रहा है अगला गीत।

दोस्तों बने रहिए इस पल अपने रेडियो सेट के पास, क्योंकि अगला गीत आ रहा है बिल्कुल करीब, और वो भी आपके पसंद का। बागी 2 फिल्म का ये गाना है श्रोता अंकित तिवारी की आवाज में।

यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, संध्या के 6:54 और 10 सेकंड हुए हैं। थोड़ी देर में 7 बजे आप सुनेंगे

प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर होगा जिले में आजकल, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में शामिल हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, कहा सफाई पर विशेष ध्यान देने वाले वार्डों को स्वच्छ वार्ड पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। विश्व जनसंख्या दिवस पर रांची में जागरूकता कार्यक्रम। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता। राज्य सूचना आयुक्त डॉ तनुज खत्री ने गुमला में की बैठक, समय सीमा के अंदर आरटीआई के लंबित मामलों के निपटारे का दिया निर्देश। रांची में कल आयोजित होने वाली झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू। और रांची में जिला योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का हुआ आगाज। सीनियर वर्ग की स्पर्धाओं में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने योगासन का किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि रांची में सफाई पर विशेष ध्यान देने वाले वार्डों को स्वच्छ वार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार हर माह दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री आज रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री सेठ ने कहा कि वेंडर्स की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
1: कि जो हमारे वेंडर्स हैं, जो रेड़ी पटरी वाले हैं, बेचारे मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और वर्षों से एक ही जगह सामान बेच रहे हैं, कोई बंदूक नहीं उठा रहे, कहीं रोड जाम नहीं है, तो उनको जीने का अधिकार। अब जैसे मोराबादी में जो सब्जी बाजार लगता है बुधवार को और शनिवार, 4 घंटे में हफ्ते भर की वो कमाई कर ले, किसको वहां परेशानी है।
0: बैठक में शहर के विकास, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को लेकर कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस मौके पर विधायक सीपी सिंह, रांची की मेयर रोशनी खालको समेत वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर रांची में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि एम्स और रिम्स 2 के निर्माण से चिकित्सकों की कमी दूर होगी।
2: आबादी में हम लोग कंट्रोल हैं हम लोग, लेकिन एक चैलेंज है उन तक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे हम पहुंचाएं, ये हमारा फोकस है और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हम दें उनको और हमें लगता है कि अब तो लोग जागरूक हो चुके हैं, अब ये चैलेंज नहीं है, चैलेंज है कि बेहतर इलाज हम कैसे करें।
0: इस अवसर पर बेहतर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। राज्य सूचना आयुक्त डॉ तनुज खत्री की अध्यक्षता में गुमला में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित आरटीई मामलों के निपटारे और समयबद्ध सूचना उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। राज्य सूचना आयुक्त ने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर सही और पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आयोग लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए लगातार कार्य कर रहा है।
3: गुमला जिले में जहां मुझे जो अधिकारियों ने जो बताया हमें बैठक के दौरान कि अभी तक 2024 से लेकर के 2026 तक उन्होंने बखूबी सभी मामलों का निष्पादन भी कर, जो एक अच्छी पहल है। हम समझते हैं कि पूरे राज्य में इस प्रकार से अगर काम होगा तो आरटीआई एक्ट जो है वो प्रभावी रूप से अंतिम लोगों तक जो उसके हकदार है उन तक पहुंचेगा।
0: खूंटी नगर पंचायत के वार्ड 6 और 16 में आज कई पीसीसी सड़क मरम्मत कार्यों का शिलान्यास किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष रानी टूटी ने कहा कि जर्जर सड़कों की मरम्मत से स्कूली बच्चों और आम लोगों की आवाजाही सुगम होगी। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र में सड़क और नाली संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए चरणबद्ध तरीके से विकास कार्य किए जा रहे हैं। गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने उर्वरक की कालाबाजारी रोकने और किसानों को निर्धारित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की। उन्होंने सभी उर्वरक विक्रेताओं को दुकानों पर निर्धारित मूल्य सूची

0: उर्वरक संबंधी सूचना चार्ट तथा वैध लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने पारदर्शी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने और अनियमितता पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में कल आयोजित होने वाली झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञाएं लागू की है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने BNSS की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है, जो कल सुबह 7:30 बजे से शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ जुटाने, हथियार लेकर चलने, ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग तथा सभा आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। देवघर के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत मतदाता सत्यापन कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि फॉर्म वितरण और डिजिटलीकरण का कार्य तय समय सीमा में 100% और त्रुटि रहित पूरा किया जाना चाहिए। इसे लेकर श्री कुमार ने विशेष टीमों का गठन कर मतदाता सूची को अद्यतन और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया।
1: सभी को जितने भी वोटर्स हैं यहाँ पे जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, सभी को दो फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को भर के जल्द से जल्द वापस रिटर्न करिए। हम आपके फॉर्म को डिजिटाइज करेंगे, हम आपके फॉर्म को मैप करेंगे आपके माता पिता के साथ, जिससे कोई भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं। जिनके पास कोई मैपिंग डिटेल नहीं है 2003 का, वो भी अपना फॉर्म भर के दे, खाली फॉर्म भर के दे। 2003 का कोई हिस्ट्री नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, फॉर्म भर के रिटर्न करिए, प्रथम मतदाता सूची में आपका नाम अवश्य आएगा।
0: खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र में आज एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। जिले के कोरवा सिंदरी मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 युवक भी घायल हुए, जिनमें से 2 ने रास्ते में दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल एक युवक का रिम्स में इलाज चल रहा है। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा ने हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह पर यौन उत्पीड़न मामले में आवाज उठाने के बाद धमकी देने का आरोप लगाया है। असुंता लकड़ा का कहना है कि महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग करने पर उन्हें उनका हॉकी करियर समाप्त करने की चेतावनी दी गई।
2: लड़कियों की सुरक्षा के लिए मैं आवाज उठा रही हूँ, तो उसमें मुझे ही धमकी। मैंने देश को मेडल दिया है, देश के लिए मैंने खेला है, देश के लिए काम किया है, और धमकियां हम सुनेंगे? आज भी मैं अपनी छुट्टियां लेके जाती हूँ सिलेक्शन में। जब से ये बात पे चर्चा हुई सुधीर गोला के बात पे, उसके बाद से मुझे साइडलाइन पे रखा जा रहा है।
0: योग, रांची जिला योग संघ की ओर से 2 दिवसीय रांची जिला योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज रांची में शुरू हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। पहले दिन सीनियर वर्ग की स्पर्धाओं में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने योगासन का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल जूनियर वर्ग की स्पर्धाएं और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित होगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में शामिल हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, कहा सफाई पर विशेष ध्यान देने वाले वार्डों को स्वच्छ वार्ड पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। विश्व जनसंख्या दिवस पर रांची में जागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. तनुज खत्री ने गुमला में की बैठक, समय सीमा के अंदर RTI के लंबित मामलों के निपटारे का दिया निर्देश। रांची में कल आयोजित होने वाली झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू। और रांची में जिला योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप

का हुआ आगाज। सीनियर वर्ग की स्पर्धाओं में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने योगासन का किया प्रदर्शन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जिले में आजकल।
1: जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता।
1: देश के तमाम पावर प्लांट में कोयले की बढ़ती खपत को देखते हुए कोडरमा के रास्ते ब्रिटिश काल में बने तकरीबन 120 साल की अवधि पार कर चुके तीन सुरंगों से नए वैगन के जरिए कोयले की ढुलाई शुरू की गई है। नया वैगन थोड़ा बड़ा होने के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से भी लैस है। नए वैगन से कोयला ढुलाई की शुरुआत के मौके पर पहुँचे पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने बताया कि
2: जो बनावट है उसमें थोड़ा अलग डिजाइन का है, जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई जो है जो नॉर्मल वैगन है उनसे अधिक है, तो कई बार जो है जो इस क्षेत्र में टनल पड़ती हैं उससे नहीं निकल पाती, तो उसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। यही सबसे छोटा रास्ता है और ये गाड़ियां जो है द्रुत गति से इस क्षेत्र से निकल सके, तो उससे जो है जो पावर हाउसेज हैं उन कोयला सप्लाई करने में अधिक सुगमता से कर पाएंगे। सभी पावर हाउसेज जो है अपनी पीक कैपेसिटी पे चल रहे हैं, तो वहाँ पर कोयला पहुँचाना भी जो है एक राष्ट्रीय दायित्व है।
1: स्वच्छ भारत मिशन फेज टू के तहत जिले के लक्ष्मीपुर गांव में बने गोबर गैस प्लांट गांव की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस गोबर गैस प्लांट से गांव के तकरीबन 30 घरों में गैस की आपूर्ति की जा रही है, जिससे महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि इस प्लांट के संचालन से उन्हें न तो जलावन के लिए लकड़ी ढूंढने की आवश्यकता पड़ती है और न ही गैस भराने के लिए पैसे लगते हैं।
3: सुबह के गोबर लाइन में डालते हैं, ऑनलाइन रहते हैं तो गोबर को घोला करखनी, तकर बाद गैस से फिर उसमें गोबर जाते हैं दूसरा में तीसरा में जाते हैं, उसमें सूख जाते हैं तो फिर निकाल के अपने खेत में खाद के खिसनी खेत में डालते हैं। वैसे तरीके से मैंने काम कर रहे हैं और घर घर गैस जलाते हैं शाम सुबह। पहले तो लकड़ी से जलाते हैं, लकड़ी से तकर बाद फिर गैस मिला तो गैस वाला पैसा तभी बच जा रहा है।
1: राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर कोडरमा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कोडरमा पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने जमशेदपुर में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह अपराधियों ने पुलिस जीप से खींचकर एक युवक की हत्या कर दी जबकि दूसरे को अधमरा कर दिया, उससे यह साफ जाहिर होता है कि राज्य में अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है।
4: जमशेदपुर की नगरी में पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के वैन में घुस करके अपराधी दो युवाओं पर हमला करने का काम किया। पुलिस की जीप से निकाल करके युवा को पटक करके उस पर चापड़ से हत्या करने का काम किया। पुलिस वहां मौजूद थी लेकिन पुलिस वहां पर खड़े खड़ा रह करके मुखदर्शक बनी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो हम लोग बोलते हैं हमेशा कि इस राज्य में अपराधियों का समानांतर सरकार चलती है, और ये प्रमाणित होने का काम जमशेदपुर में किया कि पुलिस के सामने अपराधी दो दो युवाओं को एक अधमरा है तो जिंदगी और मौत से कलकत्ता में जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ एक माँ पिताजी के लाडले जो घर का एक अकेला चिराग था, अकेला बेटा था, उसकी हत्या भी चौराहे पर कर दी। इससे स्पष्ट हो गया है कि इस राज्य में अपराधियों का समानांतर सरकार है और सरकार इस पर अंकुश लगाने में बिल्कुल पूरी तरह से विफल है।
1: हाल के दिनों में जिले में भी अपराध का ग्राफ बढ़ा है। कई मामलों में पुलिस ने सफलतापूर्वक कांड का उद्भेदन किया है तो कई मामले में अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
0: अभी आप सुन रहे थे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

एफएम 102.1 गीगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोताओं लीजिए पेश है कार्यक्रम झनकार।

कार्यक्रम जानकार सुनने वाले तमाम श्रोताओं को वंदना श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, जानकार की महफिल सज रही है वाचू फिल्म के इस गाने के साथ। आवाजें दी हैं अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने।

तनिष्क बागचे आशीष और नीना माथुर की आवाजों में तेरी बातों में उलझा जिया इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग इस वक्त साथियों आप सुन रहे हैं।

जब प्यार किसी से होता है। श्रोता, अभी आप सुन रहे इस फिल्म का गाना कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाजों में, और इसी गाने के साथ श्रोता कार्यक्रम झनकार यहीं समाप्त होता है।

यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्रीय एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं लीजिए पेश है सदाबहार फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं कुछ ऐसे गीतों को लेकर जो दिल के बंद दरवाजों को खोल देते हैं और हमारे सोए हुए तारों को झनकोर देते हैं। आइए ऐसे ही झनकार गीतों के साथ आपके बीच ऑल टाइम हिट्स में।

क्षमा करेंगे श्रोताओं, तकनीकी व्यवधान के कारण हम आपको ये गीत नहीं सुना पाए। फिलहाल आप गीत कौन सा सुन रहे थे बता दें कि मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। लीजिए दूसरा ये ऑल टाइम हिट सॉन्ग जिसे हमने लिया है फिल्म नसीब से।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में श्रोताओं आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म नसीब का ये बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग। लीजिए कार्यक्रम में आगे एक और हिट सॉन्ग आपके लिए।

ऑल टाइम हिट श्रोताओ, आप सुन रहे आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। और चलते चलते कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आंखियों के झरोखों से इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: Yes, I can, if only you can.
1: हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाज और ये गाना है आंखियों के झरोखों से इस फिल्म का और इसी गाने के साथ श्रोता कई क्यों ऑल टाइम हिट्स यही समाप्त होता है। दीजिए हमें इजाजत।

यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्रीय एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, लीजिए पेश है करियर सलाह पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम नव चेतना। संकलन एवं वाचन अशोक कुमार का। प्रस्तुत करता है इस कार्यक्रम के राजीव कुमार और संयोजक विक्रम कुमार रंजन।

कार्यक्रम नवचेतना सुन रहे सभी श्रोताओं का मैं अशोक हार्दिक स्वागत करता हूं। अभिवादन स्वीकार कीजिए। नमस्कार। बारिश के मौसम का मिजाज कुछ बेहतर नजर नहीं आ रहा है। चूंकि पूरे झारखंड प्रदेश की अगर बात करें तो औसतन 42 से 45 प्रतिशत बारिश कम हुई है। श्रोताओं, ऐसे में हमें ये समझना होगा कि जल ही जीवन है, हमारा भविष्य इसी पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी दैनिक आदतों जैसे नल बंद रखना, वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाकर ही हम जल संकट को दूर कर सकते हैं। तो इन बातों का आप ख्याल रखें और ख़ास तौर से पानी की टंकी जो होती है उस पर जो है सो ध्यान रखें कि वो भर जाने के बाद उसे तुरंत ही बंद कर दिया जाए। तो इन छोटी छोटी आदतों में जब हम सुधार रखेंगे तो निसंदेह रूप से पानी के संकट को कुछ प्रतिशत तक हम इसे हल कर सकते हैं। टेंथ और ट्वेल्थ के बाद अपने करियर के चुनाव के प्रति जो है सो काफ़ी सचेत हो जाते हैं और होना भी चाहिए। तो करियर का चुनाव करते वक्त किन किन बातों पर ख्याल रखनी चाहिए, इस संदर्भ में हम छोटी सी चर्चा आपसे करना चाहेंगे। तो सबसे पहले है अपनी रुचि यानी इंटरेस्ट को देखिए, अपने कौशल यानी आपका स्किल क्या है इसके बारे में सोचिए, और फिर मार्केट डिमांड यानी कि बाजार की क्या मांग है इसके बारे में भी आपको विचार करके ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका चुना हुआ मार्ग आपकी क्षमताओं के अनुकूल है, ताकि भविष्य में निरंतर विकास के अवसर प्रदान करते रहें। इन सभी के लिए आपको आवश्यकता है कि आप अपनी रुचियों और जुनून को पहचानें, अपने कौशल का विश्लेषण करें, भविष्य की मांग और ट्रेंड्स को समझें और वित्तीय स्थिरता और विकास के अवसर को भी पहचानें, और अच्छे अच्छे लोगों का मार्गदर्शन और काउंसलिंग भी आप जो है सो लेते रहें। इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो करियर का चुनाव आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे और अच्छे क्षेत्र में आप जो है सो कदम रख पाएंगे।

0: तो दोस्तों आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता एआई चुनौती नहीं संभावनाओं का नया द्वार है। भेंट वार्ताकार हैं संतोष कुमार सिंह, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के एमसीए डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर।
1: अजय, करियर की बात करें तो पहले एआई के बारे में पूरा पता है कि ये दरअसल है क्या, कैसे रोजगार के अवसर प्राप्त करता है जी?
2: कि आज के समय में एआई एक ऐसा चीज बन गया है, ठीक है। तो एआई की इस शुरुआत को सबसे पहले जब 1950 में भी 1950 में है, अच्छा, एलन ट्यूरिंग ने जब ट्यूरिंग मशीन बना करके कल्पना की थी, मतलब समय शब्द भी नहीं आया था एआई का, वर्ड नहीं था, उन्होंने कल्पना की थी कि ऐसा भी होगा कि कभी मशीन कुछ ऐसा काम करेगा कि जो काम ह्यूमन कर रहा है, आदमी कर रहा है, मशीन करेगा। और जब हम फर्क नहीं कर पाएंगे दोनों में कि ये काम मशीन ने किया कि ये काम आदमी ने किया, तो समझिए कि मशीन में भी बुद्धिमत्ता आ गई। और वहीं से उनकी ये सोच थी। और इस शब्द को, एआई वर्ड जो आया ना, एआई वर्ड को 1956 में जॉन मैकार्थी ने दिया, उन्होंने पहला एक पेपर पब्लिश करा है, उन्होंने पहली बार इस चीज को, माने इस टेक्नोलॉजी को एक नाम दिया कि इसका मतलब मशीन में भी बुद्धिमत्ता आ सकती है, मशीन में भी इंटेलिजेंस आ सकता है। तो वो इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल होगा, तो वहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर शुरू हुआ, माने शब्द शुरू हुआ, दौर तो समझिए 1950 से ही शुरू हुआ।

0: 1956 से ये दौर स्टार्ट हुआ। इस शब्द के साथ मानव की तरह बुद्धिमत्ता मशीन में भी डाला जा सकता है और वहां से फिर स्टार्ट हुई। और आज के समय में कुछ भी जो हम लोग कर रहे हैं, कुछ भी सिलसिला, जैसा कि आपने कहा कि AI ने लोगों की जिंदगी को इतना आसान बना दिया कि आप किसी भी तरह का प्रश्न करते हैं उससे वो जवाब देने के लिए भी तैयार बैठा हुआ है।
1: ये बात तो हो गई। अब हम सीधे आते हैं रोजगार पर, तो कौन कौन से रोजगार जो है मुहैया करवा रही है AI?
0: देखिए आज के समय में हम लोग देखे तो जैसे एक समय था कि हम लोग कहते थे ना कि कंप्यूटर आया तो कि रोजगार छीन जाएगा। आज AI के आने पे भी कुछ भ्रांतियां हैं कि रोजगार छीन जाएगा, लेकिन AI को क्या है, आपको असिस्टिव टूल के रूप में यूज करना है। मतलब ये आपके काम को एक सहायक टूल बन करके उसको कंप्लीट करेगा कि आप अपने काम को बहुत ही आसान तरीके से कर पाए। अब जैसे इसमें जितनी भी चीजें हैं, जैसे सिंपल सोचिए कि पहले लोग आर्टिकल लिखते थे, ठीक है, तो आर्टिकल लिखने में क्या था, आपके पास बहुत ही लिमिटेड साधन था। AI से पूरी दुनिया की चीजों को उससे पढ़ के आप आर्टिकल तैयार कर पा रहे हैं। लोग डिजाइनिंग करते थे, एक से एक डिजाइनिंग कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए कि जो चीज फिल्म शूट करने के लिए ही, जिन चीजों पे एक्टर डायरेक्टर इन लोग को बहुत खर्च करना पड़ रहा था, AI के माध्यम से इजीली उस दृश्य को दिखाया जा रहा है, स्टूडियो में दिखाया जा रहा है। डिजाइनर्स जो होते थे हमारे, जो कि छोटे दुकानों पे बैठ करके बैनर पंपलेट सब डिजाइन करने में जिसको घंटों या दिन लगा देते थे, एक एक दिन दो दो दिन बाद तब डिजाइन फाइनल होता था, आज विदिन अ सेकेंड AI के यूज से वो डिजाइन तैयार करके और आपके सामने रख दे रहे हैं, ठीक है। जहां तक विद्यार्थियों की बात है, जो नोट्स बनाने का हो, पढ़ने का हो, आर्टिकल लिखने का हो या रिसर्च टॉपिक तैयार करने का हो, इजिली विद इन अ मिनट, जो आज के समय में बहुत पॉपुलर एक टर्म आ गया है, ChatGPT, मीन्स एक जो AI टूल है, ChatGPT है आपका, Gemini है, नोटबुक एलएम, ऐसे सैकड़ों टूल है जो आपको मदद आपके कार्य में कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, आपके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ी और स्पीड भी बढ़ा। तो आज के समय का ना कि रोजगार का क्षेत्र, रोजगार के हर क्षेत्र में AI आपको मदद कर रहा है। जितने भी तरह के रोजगार के क्षेत्र है, सभी में AI टूल आपको मदद कर रहा है। जहां तक कि लोग जैसे कंप्यूटर फील्ड में जो लोग थे, वेबसाइट डिजाइन करते थे या सॉफ्टवेयर डिजाइन करते थे, प्रोग्रामिंग लिखते थे, आज आपके एक इंस्ट्रक्शन पे उन सारे साइट को, वेबसाइट्स को क्रिएट करके आपके सामने रख दे रहा है। प्रोग्रामिंग लिख करके आपको पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक टूल दे दे रहा है कि आप ऐसे ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। तो जितनी भी तरह की चीज है वो आप AI के माध्यम से आज के क्षेत्र में कर सकते हैं
1: जी। अच्छा ये बताइए, हमने कहा रोजगार के अवसर, अब इसमें जो भी रोजगार युवाओं को मिल रहे हैं तो उनके कोर्सेस के लिए जी, वो डिग्री प्राप्त करने के लिए किन से रोक जाना पड़ेगा?
0: दूसरा है कि आपका बहुत अच्छा है प्रश्न है कि बच्चे कहाँ से इन चीजों के स्किल को या इसमें अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो है कि लोकल में, अगर हजारीबाग में हम लोग देखें तो हजारीबाग में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट
1: जी
0: ऑलरेडी एक BSc कोर्स चला रही है जो BSc इन AI and ML है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग।
1: जी बिल्कुल
0: ठीक है। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है जो चला रही है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो यूनिवर्सिटी में या अदर कॉलेजेस में भी जो BCA डिपार्टमेंट चल रहे हैं, BCA है, या यूनिवर्सिटी में जो MCA डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ही है, इसमें जो भी कोर्सेज स्ट्रक्चर है BCA MCA, तो AI एक्चुअली अलग से कोर्स का ही नहीं है, उन कोर्सेज में ऑलरेडी ये पेपर है, या एक पेपर की तरह, एक सब्जेक्ट की तरह है जो पढ़ाया जा रहा है। BCA में भी पढ़ाया जा रहा है, मास्टर्स डिग्री जो MCA है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा भी मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो AI ML BSc नहीं करना चाहते उसमें, या BCA MCA नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ अदर कोर्सेज कर रहे हैं और AI में करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी भारत सरकार के स्वयं पोर्टल पर, भारत सरकार का एक पोर्टल है स्वयं,
1: अच्छा जी जी हाँ
0: ठीक है सही था, उस स्वयं पोर्टल पे फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन कोर्सेज को प्रोवाइड की हुई है कि AI में आप सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: कुछ नहीं, आपको ऑनलाइन उस पे रजिस्टर करना है, पढ़ना है, और पढ़ के सिर्फ आप सीखना चाहते हैं तो सीखिए, और आप चाहते नहीं कल होकर के मुझे सर्टिफिकेट भी चाहिए कि कल हम कहीं जा करके
1: बिल्कुल
0: उस सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस कर

0: गवर्नमेंट ने प्रोविजन रखा है कि हम एक नॉमिनल फी पर आपका एग्जाम ले लेगी और आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। अगर आप एग्जाम में पास करते हैं मिनिमम 60% मार्क्स आपको लाना होगा। हमारे बिरौंव विश्वविद्यालय में हमारे जो माननीय कुलपति हैं, कुलपति ने प्रयास किया है कि उसके सेंटर को बिरौंव भावे में खोला जाए, स्वयं का एक सेंटर। और उन्होंने अपने प्रयास से ये चीज की भी व्यवस्था की और बच्चों को एग्जामिनेशन फी भी नहीं देना पड़े।
1: अच्छा,
0: उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाए और यहाँ के बच्चे स्वयं पोर्टल से भी कोर्सेज को करें और उसके लिए उनको एक पैसे भी देने की नहीं एग्जाम फी देने की पड़े। बहुत ही अच्छा प्रयास है और सर इस पे कोशिश कंप्यूटर के कोर्सेज हैं जो कि डिग्री लेवल पे हैं या इंजीनियरिंग लेवल में है, सब में एआई के, अगर कंप्यूटर साइंस है तो एआई के पेपर को इंक्लूड कर दिया गया। जहां तक रोजगार की बात है तो इसमें बहुत ज्यादा रोजगार भी लोगों को मिल रहा है। ठीक है, है क्या कि उसके लिए आपको बाहर में, चूंकि हजारीबाग जैसे अभी छोटे शहर में इस पे बहुत अधिक रोजगार नहीं, लेकिन हाँ हजारीबाग में भी बच्चे वर्क फ्रॉम होम में बहुत सारे बच्चे
1: जी,
0: आज हम लोग के यहाँ आज की ही बात है कि जैसे हम लोग देखे कि बहुत सारे बच्चे आए बोले सर वर्क फ्रॉम होम में हम लोगों को इस पर्टिकुलर कंपनी से एआई के थ्रू रोजगार मिल गया और हम लोग घर बैठ करके ही काम कर
1: रहे हैं।
0: ठीक है, उस पे अपना काम कर सकते हैं और उसकी मदद से बहुत सारे प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं।
1: बहुत खूब। तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि आज के दौर में सबसे ज्यादा चलने वाला जो है एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से युवाओं में जबरदस्त तरीके से क्रेज फैल रहा है इसका और बेशुमार रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। तो उम्मीद है आप सब अवश्य लाभान्वित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार
2: श्रोताओं, इस वार्ता के बाद अब हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की ओर और वो है करंट अफेयर्स। तो आज के करंट अफेयर्स में कुछ खबरें जो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2026 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। फाइनल में उसने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर यह खिताब जीता। भारतीय शेयर बाजार में सबसे बड़ा IPO आने जा रहा है। SBI की सब्सिडियरी कंपनी SBI फंड मैनेजमेंट ने अपना RHP पिछले दिनों फाइल किया है। कंपनी इसके जरिए 11,693 करोड़ रुपए की निवेश करेगी। 2 दिवसीय नेशनल स्टॉक होल्डर कंसल्टेशन 2026 जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जिसमें झारखंड सरकार राज्य को मजबूत बनाने के लिए बड़ा ऐलान किया गया। इसमें राज्य सरकार ने 4 महत्वपूर्ण MOU का ऐलान किया है। इसके अलावे अखबारों की सुर्खियों में ये खबर बनी हुई है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील पर मुहर लग गई है। मेलबर्न में PM मोदी और ऑस्ट्रेलियाई PM एंथनी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी संयुक्त रूप से घोषणा की। श्रोताओं, चलिए अब हम आपको जानकारी देते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट के अंतर्गत कि इस माह में कौन कौन सी नियुक्तियां आपका इंतजार कर रही हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 2026 में विभिन्न विभागों, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस और शिक्षा में बम्पर भर्तियां निकाली जा रही हैं। केंद्र में UPSC, RRB, ग्रुप डी और SBI जैसे संस्थान नियुक्तियां कर रहे हैं। वहीं झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य शिक्षक और विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं। केंद्र सरकार की प्रमुख नियुक्तियाँ UPSC, संघ लोक सेवा आयोग में विभिन्न मंत्रालयों में ग्रुप ए और बी के पदों के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चल रही है। RRB रेलवे 10वीं और ITI पास उम्मीदवारों के लिए RRB ग्रुप डी के तहत 22,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न पदों के लिए BOI में PO और क्रेडिट ऑफिसर पदों पर नियुक्तियों के लिए अधिसूचना जारी की गई। और झारखंड सरकार की बात करें तो JSSC झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से विभिन्न विभागों जैसे सहायक, आचार्य और अन्य में हजारों पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। दिए थी

0: कुछ नीतियों की चर्चा।
1: श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नवचेतना। आज के इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राजीव कुमार और संयोजक विक्रम कुमार रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे करियर सलाह पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम नवचेतना। संकलन एवं वाचन था अशोक कुमार का। प्रस्तुतकर्ता थे इस कार्यक्रम के राजीव कुमार और इस कार्यक्रम के संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। लीजिए पेश है श्रोताओं कार्यक्रम आपकी चाहत।

के तिनके चुन चुन कर अपने सपनों का जहां बसाने। हाजिर है दोस्तों FM 92.1 MHz पर लेकर कार्यक्रम आपकी चाहत। सुनने वाले तमाम श्रोताओं को वंदना श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों रात्रि के 8 बजे हैं, इस वक्त आप हैं, हम हैं और आपके जज्बातों में लिपटे ढेर सारे खत। तो लीजिए आपके खतों की इस पोटली को खोलते हैं और आगाज करते हैं अपने आज के फरमाइशी गीतों के इस महफिल का इस प्यारे से गीत के साथ। सुनने वाले कौन है श्रोता, आप सुनिए बस इस गीत के बाद।

0: दोस्तों, इस खूबसूरत से गाने के लिए हमें खूबसूरत सा बड़ा प्यार भरा खत लिखा। मेन रोड बड़कागांव से हमारे इन साथियों ने, आप है दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास, रंजना गुड़िया, रानी, कोलू बाबू, भोला बाबू और उनके मम्मी पापा, इसी गाने की फरमाइश दोस्तों आपने भी की है। आप है सौदागर मोहल्ला रामगढ़ से महबूब आलम, शबनम मकसूद, पाकिजा, शहनाज महफूज, शमसाद बेगम और उनके परिवार के सभी सदस्य। और ये खत मिला हमें चीटी रोड बरी से सीताराम मालाकार, इंदु देवी, कैलाश भगत, अनिता देवी, हर्षिका रानी, पूनम कुमारी, नूतम कुसुम और राजा बाबू का। आपने भी सुनना चाहा था दोस्तों इसी गाने को और आपकी फरमाइश कर दी हमने आज की फरमाइशी महफिल में पूरी।
1: तू ही बता किसने रिप्लिक भला कैसे।

0: दोनों को ये एक साथ डस जाएगी।
1: दोस्तों, ये लम्हे हैं प्यार के, ये लम्हे हैं एहसास के, और ये लम्हे हैं हमारे और आपके। तो ऐसे में आइए हम सब खो जाएं अपनी चाहतों में। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत।

पिलारी की आवाज में श्रोता आप सुन रहे हैं दिलकश गीत। फिल्म सत्यमेव जयते से हमारे इन दोस्तों की फरमाइश पर, ये दोस्त है सियारी सिंदूर से जबली बबली सोनिया और झुन्नू, इसी गाने की फरमाइश की है दोस्तों हजारीबाग पतरातु से बेशिल खाल को, मधु ऋतु रचना श्वेता पल्लवी रोहित प्रवीण और उनके परिवार के सभी साथियों ने।

दोस्तों, इस प्यारे से गाने के लिए हमें और भी खत मिले थे। ये हैं झुबरी तिलैया के साथी जिन्होंने खत लिखा है, जगन्नाथ प्रसाद साहू और उनके ढेर सारे दोस्त हैं, महादेव घाट अमलेश्वर से ढोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तानी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांस ठाकुर। दोस्तों, ऐसे प्यारे प्यारे खत हमें जरूर लिखा करें, क्योंकि आपके ही जज्बातों से, आपके एहसासों से और आपके ही प्यार से तो सजती है हमारी ये चाहत की महफिल। तो लीजिए, अगला खत हम ले रहे हैं अपने हाथों में और सुनाते हैं आपको अपने कार्यक्रम का अगला बहुत ही प्यारा सा गाना। सिराज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम आयशा, हादिया, आसमा, सालिया, शोएब खान और उनके परिवार के ढेर सारे साथी। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता कांगड़ा, निखिल कांगड़ा और उनके परिवार के सभी सदस्य। आप सबने सुनना चाहा कृष्णा कॉटेज फिल्म का ये गीत।

श्रेया घोषाल की आवाज में दोस्तों आपने सुना ये गीत फिल्म कृष्णा कॉटेज से हमारे इन दोस्तों की पसंद पर। छेपा कला बड़का गांव से बाबूलाल ठाकुर, सभ्या ठाकुर, भरत ठाकुर, तिलेश्वरी, मंजू, संतोष ठाकुर, विकास और प्रभात ठाकुर ने सुनना चाहता इस गाने को। आपकी भी फरमाइश करती हमने पूरी। और ग्राम बगबुड़वा के हमारे पथरिया से है साथी नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। दोस्तों आप भी सुन चुके अपनी पसंद का ये गाना। आप तैयार हो जाइए कार्यक्रम के अगले फरमाइशी गीत के लिए जो है आपके एफएम के बिल्कुल करीब।

अरिजीत सिंह की आवाज में दोस्तों सैयारा फिल्म का ये बहुत ही हिट सॉन्ग आपने सुना हमारे कार्यक्रम इस आपकी चाहत की महफिल में। और इस गाने के लिए हमें खत लिखा, चलिए बताते उनके नाम। औरंगाबाद से इस गाने के लिए हमें फरमाइश लिखा था राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने। बुलंदशहर से इस गाने के लिए हमें खत लिखा है बद्रू अली अंसारी, फर्जू अली अंसारी, फर्जी वाली अंसारी। लुधियाना पंजाब से इस खत को लिखा अमरजीत, सोनम कौर और परमजीत आदि कौर ने। दोस्तों ऐसे ही खतों की बरसात करते रहें और हम आपको भिगोगे ऐसे ही गीतों की बरसात में और वो भी पहली बारिश में। तो लीजिए पहली बारिश की इस खूबसूरत बरसात में भीगे इस गाने के साथ।

दोस्तों गीतों की बारिश में भीगते रहिए। फिलहाल FM 102.1 MHz आपके लिए लेकर आया है एक और बहुत ही प्यारा सा गीत आपकी चाहत कार्यक्रम में।

एफएम 102.1 MHz पर श्रोताओं, आप सवार हैं चाहत की कश्ती पर और आज आपके साथ है ना पूजा ना अर्चना, सिर्फ और सिर्फ वंदना श्रीवास्तव।

उदित नारायण की आवाज में श्रोताओं आप सुन रहे हैं मेजर साहब फिल्म का ये गाना हमारे इन दोस्तों की फरमाइश पर। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के मुकेश भट्टा, नीलम भट्टा, नितिन पला, करण, गीतू निहारिका और वंश भट्टा ने इसे गाने की फरमाइश हमें लिख भेजी थी अपने खत के जरिए। और रेलवे स्टेशन हजारीबाग से इस गाने के लिए हमें खत लिखा समीम अहमद, शकुफ्ता नूरजहां, तहसीन खलील, एहसान और उनके ढेर सारे साथियों ने, यश चौहान, अंश चौहान, संदीप चौहान, बनुसा दुर्गापुर से अमरावती से सुना पहुंच रहा था इसी गाने को। दोस्तों आपकी भी फरमाइश हमने कर दी है पूरी, और भी बहुत सारे गाने हैं फरमाइश के। चलिए आपको अब लिए चलते हैं क्योंकि अगले गीत की ओर।

दिल है कि मान्यता नहीं। आप सुन रहे इस फिल्म का गाना अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में हमारे ढेर सारे साथियों की पसंद पर। चंदा चौक मधुबनी बिहार से शोभिकांत झा, मुखिया हेमलता, मनोज, लकी सज्जन, मोहित सज्जन, परी सज्जन, सरोज, स्तुति सज्जन, नैतिक सज्जन, सोनाक्षी सज्जन ने लिखा इस गाने के लिए हमें खाली।

चाहत की महफिल आप ढलने लगी है दोस्तों, लेकिन हमारी बातों का सिलसिला और आपके एहसास थमे नहीं है, ये तो बस बढ़ते ही जा रहे हैं। लिखिए ये अगला गीत आपके लिए हमारे इन दोस्तों की पसंद पर।

कुमार शानू और संजीवनी की आवाज में ये गाना दोस्तों करी फिल्म का आपने सुना हमारे इन दोस्तों की पसंद पर। माली टोला किरगांव से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास, जितेंद्र, दितेश भगत, रोहित, अनिकेत भगत और राहुल ने सुना चाहा था। इसी गाने को बड़काना से डॉक्टर अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, उनकी प्यारी बिटिया तस्नीम ने भी सुनना चाहा था। और अब चलते चलते कार्यक्रम के अंत में सुनिए ये गीत फिल्म मिस 420 से।

दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि चाहत की महफिल रोशन हो आपके गीतों और एहसासों से, तो लिखना ना भेजिए कोई भी ऐसा बात जो आपके दिल में उबड़ता घुमड़ता हो बादलों की तरह। लिख भेजिए अपने एहसास हम तक इस पते पर अपने खत के जरिए। नोट कीजिए हमारा पता, कार्यक्रम आपकी चाहत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हजारीबाग, पिन कोड 825301। और सुनते रहिए ऐसे ही फरमाइशी गीत।

मलिका और साथियों के गाए इस मस्ती भरे गीत को सुनना चाहता है छत्तीसगढ़ से दतरेंगे के हमारे साथी द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छाविंद्र कुमार वर्मा ने। दोस्तों इसी गाने को सुनना चाहता न्यू दिल्ली से रईशा लाल, गुंजन लाल और कनिका लाल ने।

दोस्तों, जिंदगी की स्पीड यूं ही बनाए रखिए और जल्दी जल्दी हम तक पहुंचते रहिए अपने खतों के जरिए, अपने गीतों के जरिए। लेकिन महफिल आज की यहीं ढलती है इस वायदे के साथ कि जल्द महफिल सजेगी आपके ही गीतों से। तब तक के लिए दीजिए इस चाहत की महफिल से अपनी दोस्त वंदना श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।

यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 MHz पर इस वक्त रात्रि के 8:41 और 10 सेकेंड हो चुके हैं। श्रोताओं, थोड़ी देर में रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या का आज अंक और रात्रि 9 होगा न्यूज एट 9, जिन्हें रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया इन सभी के लिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। दो जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय

0: भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहाँ 8436287930 8491552 3714 और 8433452044 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देशभर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
3: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें।

0: इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गंवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9-सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. प्राइम मिनिस्टर

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोलो रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

जिन्होंने अपनी अदाओं से लोगों को मोहित किया, जिन्होंने अपनी मेहनत से हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की और महज 13 बरस की उम्र में वे मुंबई

0: चलिए दोस्तों, अब आपको बता ही देते हैं, आज की फनकार है गायिका उमा देवी यानी टुनटुन।
1: हमारे देश के, मेरे इधर के उधर के, आमने के सामने के, थोड़े भाइयों, थोड़े मेरे प्यारों, मेरा आप सबको बहुत बहुत मोटा मोटा आशीर्वाद, प्यार और फिर छोटा सा मुन्ना सा नमस्कार।
0: टुनटुन नाम से उन्होंने अपने अभिनय की पारी जीती। 1947 में उमा देवी को अपना पहला एकल गीत गाने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें 200 रुपए की राशि भी मिली थी और ये राशि उन दिनों बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी।
1: सुरैया जी, फिल्म स्टार सुरैया, हाय हाय हाय हाय, उन्हीं के साथ मेरा पहला मौका गाना गाने का दर्द में मिला। आप लोग काफी सुनते हैं ये गाना, उसमें मैं भी उनके साथ उनसे लिपटी खड़ी होके गाना गा रही थी। बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से, इसी में हम दोनों ने अपनी अपनी गाने की अदायगी की है।

बहुत पसंद था। जब नौशाद साहब ने उमा देवी का ऑडिशन यानी स्वर परीक्षा ली तो वे भी उमा देवी के गायन से काफी प्रभावित हुए और जब दर्द में उन्होंने पहला गाना गाया तो पहला ही गीत सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद तो उनके गायन का सिलसिला तेजी से चल पड़ा।

ये गाना जब ये यूपी में पिक्चर लगी, इसका नाम है अनोखी अदा। तो साहब सिनेमा में इतने पैसे फेंकते थे इसके रिदम और गाने पर कि मैं बयान नहीं कर सकती।

0: दोस्तों, चूंकि संगीत की दुनिया बदल रही थी और नई प्रतिभाएं अपना असर दिखा रही थी, इसलिए उमा देवी के गाने लगातार कम होते चले गए। उन्होंने अपने दोस्त दिलीप कुमार साहब से कहा कि वो अपनी किसी फिल्म में अभिनय का मौका दें। इस तरह 1950 की फिल्म बाबुल में पहली बार नजर आई दिलीप कुमार के साथ।
1: देखो, पहले मैं गाने गाती थी और अच्छी बहुत मशहूर हीरोइनों के गाने दिए मैंने, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं भी हीरोइन बन जाऊं। अब मुश्किल ये हुई कि हीरोइन सिंगल होती और मैं डबल। मैंने दिलीप कुमार जी के संग रोल लिया और वो पिक्चर थी बाबुल। बाबुल में मैं उनकी प्रेमिका थी, लेकिन मुश्किल ये हुई कि 2-3 हाथ मारे तो वो फिर पलट के कभी नहीं।
0: दिलीप कुमार ने ही उनका नया नाम रखा था टुनटुन।

0: दोस्तों, उमा देवी के गायन का सफर दोपहर की तेज धूप की तरह चमका, लेकिन इससे पहले कि शाम ढले यानी उनके गायन का सफर धीमा हो, उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। वो रास्ता था अभिनय का, और अभिनय का ये सुझाव भी संगीतकार नौशाद की ओर से ही था, और उमा देवी बन गई टुनटुन।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: हास्य अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अनगिनत किरदार निभाए, और फिल्मी पर्दे पर लोगों को दिल खोलकर हंसाना उनका शगल बना।

0: बन गया।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: लोगों को उमा देवी के करियर का ये दूसरा रास्ता इतना पसंद आया कि लोग आज भी उन्हें टुनटुन के ही नाम से याद करते हैं। एक रूढ़िवादी पंजाबी परिवार में जन्मी उमा देवी को परिवार की ओर से कोई बढ़ावा या कोई मदद न मिली, इसलिए जीवन के खट्टे मीठे रास्तों को तय करती हुई अपने हुनर को ही उन्होंने अपनी जिंदगी में मील का पत्थर बना लिया।

1950 और 60 के दशक में टुनटुन ही एक महिला कॉमेडियन थी जिनके पर्दे पर आते ही हॉल में ठहाके गूंजने लगते थे। उस दौर में हर दूसरी तीसरी फिल्मों में वे नजर आया करती थीं। ये थी उनके अभिनय की कामयाबी और यही थी उनकी प्रतिभा। गुरुदत्त के साथ टुनटुन ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55 और आर पार।

0: शिकायत कर लो।
1: अमिताभ बच्चन के साथ टुनटुन नजर आई फिल्म नमक हलाल में। दोस्तों, आखिरी बार टुनटुन फिल्म कसम धंधे की में नजर आई। आज उमा देवी यानी टुनटुन हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अपनी आवाज अपने फन के जरिए आज भी हम सब के दिलों पर राज कर रही हैं।

0: तो आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायिका उमा देवी यानी टुनटुन पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गई हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित पाँच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार

0: ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long. Defense Minister Rajnath Singh today said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defense force by strengthening both conventional defense capabilities and advanced technologies. Mr. Rajnath Singh said this while addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the sixth Project 17.